नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेष

0: विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi underlined the need for clear accountability, faster response mechanisms and stronger coordination among law enforcement agencies, banks and digital platforms. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. On this day in 1975, the emergency was declared amid growing political unrest and judicial developments that had undermined the legitimacy of the government led by then Prime Minister Indira Gandhi. Following the proclamation, several constitutional safeguards were suspended. The Ministry of Culture is organizing the closing ceremony of year-long programs in New Delhi today, marking the completion of 50 years since the imposition of the emergency. The first batch of 26 Indian traders is expected to enter the Chinese territory of Tibet through Lipu Lake Pass in Pitoragarh district of Uttarakhand tomorrow, marking the resumption of border trade after a gap of 6 years. Trade officer and Dharchula Subdivisional Magistrate Ashish Joshi said 26 trade passes have been issued, which include 17 traders and 9 helpers. A customs office has also been opened at Gunji to facilitate the process. Mr. Joshi informed that traders have already stored their goods in warehouses at villages near the Lipu Lake Pass. The India-China border trade originally resumed in 1991 but was suspended in 2020 due to the COVID-19 pandemic.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर, और इस वक्त जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पायामे सुबह के साथ। सरीन, आज सुबह जब मैं प्रोग्राम के लिए आ रहा था स्टूडियो की तरफ, तो मेरे जहन में एक बात आई कि हम सब आए दिन कितने लोगों से मिलते हैं और कितनी बातें करते हैं, एक साथ काम करते हैं वगैरह वगैरह, तो कभी कभार जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, किसी का दिल दुख जाता है या कोई बात बुरी लग जाती है। लेकिन जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो हमारे हलक में एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज अटक जाता है, वो लफ्ज है सॉरी या माजरत या मुझे माफ करें। क्यों रिफत जी, क्या ख्याल है आपका, क्यों ना हम आज इसी मौजू पे बात करें?
1: सही कह रहे हैं आप शबीर। देखिए, माजरत करने से दूसरों की नजरों में हरगिज आपका मकाम कम नहीं हो जाता है, बल्कि आपकी कदर कीमत में मजीद इजाफा होता है। सॉरी, जो कि सुनने और बोलने में इंतहाई छोटा सा लफ्ज है, लेकिन ये छोटा सा लफ्ज अपने अंदर बहुत बड़ी ताकत रखता है शबीर। एक मारूफ और पुराना मकोला है, आपने भी सुना होगा, कि इंसान गलती का पुतला है। ये गलती दानिस्ता भी हो सकती है और नादानिस्ता भी। देखिए, बिलाशुबा इस मकोले पर यकीन करने के लिए हमारे पास रोजमर्रा के सैकड़ों तजुर्बात मौजूद हैं। अगर हम अपनी जात में झांक कर देखेंगे ना, और हम में खुद पसंदी का मादा भी आम इंसान से ज्यादा नहीं होगा,

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
2: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
1: ओ
2: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
1: भाई ऑफर तो ठीक है लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
2: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
1: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पयामे शुभ,
4: एक ऐसा प्रोग्राम जो मालूमाती भी है और दिलचस्प भी,
3: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
4: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
3: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह,
4: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक,
3: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
4: सालों का तजुर्बा, मियारी नशरियात की रवायत
3: और आपके एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर,
4: अब एक नए अंदाज में।
5: भाग लगे इस आंगन को,
3: हर सुबह मालूमात, रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
4: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
3: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
4: पयामे सुबह।
6: सामिन, आपको बताना चाहेंगे कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर और मीडियम वेव 268.81 मीटर पर। इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम में सुबह। मैं आपकी मेज़बान रिफत आरा और मेरे साथ है शब्बीर अहमद खान। और थीम की बात करें तो आज को जो हमारा थीम है वो हम लेडीज़ एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी बातें होती हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और हमारा जो मकसद है इस प्रोग्राम का, इस लाइव शो का, कि आप तक अच्छी मालूमात पहुँचे, अच्छी बातें हों, मुलाकातें हों। और इस हवाले से हमारी जो हमारा प्रोग्राम रहता है लव इंटरेक्टिव प्रोग्राम 10:30 से 11:30 तक, उसमें हम आज एक मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो आप भी सुनना मत भूलिएगा 10:30 से 11:30 तक। मेहमान कौन है ये भी आपको पता चल ही जाएगा। खैर, हम बात कर रहे थे इससे पहले कि जो ये सॉरी का एक जो एक रवायत था अब आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। आज हम लेडीज़ के हवाले से भी इस प्रोग्राम में बात करते हैं, तो थोड़ा सा इसको इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। देखिए शबीर साहब, हमारे घर में बुज़ुर्ग खातून होती हैं और अक्सर वो हर एक चीज़ में इंटरफेयर करती हैं।
7: बिल्कुल
6: चना तिम नान आसान, दादी आसान, गरस मजन आसान, तिम चिकर हर कुन चीज अच बसान कुन साथ ना थोड़ा ये तुहुद इंटरफेरेंस अस बसान बोझ हो।
7: सही बात है,
6: अस करो गलती, अस करो कह चीज तिम से डांटान, लेकिन हम फिर वापस उन पर जपड़ते हैं, अस तिम वापस ये करा, अस ततन ती हकान की माजरत करो, ये वनव कि नसा ये बुजुर्ग एम सुंद वन खबर क्या, ये अस बसान थोड़ा बहुत ना गरस मजन पत यो बोर हो।
7: बिल्कुल सही,
6: तो
7: सही ये
6: चीजें सही नहीं है। खासकर अगर इस वजह हम देखेंगे ना कि जो कंसर्न होता है खास तौर पर खवातीन का, जो बुजुर्ग खवातीन हमारे घरों में, उनका जो कंसर्न होता है ना अपने घर में, बच्चों में, बच्चों के बच्चों में, उनके साथ जो अटैचमेंट होती है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। हमें ये लगता है कि ये इंटरफेरेंस है।

0: हमारे साथ ज्यादती है, लेकिन ज्यादती नहीं होती है, कंसर्न होता है उनका, एक उम्र गुजारी होती है एक घर में, बच्चों के साथ घर बनाया होता है, बच्चों को किसी में परवान चढ़ाया होता है, तो उस हिसाब से भी उनका कंसर्न होता है।
1: सही बात है रिफत जी, बजा फरमाया आपने। ये हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें खासतौर जो दादी रहती है इसमें या नानी होती है, इन्होंने जैसे कि आपने भी फरमाया, वजह फरमाया कि इन्होंने घर बनाया होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब ये इस घर में आती हैं या इनका मतलब जन्म लेती हैं, तो तब से लेके शादी के बाद से, तब से लेके जब तक ये इनका मर्तबा आ जाता है दादी या नानी तक, तब तक इन्होंने अपना घर बनाया होता है, अपने बच्चे पाले होते हैं, अपना मतलब अपने शौहर के साथ
0: जिंदगी आसान
1: और जब बहू आ जाती है या अपना छोटा बच्चा आता है, बच्चे का बच्चा, लड़की का या लड़के का, तो ये जो इन्होंने बनाया होता है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने ये कमाया होता है, मतलब बनाया होता है, तो ये इनकी बेकदरी बर्दाश्त नहीं होती इनसे। अगर यथा कुर्त नुकसान नुकसान ये मत करो, एक्चुअली वो भी नुकसान नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका मतलब कह चीज जोर तुलन थोद तुलन या डक दिन हुत चीज ये बसान कि शायद मा कोर ये खराब नान बसा। और उनका मिजाज जैसे कि मतलब कहा जाता है कि नानी का दादी का मिजाज मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का मिजाज बच्चों जैसा बन जाता है, बात मतलब कथ पे टोकान है कर हम कर ना ये क्या करो हुत या टीवी अचान थसल लोत हुत कर ये, यानी इनका इनकी जो एक्सपीरियंस रहती है ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखना चाहती है कि अपने बच्चों को भी मेरे बच्चे भी उसी तरह से जिसने हमने सिंपल सी लाइफ गुजारी है ये भी ऐसे गुजारे लाइफ, लेकिन आजकल जमाना तो ऐसा नहीं है, गैप बहुत बढ़ चुका है, हम ये गैप अगर कितना भी चाहें फिल नहीं कर सकते। अब जैसा कि आपने वजह फरमाया कि हमने अब यही करना है कि सॉरी कहना है, अगर उन्होंने कोई बोला हमने कुछ, उन्होंने हमसे कुछ बोला किसी बात के लिए टोका रोका, हमने सॉरी बोलना है। जी दादी जी या जी नानी जी, आप ही बजा फरमा रही हैं, बिल्कुल ऐसा ही सही है, जैसा आपने कहा वैसा ही सही है। और क्योंकि इससे इस सॉरी कहने से और उन पर ये कहना, उनके लिए ये कहना कि आप सही बोल रही है, उनकी नजर में हमारे लिए प्यार और बढ़ जाता है और हम उनके वो कहते हैं ना प्यारे बन जाते हैं।
0: सही कहा आपने, वो चूंकि हम सप्ताह अतन के यम सत्य मन वापस वनान पा दपान सी गलती तिंद सू प्यार सू मोहब्बत सान खतर बढ़ा और ये एक बहुत बड़ी दौलत होती है। यम सत गरस मज बुजुर्ग ना खुश खास कर कत कर बुजुर्ग खवातीन की, बुजुर्ग लेडीज जो हमारे घरों में होती है ना, तिमन ज्यादा पहन कंसर्न आसान, तिमन तिंद सू रोक टोक बसान कुन सासान ऐसे यमो क्या वो कोत द्रायु क्या द्रायु वे टाइम लेट यम चीज कुन सा खटकान दिमाग मतलब इरीटेट कर तेज गैप छ। और लेकिन हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि उस तम साल को अख वक्त तमो गुजोर अख पन वक्त आज तम सात ईसा तलीम तीन ईस एजुकेशन कहें ये फॉरवर्ड कहें आज एकस तरक्की याफ्त दौर मज सारी फैसिलिटीज हमें उस चीज को भी देखना चाहिए कि यमो कस दौर वोचमुत अगर तथ कुन ध्यान थो कि यमो सख्ती तमो परेशानी तमो फाक तमो बा चीज अज एक क्लिक पे हमें सब कुछ मिल जाता है, तथा दौर मे ये चीज क्या, तो ये जो ये एक अंडरस्टैंडिंग है ना ये गस परमित लिखमित इंसान मज आन अगर गरस मन खातून बुजुर्ग खातून है सो कुन जाए रोकान सो वन यम करो फजूल खर्च मे करो हुत पट मे करो तो इसमें इरीटेट होने वाली बात नहीं है। अगर आप इरीटेट हो जाते हैं तो आपका पूरा घर बिखर जाता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, चाहे सू गरस मज मर्द या जनान एम सुन थोड़ा सा चु अंडरस्टैंड करूं कि एम सुन मिजाज एम सुन तरीक एम सुन वनुन बेशु ये दिमागस मज थावुन कि यूजन ये कंसर्न हावान छ ये एक मोहब्बत है ये प्यार है। अगर इस ये थावु ना दिमागस मज कि पस पठन छ एमस लगाव अद गरस एम छ मोहब्बत एम छ प्यार तो योर त दिमो सुई प्यार योर त दिमो सुई मोहब्बत उसी अपने रवैये में हम चेंज लाए थोड़ा सा तो उस तम सेवि पत सु दुआ नेर तो सू छ सान खतर अक बड़ दौलत उससे इंसान बहुत सारी चीजें अबूर कर जाता है बुलंदियों पर पहुंच जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर अपना जो लहजा है वो नरम रखें और जो हमारी बुजुर्ग खातून है उनका केयर करें उनका ख्याल रखें हर खुशी का ख्याल रखें आप। जब हम उनका ख्याल रखेंगे तो जाहिर सी बात है हम भी खुश हो जाएंगे।
1: सही बात है रिफत साहिबा, बजा फरमाया आपने। यहाँ पर यही बात फिर से आ जाती है कि आजकल के जो नौजवान हैं या बच्चे हैं मतलब आजकल की जो

0: हम गुजार रहे हैं इसमें हर किस्म की फैसिलिटी हमें
1: कंफर्ट्स हैं, बिल्कुल
0: कोई भी फैसिलिटी जो हो वो हमें अवेलेबल है. और जो हमारे मतलब दादी नानी पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उन्होंने बड़े मुश्किलों के साथ के साथ ये चीजें हासिल की होती है. और जब और इनको उनको उन चीजों की कदर कीमत मालूम होती है. हमें किसी चीज की कदर, अगर हम अपनी बात करें, हमें किसी चीज की कदर कीमत मालूम नहीं. नुकसान कोई बात नहीं, दूसरा लाएंगे. ये कृष्ण पर्व पतन ब्याह के वन को ज्यादा पा खर्च त्राउज को ज्यादा पा इसमें क्या है और लाएंगे, कमाते हैं इतने किस लिए, खाते के लिए कमाते हैं या बेसिन नुकसान परवाशन किए. लेकिन यानी पता चल जाता है यहाँ पर यही बात निकल के आती है कि हमें कदर कीमत नहीं है इन चीज़ों की. तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको इन चीज़ों की कदर कीमत इसलिए है कि बड़े मुश्किलों के साथ इन्होंने इन चीज़ों का हुसूल किया होता है.
1: सही,
0: इसीलिए यहाँ पर बनता है कि हम उनकी बात को समझें. वो किस लिए कहते हैं, वो भी इन टर्म हमारे ही फायदे के लिए कहते हैं, क्योंकि आजकल वो कमाते नहीं है, हम कमाते हैं. हमारी कमाई के लिए ही वो बोलते हैं कि आप नुकसान यहाँ पर मत करो, क्योंकि अगर हम वो बात माने हमारा ही फायदा है उसमें, हमारा नुकसान नहीं होगा क्योंकि हमें अपनी जेब से पैसे निकाल के वो चीज फिर से दोबारा खरीदनी है. इसलिए हमें चाहिए कि ये बात समझे, जैसे कि रिफल साहिबा ने बजा फरमाया कि ये इंटर्न दरअसल ये एक प्यार की एक और शक्ल है हमारे लिए उनकी तरफ से.
1: सही बात है.

0: समीन आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। और जिन समीन ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनको हम बताते चलें कि आप जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामी सुबह के साथ सुबह 7:10 से, और ये प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 तक। इस वक्त हो चला है खबरों का, 7:45 हुए हैं। सुनते हैं कश्मीर खबरों का बुलेटिन।
1: ये छे आकाशवाणी। सुबह 7:05 सपद खबरन हुंद बुलेटिन है चुस ब शेख तजम्मुल। गड़ अख नजर खास खास खबरन हजन सुर्खियन पेट। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कर रात नई दिल्ली में द्वंजय में प्रगति मीटिंग सदारत, यद दौरान तिमो बुनियादी ढांचिक प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल करनीन पे जोर दुत। तिजारत सन्नतन हिंद वजीर पीयूष गोयलन हिच अमरीकी तिजारती नुमाइंद जेमिसन ग्रीरस सजारती मुजात हिंदिस पेशरफ्त साम। खर्ज वजीर एस जयशंकरन कर सियोलस में जनूबी कोरिया किस पन्नस हमन सब छो ह्यूनस मीटिंग, यद दौरान तिमो भारत जनूबी कोरिया ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करनस पर जोर दुत। तो ओमानन छु आबनाए हरमुज किन अख आरजी समंदरी राहदारी खोलन ऐलान कोरमुत। पेश खबरन हंस तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदियन कर रात दुवंजह में प्रगति मीटिंग सदारत, यद दौरान तिमो सड़क बिजली सन्नती राहदारी तो मेट्रो रेल शोबन अंदर चोरन रियासतन हिंदन बुनियादी ढांचकिन बड़न प्रोजेक्टन साम हिच। इमन प्रोजेक्टन पे 30,000 करोड़ रुपयन सरमाकारी करान। वजीर अजमन वोन बुनियादी ढांचकिन प्रोजेक्टन हिंदिस तकमीलस अंदर चेर सपदन किन छु खर्च हुरान, यल जन अम आम लूक तो सन्नत बरवक्त फायदो निश महरूम सपदान। तमो दि मुतलिक वजारतन तो रियासती सरकार हदायत जिम कर मिशन मोडस मन प्रोजेक्टन हज वत मायल ठर दूर तो प्रोजेक्टन हज अमल आवरी पे थवन नजदीकी नजर गुजर। वजीर अजमन दु बुनियादी ढांचक प्रोजेक्टन हज मनसूबंदी तो बरवक्त मुकम्मल कर बापत PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान किस असरदार इस्तेमाल पे जोर। वजीर अजम सफ्तरन वोनमुत मीटिंग दौरान आय TB मुक्त भारत अभियान तसाम हन, यद दौरान वजीर अजमन सिल बेमार काप रटनस मज मसनूई जहानत तो बाकी नवीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने किस जरूरत पे जोर दुत। वजीर अजमन हिज अख तुई साइबर क्राइम तो डिजिटल अरेस्टस मुतलिक शिकायतन तसाम। तिजारत सन्नतन हिंद मरकजी वजीर पीयूष गोयलन कर अमरीका किस तजारती मामलन हिंदिस नुमाइंद जेमिसन ग्रीरस सहिंदिस वफदस हमरा रात सिलसिलवार मीटिंग। अकिस सोशल मीडिया पोस्टस मज वन पीयूष गोयलन मीटिंग मज आय भारत अमरीका दरमियान जहरी तजारती कदबात हिंदिस पेशरफ्त साम हन तो दोशवन मुल्कन दरमियान इकतसदी शिरकोत मजीद मुस्तहकम करनक तौर तरीकन आव दल दिन। तमो कर जेमिसन ग्रीरस सिंध तजारती कदबात अख मुस्बत सिमत दिन बापत तारीफ तो बवक वमेद जे दोशवे मुल्क थावन तजारती रिश्ते मजबूत बनावन बापत कदबात जारी। भारतिक खर्ज वजीर डॉक्टर एस जयशंकरन छु वोनमुत मौजूद आलमी चैलेंजन हिंदिस दौरस मज भारत तो जनूबी कोरियास दरमियान ताल्लुकात बेहन मजबूत बनावन सेठा अहम। तमो वोन जोर दित मुश्तरक अकदार तो बाहमी एतमाद।

सवाल और साथ ही चलंत पेश करेंगे 4:45 पर। इनसे आप कला में बशीर बदरवही और कला में मंशूर बानहली सुनेंगे। गोजरी प्रोग्राम शाम 5 ब्रॉडकास्ट होगा। दयाती भाई अपना प्रोग्राम सुनेंगे गर्मी बाइन हिंद खत्र शाम 6:05 पर। प्रोग्राम में क्राफ्ट विलेज कान्हामा में सदाबंद की गई रिकॉर्डिंग भी शामिल है। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहरबीन आप समाप्त करते हैं हर रोज ठीक शाम 7 और रात 8 वक्त रहता है प्रोग्राम वादी की आवाज का।

तो समीन, ये थी आज के प्रोग्रामों के हवाले से आपके लिए जानकारी। इस वक्त आप जुड़े हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह के साथ और ये वक्त हो चला है आकाशवाणी दिल्ली से समाचारों का। जी समीन, ठीक 8 बजे आप तक आकाशवाणी दिल्ली से समाचार पहुंचेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आशा मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभी

0: व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
2: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के निकट स्थित गोदाम तक पहुँचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलेख दर्जे तक पहुँचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी गई है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP, आर्मी, व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभीडांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
4: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी, नवाचार और ब्रिटेन भारत मोमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी।

0: जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमेरिकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
1: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
2: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों 4 दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को 1 गोल और 1 असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के 2 गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
0: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है, टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, अमेरिकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देशबंधु की खबर है, कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है, क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल, पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स

0: डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 2 103.5 MHz पर मीडियम या 268.8 मीटर और इसके अलावा आप हमें DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह। मैं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ हैं शबीर अहमद खान। आज 25 जून है और आज तारीख के हवाले से देखते हैं कि आज तारीख के हवाले से क्या कुछ हुआ है। देखिए 25 जून दुनिया और बरसगीर की तारीख में कई अहम वाकयात की वजह से याद रखा जाता है। इन में से बाज़ ने आलमी सियासत, साइंस और तारीख का रुख बदल दिया। 25 जून सन 1752 मशहूर अमेरिकी साइंसदान और सियासतदान बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तूफानी बादलों में पतंग उड़ाकर बिजली की नौयत पर अपना मशहूर तजुर्बा किया। आज ही के दिन
3: जी रिफत साहब, आज ही के दिन यानी 1967 में आज ही के दिन यानी 25 जून को BBC ने दुनिया का पहला लाइव सैटेलाइट आवर वर्ल्ड टीवी प्रोग्राम नश्र किया। इसमें मशहूर बैंड द बीटल्स ने अपना गाना ऑल यू नीड इज लव पहली बार पेश किया।
2: आज ही के दिन कोरियन वॉर का आगाज हुआ पच्चीस जून 1950 को, जब शुमाली कोरिया ने जनूबी कोरिया पर हमला किया। ये जंग सर्द यानी सर्द जंग के दौर का एक अहम तनाज़ा थी जिसमें कोल्ड वॉर जंग में एक तरफ अमेरिका और इसके इतिहादी जनूबी कोरिया के साथ थे, जबकि दूसरी तरफ चीन और सोवियत यूनियन शुमाली कोरिया की हिमायत कर रहे थे। इस जंग में लाखों अफराद हलाक हुए और आज भी कोरिया 2 अलग ममालिक में तकसीम है।
3: जी रिफत, क्रिकेट शायकीन के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है क्योंकि आज ही के दिन यानी 25 जून को 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के मैदान में वेस्ट इंडीज को हराकर पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। तो समीन तारीख में और क्या है ये भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन पहले ये नगमा सुनते हैं।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज प्रोग्राम है लाइव मॉर्निंग शो पैगाम सुबह और इस वक्त हम बात कर रहे हैं आज के दिन के हवाले से, जहां आज 25 जून है और क्या कुछ हुआ है तारीख में आज के दिन। कनाडा और तुर्की की तारीख यानी इन दोनों ममालिक को अपनी तारीख की पहली खातून वज़ीरे आज़म मिली। कनाडा में किम कैम्बल और तुर्की में तानसू चेलर ने ओहदा संभाल लिया।
1: आज ही के दिन 25 जून 1991 को क्रोशिया और स्लोवेनिया ने साबिक युगोस्लाविया से आजादी का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद बकलान में कई जंगें हुईं और बिल आखिर युगोस्लाविया कई आजाद रियासतों में तकसीम हो गया। आज ही के दिन
0: 25 जून यानी आज ही के दिन, जहां समीन 2009 25 जून को दुनिया के सबसे मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन 50 बरस की उम्र में लॉस एंजल्स में इंतकाल कर गए।
1: 25 जून 1903 ईस्वी को जॉर्ज ऑरवेल पैदा हुए। वो अंग्रेजी अदब के अजीम मुसन्निफीन में से शुमार होते हैं। उनकी मशहूर किताबें 1984 और एनिमल फार्म आज भी दुनिया भर में पढ़ी जाती है। समीन 25 जून का पैगाम हमें ये याद दिलाता है कि जंगें कौमों की तकदीर बदल सकती हैं, आज़ादी और जमहूरियत की हिफाजत ज़रूरी है, साइंस तहकीक इंसानी तरक्की का रास्ता हमवार करती है, तारीख के अहम फैसले आने वाले नस्लों पर गहरे असरात छोड़ते हैं। इसलिए 25 जून को आलमी सियासी और तारीखी एतबार से एक अहम तारीख समझा जाता है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुनो,
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज प्रोग्राम है पयाम सुबह लाइव मॉर्निंग शो और इस वक्त 8:30 हो रहे हैं और ये वक्त है खबरों का। तो समीन आइए आकाशवाणी दिल्ली चलते हैं जहां से पेश होगा खबरनामा।
5: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया और AI पर मबनी TB के खाते में और साइबर धोखाधही के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज उन लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान मुसीबतें झेली थी। 6 साल के वक्फे के बाद उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत फिर शुरू होगी। 26 तिजारती पासेस जारी किए गए हैं। अमरीकी विफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को वोट देने के लिए शहरियत के सबूत को पेश करने की जरूरत को नाफिज करने से रोक दिया है। वेनेजुएला में आज सुबह 7.5 की शिद्दत का शदीद जलजला महसूस किया गया जिससे कई इमारतें मुनहदिम हो गईं। और क्रिकेट में आज शाम मैनचेस्टर में खवातीन के ICC T20 आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज के लिए ICT पर मबनी प्लेटफॉर्म प्रगति की 52वीं मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पेशरफ्त का भी जायजा लिया। उन्होंने साइबर जराइम और डिजिटल गिरफ्तारी से मुतालिक धोखादेही की शिकायतों का भी जायजा लिया। जनाब मोदी ने AI पर मबनी टीबी के खाते में और साइबर धोखादेही से सख्ती से निमटने की जरूरत पर भी जोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
6: मीटिंग के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 4 रियासतों में सड़क, बिजली, सनअती कॉरिडोर और मेट्रो रेल शोबों में 4 बड़े बुनियादी ढांचों के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी में इजाफा करना, सनअती तरक्की को आगे बढ़ाना और अवामी फलाह बहबूद वगैरह शामिल हैं। वजीर आजम ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों में ताखीर की वजह से लागत में इजाफा होगा और शहरी बरवक्त फवायद से महरूम रह जाएंगे। उन्होंने वजारतों और रियासती सरकारों को हिदायत दी कि वो एक मोड मिशन में जेर इल्तवा मामला हल करें और उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने मनसूबों की निगरानी और बेहतर मनसूबाबंदी के लिए PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के मौसर इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने TB मुक्त भारत अभियान की पेशरफ का भी जायजा लिया और बेदारी और कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कोशिशों में NCC कैडेट्स और माई भारत रजाकारों को शामिल करने की भी तजवीज रखी। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के दरमियान मजबूत तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर तेजी से काम करने के लिए E0 FIR मैकेनिज्म के निफाज और अवामी बेदारी मुहिम की जरूरत पर भी जोर दिया। नई दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं

0: हुसैन अख्तर।
1: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून साल 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खिराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: 1975 को आज ही के दिन उस वक्त के सदर जमहूरिया फखरुद्दीन अली अहमद ने अंदरूनी खलफशार से पैदा होने वाले खतरात का हवाला देते हुए आईन की दफा 352 के तहत मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरतेहाल के सबब किया गया था जिसने उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत की कानूनी हैसियत व जवाज को नुकसान पहुँचाया गया था। इसके नतीजे में आमिला ने मुकम्मल इख्तियार अपने हाथ में ले लिए थे और रियासत पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इमरजेंसी के ऐलान के बाद आईन में हासिल बहुत से तहफुजात को दफा 358 के तहत मुअत्तल कर दिया गया था। तकरीर और इजहार राय की आज़ादी, एक जगह जमा होने और आने जाने की आज़ादी समेत उन हकूक को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी जमानत दफा 19 के तहत दी गई थी। शहरियों को उनके हकूक की खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने के हकूक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर प्री सेंसरशिप नाफिस कर दी गई थी। यहाँ तक कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को ख़त्म कर दिया गया था जो प्रेस की आज़ादी की तहफ़ का एक कानूनी इदारा है। इसी मुद्दत के दौरान आईनी तरमीम के जरिए इमरजेंसी का ऐलान करने के सदर जमहूरिया के फैसले पर सवाल करने से रोक दिया गया था और वज़ीर आज़म लोकसभा के स्पीकर के इंतखाब को अदालती जाँच पड़ताल से मुस्तस्ना कर दिया गया था। सकाफत की वजारत आज नई दिल्ली में चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब का अहतमाम कर रही है जो इमरजेंसी के निफाज के बाद से 50 साल मुकम्मल होने का एक मौका है। इस मौके पर संविधान हत्या दिवस के साथ जमहूरियत हमेशा कायम रहे से मुतालिक एक नुमाइश के अलावा संविधान हत्या दिवस पर एक मुख्तसर फिल्म की नुमाइश की जाएगी। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत इस प्रोग्राम की सदारत करेंगे। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर।
1: उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के दरमियान सरहदी तिजारत के तकरीबन 6 साल के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होने की तवक्को है। पिथौरागढ़ जिले में थारचूला इंतजामिया के मुताबिक भारतीय ताजिरों का पहला दस्ता कल तिब्बत में तकलाकोट बाजार के लिए रवाना होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: तिजारती अफसर और धारचूला सब डिविजनल मजिस्ट्रेट SDM आशीष जोशी ने कहा कि पहले मरहले के तहत 26 तिजारती पास जारी किए गए हैं जिनमें 17 ताजिर और 9 मुआविन शामिल हैं। गंजी में इस अमल में सहूलत के लिए एक कस्टम ऑफिस भी खोला गया है। जनाब जोशी ने कहा कि ताजिरों ने लिपु लेक दर्रे के नज़दीक वाके गांव के गोदामों में पहले ही अपनी अशिया जमा कर ली हैं। इंतजामिया को 103 से ज़्यादा ताजिरों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। दूसरे मरहले के तहत दीगर 25 ताजिरों को इजाज़त दी जाएगी। ताजिरों की मदद के लिए इंतजामिया ने लिपु लेक दर्रे तक अशिया की नकलो हमल की गरज से नबी ढांग के नज़दीक खच्चरों और घोड़ों का भी इंतजाम किया गया है।
3: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू हैं। बुधवार तक वहां पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेके पड़ाव था उसमें एक संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की। उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप ही एक पड़ाव चयनित किया गया है।
2: भारत चीन सरहदी तजारत का आगाज पहले 1991 में हुआ था लेकिन 2020 में कोविड-19 वबा के मद्देनजर इसे मुअत्तल कर दिया गया था। आकाशवाणी न्यूज देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
1: शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू आज लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डे से मुल्क की पहली हब एंड स्पोक बैनुल अक्वामी फजाई खिदमात का आगाज करेंगे। वो कल काशी पहुंचे थे और उन्होंने हवाई अड्डे पर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी मुआयना किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत अपनी ब्रिक्स सदारत 2026 के तहत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स वुजराए तवानाई की मीटिंग की मेजबानी करेगा। दो रोजा मीटिंग में 3 अहम तरजीहात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक रसाई और मुशावरत, नीस टेक्नोलॉजी और इख्तिरा शामिल हैं। ब्रिक्स के तमाम रुकन मुमालिक के तवानाई के वुजरा और सीनियर अफसरान अहम शोबों में तावुन को मजबूत करने के लिए इस दो रोजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत का मौजू लचकदारी, इख्तिरा, तावुन और पायदारी का कयाम है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज प्रोग्राम है पयाम सुबह लाइव मॉर्निंग शो सुबह 7:10 से शुरू होकर 11:30 तक चलेगा। और रिफत जी 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है अपने सामयिन तक अखबारात की सुर्खियां पहुंचाने का।
1: बिल्कुल,
2: पेश की जा रही है आज की सुर्खियां।
3: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, ईशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स, मौलाना आजाद रोड, श्रीनगर।
0: समीन, आज है 1448 हिजरी के मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख और जून की 25 तारीख। इस वक्त हमारे पास उर्दू रोजनामे है और मेरे हाथ में इस वक्त जो रोजनामा है उसकी सबसे पहली और नुमाया सुर्खी है, श्रीनगर में 8वें मुहर्रम का रिवायती जुलूस लाल चौक हजारों अजादारों से भर गया, मुसलसल चौथे साल गुरु बाजार से डलगेट तक इजाजत दी गई।
1: एक और रोजनामे की खबर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ईस्ट कोस्ट कश्मीर की 36वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल मीटिंग की सदारत की, यूनिवर्सिटी में इस्लाहात, एग्री स्टार्टअप पार्क और आलमी वेटनरी स्कूल के कयाम की मंजूरी, ईस्ट कोस्ट कश्मीर ने मकामी बुनियादों से आलमी उमंगों तक का सफर तय किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर।
0: प्राइवेट स्कूलों की अपील हाईकोर्ट में मुस्तरद, जम्मू कश्मीर बोर्ड निसाबी किताबों की पॉलिसी बरकरार।
1: 10 मुहर्रमुल हराम को जड्डीबल में मरकजी जुलूस के लिए जामा इंतजामात, कामयाब और पुरअमन इनाकात को यकीनी बनाने के लिए पुरअजम, SSP श्रीनगर।
0: नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की मीटिंग कल, शाह नार्कोटिक्स कंट्रोल पर विजन दस्तावेजात जारी करेंगे।
1: 8 मुहर्रमुल हराम का तारीखी जुलूस, अलसु बरामद, अजादारों के सैलाब से शहर का वस्ती हिस्सा मातम कदा बन गया, शोहदाए करबला को शानदार खराज और सलाम अकीदत पेश, गुरु बाजार से डलगेट तक के रवायती रास्ते पर पुर फजा अजादारों की मर्सियों और नौजवानों की गूंज से मखमूम, अजादारों की सहूलत और राहतकारी के लिए जगह जगह पानी की सहूलतें, तिब्बी कैंप और रजाकाराना खिदमात स्टॉल।
0: कीरथाई सेकेंड प्रोजेक्ट की सलाहियत कम करने का फैसला, मंसूबे के लिए 197 हेक्टेयर जंगलाती अराजी की मुंतकली को मंजूरी, 9000 दरख्त काटे जाएंगे।
1: जम्मू और कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला और नाकाबिल तंसीक हिस्सा है, अक्वामे मुत्तहिदा में कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान का भारत का दो टूक मौकफ, पाकिस्तान और चीन के जेर एहतमाम इजलास में कश्मीर का जिक्र, भारत का फोरम को सियासी बनाने का इल्जाम।
0: गुलमर्ग गंडोला की बंदिश को 1 माह हो गया, सियाहती आमदन में लाखों रूपये का खसारा, आज खुलने का इम्कान।
1: फौज की व्हाइट नाइट कोर कमांडर का दौरा राजौरी, जिला में सिक्योरिटी सूरतहाल और इंसलात दहशतगर्द

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: आकाशवाणी हूँ श्रीनगर स्टेशन मीडियम वेव अक्सत शुरह किलो हर्ट्स तो एफ एम अखतरा आशारिया पाँच मेगाहर्ट्ज़न पे समीन खबरन हूँ वक् वो यानी नौ बजे तो वह मिनट सपद वो खबर गोर कश्र पे तमें उर्दू पे

0: दारान का क्या कहना है?
1: सर बताइए क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, और जो आपके डिपॉजिटर्स के हवाले से कुछ कंसर्न है उनके हवाले से बताइए।
2: जनाब आज का ये एहतजाज इससे हो रहा है आरएडबी डिवीजन अनंतनाग में, पिछले कई वर्षों से जो हमारी पेमेंट हुई है, हमने दरखास्तें दी है और बाकी महकमों ने दरखास्त दी है कि हमारी डिपॉजिट की जाए, लेकिन पिछले डेढ़ महीने से हमें ये बताया जा रहा है कि वो अकाउंट चेंज हुआ है या कुछ और बोल रहा है कि अकाउंट हैक हुआ है और हमारी कोई डिपॉजिट रिलीज नहीं हो रही है। हमने बारहा अपने बाल अफसरान से गुजारिश की कि इस मसले को हल किया जाए, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। वो आज कल कर दिया जा रहा है पिछले दो महीने से वो बोल रहे कोई अकाउंट चेंज हो रहा है मगर हमारी डिपॉजिट नहीं रिलीज हो रही है।
1: किन काम के डिपॉजिट
2: जो पिछले दो तीन साल से हमने काम किए हैं उनमें नॉर्मल डिपॉजिट 10% 15% रहता है, जो आफ्टर डीएलपी जो खत्म हो जाता है तो वो डिपॉजिट एज पर लॉ रिलीज हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा है इस साल। पता नहीं
1: क्या अस्पताल को जॉब करना चाहिए।
2: हम गवर्नमेंट से एलजी साहब से जो कंसर्न मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करे चाहते हैं कि हमारे तमाम डिपॉजिट रिलीज की जाए।
1: बताइए सर क्या मटेरियल के बारे
2: में? मटेरियल के असले से हमें मसला ये है कि ठेकेदारान या उस लोकल भी कहीं से मटेरियल हासिल नहीं कर सकता, चाहे रेत हो या बाजरी हो या बोल्डर है, कहीं से मटेरियल लीगली नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में लगभग 5-6 ब्लॉकों के टेंडर किए हैं, लेकिन उसमें भी कई महीने हो गए कोई अलॉटमेंट उनमें नहीं हो रही है, इसलिए लगभग 80-90% हमारे डिस्ट्रिक्ट में काम बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि हम पुरजोर गुजारिश करते
1: हैं। क्या है सीधे बताइए,
2: हम जो मिनिस्टर साहब हैं हमारे आर्मी के, हम उससे गुजारिश करते हैं जल्दी से मसला हल किया जाए और मटेरियल को रिलीज किया जाए। मेहरबानी आपकी।
1: फिर सब क्या मसला?
3: पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जब भी हमारे मसले पड़ते हैं तो तसदुक साहब फ्रंट पोर्शन पे होते हैं। आज हमारा मसला पिछले 3 महीनों से पेंडिंग है, ये एक्चुअली डिपॉजिट का मसला है। डिपॉजिट जो हमारा है ये एक्चुअली जो हमारा काम होता है उसमें 10% डिपॉजिट रहता है और ये बड़े दिनों पे हमें काम आता था, लेकिन हम कंटिन्यूअसली एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि हमारा ये 10% जो अपना हक है हमारा इसको रिलीज करो।
1: सर ये सारे डिविजन में,
3: ये सारे डिविजन में, हालांकि तो आरएनडी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जब अप्लाई कर रहे हैं डिपॉजिट के लिए तो बोलते हैं कि हेड ही हाइक हुआ है, इसमें चेंज हुआ है हेड, तो हर ऑफिस में हम जाते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, बोलते हैं वो बोलते विद इन 2 डेज योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व, लेकिन कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम है सारे डिपार्टमेंट में। और दूसरा कुछ डिपॉजिट यहाँ पे पेंडिंग है जो पिछले 3 सालों से पेंडिंग है और वो भी रिलीज नहीं हो रहा है।
1: डिपार्टमेंट में आपने काम किया?
3: हमने आरएनबी में किया, हमने पीएचई में किया, हमने इरिगेशन में किया और सब जगह पे यही मसला है। और इसमें जो पिछले 3 सालों से डिपॉजिट है वो अब लैपस होने वाला है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि ये लैपस हो जाए और फिर हम एप्लीकेशन भी नहीं डाल सकते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं डिप्टी सीएम साहब से कि जल्द से जल्द एज अर्ली एज पॉसिबल इसको रिलीज किया जाए। पता नहीं ये कॉन्ट्रैक्टर को इस तरह इतना तंग कर रहे हैं, एक तरफ से मटेरियल ढूंढ रहे कहीं नहीं मिल रहा है, दूसरी तरफ हम फाइनेंस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारा ये डिपॉजिट है, ये हमारा अपना पैसा है, अपना हक है, जो हमने पेमेंट ली है उसका ये 10% है, लेकिन विदाउट नोइंग द रीजंस। चीफ मिनिस्टर साहब से रोज गुजारिश करते हैं कि क्या मसला है, अगर आपने इतनी मेजोरिटी ली है तो इतना बड़े मसले क्यों बन रहे हैं, कंटिन्यूअसली इतने बड़े मसले बन रहे हैं, हमारा अपना हक है, कोई जब वो हमारा अपना डिपॉजिट रिलीज नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता है कि इसकी हुकूमत कल कामयाब रहेगी, कल जो हम नया काम करेंगे उसका पैसा ही मिलेगा, जबकि वो पैसा नहीं मिला जो आ रही है, हमारा हक है।
0: उम्मीद यही की जाती है कि ठेकेदारान के मसाइल की फौरी तौर नोटिस अरबाबी इख्तदार लेंगे ताकि एक बार फिर तामीर और तरक्की का दौर जनूबी कश्मीर के अक्सर डिविजन में शुरू होगा। शहर शहर मंजर के लिए अनंतराग से मैं तसद्दुक रशीद।
4: प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स।
5: संबल इंदर कोट मुस्लिम आबाद गुलाम सिंह बाटस जनाब, मोहरमस मैं सोरे लाइट सिस्टम फाल कर मगर इस सहल नस्फस कर नस्फ थे पोन वो गुजारिश कर तहसीलदार सुम्बलस अमुक ये वो क्या थोड़ा नस्फ इत पे नस्फ गाम अथ लगन लाइट
6: बहुत बानी पोरा अस वाना ब्रार मिस मसल अरगाम कोलस अरगाम अकरीबन 10 साल कनाल जमीन दल आब तो अत कदर वाले जान गुज खस्त हालत मह अगर तम कदर तब पे क्या बन अलक आब कानी
7: हरद बटपूरा बड़गाम पे शबीर अहमद सूफी अस मसलह लिंक रोडन वह कल पे गया हुकूमत वनान कि लिंक रोडन मेगडम वाइज कर अच्छा पृथान योर कंसन रोडन सख्ती रूद राप मुश्किल गकिन बचन माजन बेन सारी खत्म सकूल अत तौर गचन गख लिंक रोड से जो ढाई किलोमीटर यम वटि वनव आर एन बी वाल पी एम जी वाल मौजूद हुकूमत तनव तो कह गोर गो ना पे क्या वो तुंद वसादत वसान कि अगर तुंद वसादत इन गे तो अरहन ये मसला हल
6: गुलाम महमद डार बीरो मीरपुर पे आमुत हाई स्कूल जो कह मह बने बिल्डिंग बने तथा दिशा जमींदार जमीन तो पत् पान वो

0: बिल्कुल ऐसी साइट्स का। लेकिन हमारे जो हर जिला में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है उनको भी ये पावर दी गई है सरकार की तरफ से कि वो हर एक दुकान पे जहां भी उनको लगता है कि गलत पेस्टिसाइड बेचा जा रहा है या डुप्लीकेट कोई नाम से बेचा जा रहा है उसे छापामारी कर सकते हैं। जैसे भी दो अभी केसेस हमारे सामने आए, एक अच्छा बल में हुआ है, एक M45 नाम से कोई आई है, कोई पाउडर है, पेटेबल पाउडर, उसका स्प्रे करने से सारा उसका नुकसान हो गया। सेम एक शोपियन में भी ऐसा हुआ है। तो कल हमारी टीम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो लॉ एनफोर्समेंट के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ शोपियन जिला के जो हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं और अनंतनाग जिला के हमारे चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर हैं वो उनके साथ मुआयना करने जा रहे हैं और उसकी सैंपलिंग भी कर दी गई है। उसको जिस दुकान से उन्होंने वो सैंपलिंग लाया था, जहाँ से किसान ने वो खरीदा था, उसका कलेक्शन हो चुका है और उसको एनालिसिस के लिए उन्होंने भेज दिया हुआ।
1: विकास आनंद जी, आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के प्रोग्राम शहर शहर मंजर के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
2: वादी के सरहदी जिला कुपवाड़ा के मच्छिल इलाके के बाशिंदों ने शिकायत की है कि ये इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी बाशिंदों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस इलाके की तामीर और तरक्की पर मुनासिब तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। कुपवाड़ा के हमारे नुमाइंदे रफीक अहमद की ये रिपोर्ट।
3: जिला कुपवाड़ा का सरहदी इलाका मच्छिल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाका है, अपनी कुदरती खूबसूरती, शफाफ पानी की नहरों और बॉर्डर टूरिज्म के लिए काफी शोहरत रखता है। हर साल सैयाह इस खूबसूरत इलाके का रुख करते हैं और यहाँ के दिलकश मनाजर से लुत्फ अंदोज होते हैं। ताहम मच्छिल की आवाम को बाज बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके में खेलों के फरोग के लिए कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान अपनी सलाहियतों को बेहतर अंदाज में उजागर नहीं कर पाते। इसी तरह फायर सर्विस स्टेशन न होने की वजह से आग लगने या दीगर हंगामी हालात में आवाम को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है और बर वक्त कार्रवाई भी मुतासर होती है। इलाके के बाशिंदगान ने हुकूमत और मुतलका हुकाम से मुतालबा किया है कि मच्छल में स्पोर्ट्स स्टेडियम और फायर सर्विस स्टेशन का कयाम अमल में लाया जाए ताकि अवामी मसाइल का अजाला हो सके और इलाके की तरक्की को मजीद फरोग मिल सके। इस हवाले से मुकामी लोगों ने शहर शहर मंजर को बताया।
4: मेरा नाम हाफिज अब्दुल जब्बार, पुशवारी मच्छल से बिलोंग करता हूँ। हमें यहाँ पर ग्राउंड की जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा एक स्टेडियम टाइप का एक ग्राउंड बन जाए ताकि मच्छल की यूथ जो खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनके लिए एक अच्छा सा ग्राउंड होना चाहिए। ग्राउंड के साथ साथ हमें फायर सर्विस की भी यहाँ अशद जरूरत है। खुदा न खास्ता अगर कहीं आग की वारदात हुई तो यहाँ पर फायर सर्विस नहीं है। हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर एक फायर सर्विस होनी चाहिए ताकि अगर खुदा न खास्ता कहीं आग लग जाए या कुछ नुकसान हो जाए तो फायर सर्विस मौजूद होने से गरीब लोगों को सहूलत हो जाए। आजकल हर एक मोबाइल के जरिए हर जगह स्टेडियम देखते हैं, चाहे कुपवाड़ा हो चाहे श्रीनगर हो। आज की यूथ, पढ़े लिखे यूथ यहाँ पर भी है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर पढ़े लिखे यूथ है। सबकी दिलचस्पी है कि हम चाहते हैं कि हमें यूथ के लिए ग्राउंड लाजमी होना चाहिए। यहाँ पर है, नॉर्मल ही है, अभी उस पर प्रेस चल रही है। हम चाहते हैं कि एक स्टेडियम टाइप का यहाँ ग्राउंड बन जाए ताकि डिस्ट्रिक्ट से अलावा भी अगर कोई टीमें फिर यहाँ आए ताकि उनको भी खेलने में यहाँ दिलचस्पी लग जाए।
3: जब ये मसाइल हमने MLA लोलाब केसर जमशेद लोन के सामने रखे तो उन्होंने कहा,
5: ये इलाका जो है जैसा कि आप जानते हैं फरफलांग एरिया है और यहाँ पे वर्किंग सीजन बहुत ही कम होता है। क्योंकि फायर सर्विस का मामला है वो मैंने ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट के साथ टेकअप किया है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट इस वक्त हमारे हाथ इख्तियार में नहीं है। लेकिन ऑलरेडी एक रिकमेंडेशन मेरी तरफ से भी गई है और चीफ मिनिस्टर साहब की भी तरफ से भी गई है, क्योंकि वो अंडर कंसिडरेशन है। अभी तक होम डिपार्टमेंट नए जो है ये स्टेशंस, फायर स्टेशंस अभी नहीं खोले हैं। जो ही वो महकमा फैसला लेगा तो पहले जो है मच्छल का हो, क्योंकि यहाँ पहाड़ी सिलसिला है, ग्राउंड्स की कमी है। लेकिन यहाँ जो मच्छल जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे एक जो है जगह हमें ग्राउंड की जो है उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं अच्छे तरीके से। उसके लिए भी पैसा वागुजार किया गया है, उस पर इस साल जो है अभी काम शुरू होने जा रहा है।
3: ज़रूरत इस बात की है कि मच्छल जैसे अहम सरहदी इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी न सिर्फ मुकामी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए अहम है, बल्कि इलाके की मजमूई तरक्की और सेहत को फ़रोग देने के लिए भी नागुज़ीर है। उम्मीद की जाती है कि मुतलका हुकाम अवामी मुतालबात पर संजीदगी से गौर करते हुए जल्द मौसर इकदाम करेंगे। शहर शहर मंजर के लिए कुपवाड़ा से मैं रफीक अहमद।

माइक्रोहर्ट्ज़ तो एफ एम 1.5 मेगाहर्ट्ज़ इन पैट समीन प्रोग्राम पयाम सुबह सुबह दह हेचन बजने ये वक्त सूफी सदुक वो बोजो तो मे दी वस इजाजत तो ये पता आ तुह सहिदा बशीर।

0: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
1: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तक नश्र सदान वाली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

बहरहाल सैयद जियाउद्दीन जीरक रहमतुल्लाहि अलैहिकर मोहम्मद मुराद सबिन जहरी तो बटनी तरबियत यमो कोर कम वंस अंदरी कुरान करीम हफिज फकज तो हदीस तरबियत तरक जीरक सबसी निश हासिल सलूक तो इरफान तलीम हासिल करने खातर गई यम पन्नस बुढ़बाबस सैयद अलाउद्दीन बुखारी सबस निश अत रट यमो अजकारि कलबन हज तरबियत सैयद मुराद रहमतुल्लाहि अलैहि दोहस सख मेहनत करान तो रातस शब बेदार आसान जियाउद्दीन बुखारी जीरक रहमतुल्लाहि अलैहि हुंद रहमत हक सपदन पत द्राई यम कांदे हामे जिक्र हुवल्लाहस अंदर सरमस्त सैयद मुराद सबन कोर बड़गाम तो इस्लामाबाद कन गामन गुठन हुंद सफर यम रूद आम लुकन शरीयत तो सलूक तलीम दिवान रवायत छ।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सबिन तुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छुप्रह दोह आकाश

0: प्राइवेट स्कूल जाके मैंने बहुत मेहनत की है लाइफ में, बहुत ज़्यादा. तो ग्रीन वैली स्कूल है, आपको पता होगा, इलाहीबाग में. वहाँ पर मैंने स्टार्ट किया जॉब आफ्टर माई ग्रेजुएशन. तो वहाँ पे मैंने कुछ साल दिए, लेकिन वो जो साल रहे मेरे लिए वो बहुत ही, वो जो कहते हैं ना, वो जो एक सोना जो फिर निकलता है ना, जो आग में जल के फिर जो निकलता है, बस वो एक चीज़ रही वहाँ पे. बिकॉज़ वहाँ पे काम करना टफ भी था, बट बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा जो एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में नहीं सीख पाता है एज स्टूडेंट. वहाँ पर एज टीचर, क्योंकि मैं छोटी भी थी, लेकिन सुनार अदराव सोन शेत वनान अख चीज़ को बर्दाश्त, जो एक पेशेंस होती है इंसान में, वो सीखी. बिकॉज काम वैसे करना होता था, और बहुत कुछ सीखने को मिला उस स्कूल. वो उस स्कूल का बहुत बड़ा रोल है ना, एक जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, क्योंकि मैं उस वक्त खुद भी छोटी थी, एज अ जस्ट अ ग्रेजुएट दैट टाइम. बहुत बड़ा रोल है एक शेप अप करने में, क्योंकि एक बैलेंस आ जाता है माइंड में.
1: सही बात.
0: तो उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी स्टडीज की, बीएड कर दिया पहले. उसके बाद आई चेंज फ्रॉम साइंस टू कश्मीरी लैंग्वेज. मैंने डिप्लोमा किया कश्मीरी लैंग्वेज में, चूंकि यहाँ से मैं सिंगिंग के साथ वाबस्ता थी
1: जी.
0: उस ऑडिशन पास करूँ तमीजी में, उस शौक गवनुक गवन उसने मैं जहन वोनमुत कि बह क्या रटि एज प्रोफेशन. मे वन तौक बस एज हॉबी गवान, शौकिया गवान बस. आई वुड रिकॉर्ड सॉन्ग्स एंड आई वुड लव टू हेयर इन माई कार ओनली फॉर माई सेल्फ. आई सिंग फॉर लाइक इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट कमर्शलाइजिंग माई थिंग्स. बस पढ़ने खातर गवान. रेडियो एक ऐसा इदारा है जो कि पहचान देता है आर्टिस्ट को. और ये इस बासा पत ये पुन घर.
1: सही.
0: तो रेडियो में ऑडिशन करना एक शौक था कि रेडियो पे गाना बजे. तो सु शौक तो गो पूरा विद द कंसेंट ऑफ माई फादर, अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे. तो सुत सुत रूद ग तो सती सत बढ़े मे पशर सू जान सू लायक गो कि मे बसो अन लैंग्वेज असल तो वाई टू गो विद साइंस स्ट्रीम. तो मे कोर डिप्लोमा, उसने बहुत बड़ा हाथ मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर शाद रमजान साहब का है. तो मदद तमो मे कर मून सो अख ट्रैकस पेटिनस केज कि साइंस स्टूडेंट पत रटन
1: कशर.
0: तो पत कर तमो गाइड बिकॉज तम ऐसे तिमन दोहन शौक सब ऐसे एचओडी, मगर तम ऐसे डिपार्टमेंटस मस तमो कर रहनुमाई कितकन क्या छु करन, कितकन छु पारन, क्या छु करन, किम बुक्स छ कंसल्ट करने. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मे कोर पत डिप्लोमा, देन आई डिड माई एमफिल एमए, देन आई डिड माई एमफिल, और उसके बाद मेरा पीएचडी हो गया. और साथ ही मैं फिर जॉब मैंने ग्रीन वैली से छोड़ के आई स्विच टू गेस गॉड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड थ्रू सिलेक्ट एज गवर्नमेंट टीचर. तो मैं जो जन पोस्टिंग सर बारसू अवंती पोरा डिफरेंट एक्सपीरियंस पत प्राइवेट सेक्टर पेट नीरत पत गवर्नमेंट जॉबस मजून, मगर तौर वत पत तम डिफिकल्टी वे सन बच फेस कर वन हेकान समझ कि गामन गुठन मन क्या हिस बच सुंद तम कम दुशवरी आवान, तम कम ठहरी आवान स्कूल वातनस मं पर्नस लेखनस मं. मगर पे तथ सिस्टमस मं अचान पत तम सिस्टम तम सिस्टम अख हिस बनान. तो अच्छ पता लगान कि यम कमन कमन दलाबो म गुजरत अत स्टेजस पे वाता. तो सो गो अख असल चीज तथ लेवल पे रूजित तम समझिन. तम पत तो उस मे कम काल गुमत तत तो बह गई थ्रू पब्लिक सर्विस कमीशन प्लस टू अस मज लेक्चरर. तो मे कोर पत डिफरेंट हायर सेकेंडरीज जॉइन, डाइटस मज करम कम. तो उसके बाद मेरा हायर एजुकेशन में एज प्रोफेसर सिलेक्शन हो गया
1: माशाल्लाह. तो अभी आप अपनी कारकर्दगी जो है वो अपना जो काम है आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप
0: जी इस वक्त मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज सुंबल में काम कर रही हूँ
1: जी, जी जी. तो ये था आपका पढ़ाई का सफर. तो इससे के बाद भी बहुत सारे मराहिल गुजरे, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन आप ही का गाया हुआ एक नादिया कलाम है, पहले ये सुन लें
0: जी. बिल्कुल.

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.8 मीटर। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयामे सुबह। मैं हूं आपकी मेजबान रिफत आरा और मेरे साथ नाहिदा है, और आज स्टूडियो में जो हमारी मेहमान हैं वो एक बहुत ही कामयाब खातून है, बहुत अच्छी लेडी है, जिनका नाम है डॉक्टर शाइस्ता अहमद। तो डॉक्टर साहिबा, आपने अभी कहा कि आपने नेट किया, एमफिल किया, पीएचडी किया, तो अपना जो रिसर्च पेपर था आपका उसके बारे में हमें बताइए, पीएचडी का।
1: जी, पहले मैं एमफिल की बात करूं। एमफिल में मेरा जो रिसर्च था वो था हबा खातून पे।
0: अच्छा।
1: दैट वाज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ हबा खातून पोएट्री।
0: ओके।
1: तो उसके बाद जो मेरा पीएचडी का था वो था महमूद गामी।

0: क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब,
1: बहुत अच्छी
0: हमारी असल आवाज, तुम्हारी असल शेरी
1: मैं मरहला गुजर जाता है, मैके से लड़की ससुराल जाती है तो वाकई में फिर लगता है कि वो ख्वाब था, वो अल्हड़पन, वो चहचहाहट, जैसे वो कहीं कहीं कहीं पर एक स्टेज होती है, कहीं पर हो सजाता है इंसान। यार बहुत अच्छा, ये लिखा आपने खुद है?
0: नहीं, ये मेरा कलाम है।
1: आपका कलाम नहीं है लेकिन गाया आपने, बहुत ही
0: बहुत ही खूब,
1: बहुत ही बढ़िया। और आप लिखती भी हैं?
0: जी जी, आप लिखती भी हैं। आप मुझे बताइए कि आप क्या लिखते हैं, गजल या किस में आपने लिखा है, नज़म लिखी है, क्या लिखा है? तुम लेखा नसरस मन
2: गोड़ किताब लिखम जन नसरस मन गोच किताब मालिन हो।
0: अच्छा
2: यह मैं हब खतून पे लिखम।
0: अच्छा
2: बिल्कुल। तो तम मैं ब्या किताब नाव महमूद गनी।
0: अच्छा
2: तो जन महमूद गनी बसित शर तिंद जिंदगी पे तम मैं साहित्य अकादमी थ्रू अख मोनोग्राफ लिखमुत गुलाम नबी फिराक सबस पे तो तम पी ट्रांसलेशन किताब सो महमूद गनी सबस पे जन ओरिजिनली मुजफ्फर अजमन लिखमुत इंग्लिशस मे मेरस
0: मेरस
2: बिल्कुल बहुत पर्ना तो मे मोन दस्तरस तो बे क्या शायरी तिखम जन वे पब्लिश ग
0: चलान तम
2: पन यावन खटित थावे बकस बावे दिल के अरमान पन यावन खटित थावे बकस बावे दिल के अरमान चमा फेरी अगर रावे बकस बावे दिल के अरमान वन क्या खोल खत तम सुंद गुलालन शर दिलस यम सुंद वन क्या खोल खत तम सुंद दिल गुलालन शर दिलस यम सुंद शिलस शिमदा कस हावे बकस बावे दिल के अरमान हतो वावो चमा वुष्थन बहारो मत चमा कुर्थन हतो वावो चमा वुष्थन बहारो मत चमा कुर्थम बुमा दूरर व्यत रावे बकस बावे दिल के अरमान।
0: जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त,
1: बहुत बढ़िया,
0: बहुत खूब, माशाल्लाह यह असल आवाज, यह असल शायरी तम खुद मे बसान ज्यादा असल
2: ब्या गजल दिलन वोनम बु दिमा वुफ तो बनहा जानवर आज कथा करहा अजल लनिश तो बनहा गम गुसारा आज कथन चानन छु प्रेरा कंद मगर तसीर जहर ख्यू कथन चानन छु प्रेरा कंद मगर तसीर जहर ख्यू मे कर ओसुम दिलस दुगनार चोसुक बोज गारा आज दपान सिरस मेनिस खबर महरम गच्छा जाका दपान सिरस मेनिस खबर महरम गच्छा जाका मैं डूठुम आज पनुन हमदम बनोम राजदारा आज।
1: क्या बात है, बहुत
0: बिल्कुल तुम वन कह इंसान मामूली प्रेजेंटली असल लेडी तथ शह कह मगर यम लाल अमिस अंदर तुम वात आज
1: साहिबा मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आप लाइफ रोजमसन सो बिजी लाइफ रोज
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत मेहनत की है, कभी एक इदारे में कभी दूसरे इदारे में, फिर आप प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर में आई, एज टीचर काम किया, उसके बाद आप अभी प्रोफेसर की हैसियत से काम करती हैं, उसके बाद फिर घर भी संभालना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो कैसे मैनेज कर पाती हैं आप?
0: मैनेज हो जाता है। आप तो देखिए, आप सुबह 6 बजे शायद यहाँ पहुंची है तो कैसे मैनेज होता है इंशाल्लाह। ये इंसान कल आसान मैनेज हो गसान तो बेल पत
1: जिंदगी में सपोर्ट सबका रहा।

0: सबका माशाल्लाह से सबका सपोर्ट, अपने अपने स्टेज पे सबका सपोर्ट रहा।
1: मालिस मस्त मिल अक बेहतरीन सब
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।
1: शायस्ता बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत टैलेंट रखती हैं जो बारे अच्छा आसान, उनमें ये भी होता है कि हम कुछ करें लेकिन वो घर के किसी कोने में घर की चार दीवारियों में ही खो जाती हैं। हालांकि टैलेंट उनमें होता है
2: जी, अल्लाह ताला ने ऐसा हर कोई कायनात का खूबी दिस मुस्लिम वंश से पहचान की जरूरत सच बोर्ड पर आने की जरूरत।
1: सही बात है, मसला ये होता है कि उस टैलेंट को निखारने की जरूरत होती है। उन लेडीज को क्या करना चाहिए जो कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं किसी भी वजह से, क्या उन्हें वो पर्दे तोड़कर आगे निकलना चाहिए? जैसे कि हमें
2: सपोर्ट आसान
1: नहीं मिलता है लेकिन आप में टैलेंट है, आप में खूबी है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: रिफर जी आज यूजन सोन मास्टर छुना ग्लोबल विलेज बनियोमुत
2: बिल्कुल
0: जो हमारा सोशल मीडिया है ना कहती चीज आज कोर लेडीज घरस मज बिहित क्लाउड किचन खोलान एंड आई एम सो हैप्पी ऑन दैट अकाउंट। तो वो कस मच टैलेंट खेन रन्नस
1: सही बात
0: तो सुछन तती बिहित के सस पैनल बर्तन खतर रन्नस तेम ती उस कितना ये पानन खेन चन वात ना हप बा केन ताइन घरस मज बिहित तेम छु नेबर नेरन के इन घरस मज बिहित छ सो ऑर्डर रटा सो मे छु बासा आजकल छ चीज इम्पॉसिबल आजकल सोरी
2: सिर्फ हिम्मत करने जरूरत
0: हिम्मत तो बेचे बस असल कॉज आना यन तो सारी पे ब्रो तथ पकन सारी ब्रो तथा सारी साथ तेज आज नबर नीरत तेमस कुन जाए गुन दुकान रटन तथा कह चीज खड़ा कर नो सो घरस मज बिहित सो घरस मज पन तंस मज कैलेंट मे वो ओत फेसबुक पे कि इंस्टा पे सोप मेकिंग हर्बल सोप्स लड़कियां बनाती हैं एंड आई एम सो हैप्पी ऑन दैट अकाउंट कि तुम छे डिपेंडेंट रोजा स्पेशल बुकेज बनाती हैं चॉकलेट बुकेज बनाती हैं। तो ये एक ऐसी चीज है केक्स बेकरी आप देखिए आजकल कितने पैशन है लोगों में लड़कियों में स्पेशली गर्ल्स वो बहुत फॉरवर्ड आ चुकी हैं इस चीज में कि वो किसी को शौक है केक्स बनाने का पेस्ट्री बनाने का तो वो चीज वो शौक सिर्फ शौक नहीं रहा अब वो एक यूनिट में चेंज हो गया अब उससे इनकम भी आ गई ठीक है तो वो घर बैठ के इट्स नॉट नेसेसरी कि वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढे तो घर बैठ के मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर है घर बैठ के आप अपना रोजगार कमाते हैं सो कल्चरन हिम्मत करें तुम टैलेंट सह बड़ प्रजन सड़ बार कत एक्सेल कर तो सह चीज पर्जन इंसान अकिस डायरेक्शन में पकान
1: पकान। सही कहा आपने, बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे। यहाँ आप ही का गाया हुआ एक और नगमा सुना
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: बुक्स लिखे हैं उसके बारे में कुछ बताए कि क्या क्या लिखा है आपने।
1: बेसिकली गई असल कत मे सान्य लक्षण उस कह सो कि स्कूल मज गशुर इंट्रोड्यूस
0: अच्छा
1: बिल्कुल पे कत कर मगर अस नगान स्क्रिप्ट लेखन कह
0: बिल्कुल
1: जन कि तिथ कथा वन यह मोन तो जो टूरिस्ट को अटेंड करता है जन बोट्स मज रोजान यह कत टूरिस्ट यह बिल्कुल असल पे कत कर अमिश अंग्रेज तुथ आगान यह बड़ फ्लंट बोलान मगर अगर अमिस ग्रामर पृथो तमी अंग्रेज सी पी ये अमिस पता इथे कन गुत अशन क्या गुत सान नए पन नव पोद तिंद खुद इम्पोर्टेंट तुम वन लैंग्वेज पन अदब बेसिकली तूत तूत जरखेज अदब सोन तूत बख्तावर रूद लल दैद पेठ शेख आलम हब खतून अरनिमाल उसके बाद हमारी जो सूफी शायरी का एक जो कारवान है हमारा उसके बाद जदीद पोइट्स अभी तक यह जरूरी जानून अकिस बचस मूल मूलन जरूरी सन अस बचस पाई अस मे मूल कम ठीक गो कि अस पाई कत कर वन कौमस अगर शनाख्त मोकल सो मकल
0: तेव
1: कि तथ लेखन गतम
0: लिटरेचर
1: क्या बोलन यह सिंदर सिंद पकान मगर कत तरान बच तेचान आज बच अंग्रेज स्कूल
0: मगर
1: बचस पाई मे घर युन मे नान हाँ नान सर पे कत कर यह सोन माहौल घर मज तो बच हेचानी हेचान यह अकिस बचस मोज दोद सपरान माज जेव दोद सपरान सो तेस मगर पे डिफिकल्टी तथ्य लगान बचन वन बे एप्रिशिएट कर प्रेजेंट स्नैरियो लैंग्वेज हूं यह कि अच्छन लक्चार पेशर कताब हेचान अल्फाज हेचान लफ्ज कित लेखन मात्रा क्या सो अगर बह चीज बोलान यह चीज कित हे बह लिखित जन मे सान वक्त कह तो पाई
0: बिल्कुल
1: यह असल कत तो सी सी जन वे सोन स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जिम्मेदारी आयत कि वन क्या हर कुछ सब्जेक्टस मे हर वरी किताब प्रिंट कर साइंस इंग्लिश मैथ पन पन एक्सपर्ट हर कुछ सब्जेक्टस खर तो इथे कनिश खर् वन ऑफ द मेम्बर्स जन न्यू एजुकेशन पॉलिसी तथ तहत तो किताब लेखान लास्ट ईयर तेखा कह किताब तो युस त इनशाला वन किताब अंडर प्रोसेस तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर तम मंजर आमस पे तो तम अकॉर्डिंग टू न्यू पॉलिसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इनशाला।
2: अच्छा आप कॉलेज में रहती हैं दिन भर
1: जी
2: कॉलेज में क्या एंगेजमेंट्स होती हैं आपकी?
1: रिफा जी बहन तीन यह रूद नोन जमान वे क्या गा सिर्फ उस पर्ना लेखन योत कॉलेज मज वन
2: तिल
1: बी सरप्राइज टू नो वी हैव नंबर ऑफ कम्युनिटीज कम्युनिटीज इन नो कॉलेजेस लाइक वी हैव मैगजीन कमेटी वी हैव न्यूज लेटर कमेटी वी हैव प्रोटोकॉल कमेटी वी हैव कैंटीन कमेटी वी हैव ट्रांसपोर्ट कमेटी वी हैव कल्चरल कमेटी वी हैव सेमिनार्स एंड डिबेट्स कमेटी सो एक्टिविटीज कॉलेज मज ग तम अथ बैनरस तल ग मिसाल बह वो तह बस कल्चरल कमेटी तो बेस बह लिटरेरी कमेटी कन्वीनर पे कॉलेज सो मे मे मेक श्योर कर रेतस मज कल्चरल प्रोग्राम्स हे बह पचन थ्रू कर बह डिबेट कर ऑर्गनाइज बह क्या पेंटिंग कम्पटिशन कर बचन मज ऑर्गनाइज बह कूत अवेयर कर बच कि तम जन स्टेज फोबिया सो नम तम अंदर इनर तिंद पर्सनैलिटी सो न बद तम रोज न वहम माइक पे बोल
2: कह
1: चीज तम स्कूल मज ओवरकम गो
0: सहस
1: मूर यह मेन अवलिन ड्यूटी कि क्लासेस क्लास दिन दिन क्लासेस बावजूद पर्ना पत् तम पत् तम नबर क्या
0: तिंद
1: डेवलपमेंट खर मिसाल के तौर पर अच्छे ये वन कल्चर अकेडमी बोड़ बार इदार।

0: संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, जब तत्कालीन सरकार ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आज़ादी को कमजोर करने का प्रयास किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। उन्होंने कहा कि उस समय नागरिकों के कई अधिकार सीमित कर दिए गए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भी इसका असर पड़ा। भारत आज से हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की बैठक में ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार विषयों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6ठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सीबीआई के अनुसार ये कार्रवाई देश भर में डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी 200 से अधिक ठगी की घटनाओं की जाँच के तहत की गई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। ये एयर इंडिया द्वारा संचालित पहली इजी कनेक्ट सेवा है। ये सेवा आज वाराणसी से रवाना होगी। इजी कनेक्ट मॉडल के तहत यात्री अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य के लिए चेक इन अपने शुरुआती हवाई अड्डे पर ही पूरा कर सकते हैं। पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनिंदिता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबद्ध दोहरे अंशदान समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। ये समझौते अगले महीने की 15 तारीख से लागू होने वाले हैं। यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय किया है। घरेलू शेयर बाजार के संविदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि से 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Venezuelan President Delcy Rodriguez has declared a state of emergency in the country following back-to-back earthquakes of magnitude 7.2 and 7.5 caused multiple buildings collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, Ms. Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Authorities are continuing

स्वीकार किया मैंने। जी दोस्तों, आपने इस फिल्म से निदा फाजली के अशआर सुने। उषा खन्ना की मौसिकी थी और ये आवाज़ थी लता मंगेशकर की। आइए एक गज़ल सुनते हैं फिल्म साथ साथ से। जावेद अख्तर ने इसकी अशआर लिखे हैं, कुलदीप सिंह ने मौसिकी दी है। आइए समाप्त करते हैं।

जी दोस्तों, आपने ये गज़ल सुनी, जावेद अख्तर ने इसे लिखा था, कुलदीप सिंह की मौसिकी थी और जगजीत सिंह की आवाज़ थी। फिल्म का नाम था साथ साथ। और अब अगला गीत आपकी खिदमत में पेश करेंगे फिल्म रज़िया सुल्तान से। इसके बोल लिखे हैं गीतकार जानिसार अख्तर ने, मौसिकार है खयाम और आवाज़ लता मंगेशकर की।

दोस्तों आप फिल्मी नगमे समाप्त कर रहे थे। यह आखिरी नगमा आपने सुना फिल्म रजिया सुल्तान से लता मंगेशकर की आवाज में। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हमारे यहाँ से खबरें नष्ट होंगी।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दिन के 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं इशफाक अमीन। पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर की सरबराही में खारजी मामलों से मुतल्लिक पार्लियामेंट की कायमा कमेटी इन दिनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4 रोजे दौरे पर है। कमेटी के मेंबरान दोनों यूटीज में सरहदी सलामती और खारजा पॉलिसी के मामलों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। यह कमेटी 25 जून तक

0: जम्मू श्रीनगर लेह और कारगिल के दौरे पर है। कायम कमेटी ने लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर की तामीराती सरगर्मियों के बारे में तबादला ख्याल किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मेम्बरान से कहा कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के अलावा दूसरी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। इसी दौरान कायम कमेटी के मेम्बरों ने श्रीनगर में वजीर अला उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात करके वजीर अला को अपने दौरे से मुतालिक तफसील दी। वजीर अला और कमेटी मेम्बरान ने जम्मू कश्मीर में तामीराती मंजरनामे के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार व आजीविका मिशन दी स्कीम को मंजूरी दी है। ये स्कीम 1 जुलाई से नाफिज होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इस स्कीम के तहत दी गरानों को सालाना 125 दिन के रोजगार की जमानत दी जाएगी। हुकूमत के मुताबिक स्कीम का मकसद रोजगार के मौके बढ़ाना, दही बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और पायदार तरक्की को फरोग देना है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी की मीटिंग असम्बली सेक्रेटरीट में चेयरमैन जस्टिस हसनैन मसूदी की सदारत में मुनाकिद हुई। मीटिंग में जेर इल्तवा इस्तेहकाक मामलात के जल्द अज जल्द तस्वीर और अराकीन असम्बली के इस्तेहकाक के तहफ़ पर जोर दिया गया। कमेटी ने 3 इस्तेहकाक तहरीकों पर नोट जारी करते हुए मुतलका हुकाम को 8 जुलाई को आइंदा मीटिंग में हाजिर होने की हिदायत दी। डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन भीम सैन तोती ने श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के इंतजाम का एक मीटिंग में जायजा लिया। उन्होंने भगवती नगर यात्री निवास और तवी रिवर फ्रंट व रजिस्ट्रेशन मरकज का दौरा करके रिहायश तबी सहूलियात पीने के साफ पानी सिक्योरिटी ट्रैफिक और रजिस्ट्रेशन के इंतजाम का मुआयना करने के साथ साथ मुतलका महकमों को तमाम इंतजाम पर वक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल करने की हिदायत दी। महकमा हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कश्मीर को GIQR कोड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कौमी एजाज स्कॉर से नवाजा गया है। महकमा को अवार्ड कॉर्पोरेट टेस्टिंग लेबॉरेटरी ISCT श्रीनगर के पश्मीना और दीगर दस्तकारी मसनूआत के लिए दिया गया है। महकमे के इस निज़ाम को नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इतलादी टेक्नोलॉजी की तरफ से GIQR कोड मैनेजमेंट सिस्टम के जुमरे में शामिल किया गया है। हुकाम के मुताबिक ये निज़ाम असल कश्मीरी GI मसनूआत की तस्दीक, शफाफियत और आलमी मंडी में इनकी शनाख्त को मजीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगी। पानी के तहफ़ देरपा इंतजाम और दोबारा इस्तेमाल के फरोग देने पर तवज्जो मरकूज करते हुए वाटर रिसोर्सेज रिकवरी सेल की मीटिंग कमिश्नर सेक्रेटरी मकानात व शहरी तरक्की मनदीप कौर की सदारत में मुनाकिद हुई। मीटिंग में गंदे पानी को साफ करके पकवान के बगैर बाकी मकासद के लिए दोबारा इस्तेमाल करने की हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जानकारी दी गई कि महकमा मकानात व शहरी तरक्की पानी की फराहमी, सीवरेज और आबी जखायर की बहाली के मुख्तलिफ मनसूबे अमला रहा है और इस मनसूबे को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए महकमे को अब तक 10,50,00,000 रुपये की रकम हासिल हुई है। जिला बडगाम में 28 जून को मुनाकिद होने वाली प्लस पोलियो मुहिम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान की सदारत में एक मीटिंग मुनाकिद हुई। मीटिंग में 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने, दुशवार गुजार और नकली मकानी करने वाली आबादी तक रसाई, वैक्सीन की बिलातातुल फरामी और मौसर निगरानी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। जिला बांडीपोरा में मोटर व्हीकल्स महकमे ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए खसूसी इन्फोर्समेंट मुहिम चलाई। इस दौरान 216 गाड़ियों की जांच की गई, जिनमें से 84 गाड़ियां मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों की मुर्तकिब पाई गई। खिलाफ वर्जी करने वालों से मजमू तौर पर 70,500 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। महकमे ने आवाम से सड़कों पर महफूज सफर करने के लिए ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी से अमल करने की अपील की। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर शुपियां के जेर एहतमाम रोजगार और खुद रोजगारी के लिए एक प्लेटफार्म के उन्वान से रोजगार मेला मुनाकिद हुआ। मेले का अफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर शिशर गुप्ता ने किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर खबरों बुलेटिन है। मंजूर अहमद पार्लियामेंट मेंबर शशि थरूर सरबराही में खारजी मामलन मुतलिक पार्लियामानी कायम कमेटी जम्मू कश्मीर तो लद्दाख यूटी हिंदिस दौरस पे यमन यूटी में सरहदी सलामती तो खारजी पालसी हिंदन मामलन पे ख्याल तबदल करान ये कमेटी रोज आज ताम जम्मू श्रीनगर लेह तो करगिल किस दौरस पे कायम कमेटी कोर लोक भवन श्रीनगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सत मुलाकात यह दौरान जम्मू कश्मीर किस तमीरती मंजरनामस पे ख्याल बावत करना आई। कमेटी कोर वजीर अला उमर अब्दुल्ला सत मुलाकात यह दौरान मेम्बरों वजीर अलहस पन्नस दौरस

सनकराम, आज के इस प्रोग्राम का आगाज हम एक स्क्रिप्ट से करेंगे जो इस प्रोग्राम के नाम रिदवान रशीद ने भेजी है, और इनके इस स्क्रिप्ट का अनुवान है वक्त एक कीमती शय। ये लिखते हैं, वक्त नाम है जिंदगी का, वक्त एक बेमिसाल जरिया और वसीलाए नजात है। ये अगर एक बार जाया हुआ किसी भी सूरत में वापस नहीं मिलता, इसे न छुआ जा सकता है और न ही ज़खीरा किया जा सकता है। अल्लाह ताला की दीगर मेहरबानियों में से इल्म, माल मता, सेहत सलामती, अमन आफियत के साथ वक्त गर्दिश महव साल भी एक नियामत है जिसका सिर्फ एहसास ही किया जा सकता है। इसकी अहमियत के पेश नज़र अल्लाह ताला ने जमाने की कसम खाई है। कुदरत के अता किए हुए वक्त का एक लम्हा भी जाया न करें। लम्हों का दुरुस्त इस्तेमाल करके हम महीनों और फिर सालों के मालिक बन सकते हैं। अगर हमने लम्हों को खो दिया तो उसके बाद हम महीनों और सालों को भी बड़ी बेदर्दी से खो देंगे। वक्त हमारा सबसे बड़ा सरमाया है, वक्त को जाया होने से बचाना है, क्योंकि एक लम्हा भी बड़ा कीमती होता है। हर बड़ी कामयाबी छोटी कामयाबियों के मजमुए का नाम होती है। अगर हम छोटी कामयाबी पर राजी हो जाएंगे, उसके बाद हम बड़ी कामयाबियों और कामरानियों के भी मालिक बन सकते हैं। बिलाशुबा महरूमी हसरत उन लोगों पर है जिन्होंने वक्त अजीज की कदर न जानी और फुर्सत के लम्हात ला यानी फजूलियात और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में गुजार दिए। क्योंकि उम्र इंसानी का अयाम बड़ी तेज रफ्तारी से गुजर जाते हैं और इंसान अपने आमाल सौलिया से खाली हाथों आहें भरता ही जाता है। इमाम मोहम्मदुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या ही खूब लिखा है, वक्त जमाना वही जरफ है जिसके अंदर हैरत अंगेज वाकात रोनुमा होते हैं, जिसके अंदर इंसान सब कुछ करता है और तंगी सख्ती नरमी तंग दस्ती और फराक दस्ती उस पर गुजरती है। लिहाजा उम्र इंसानी के अवकात भी इंतहा कीमती होते हैं। इमाम बिन कायम रहमतुल्लाह ने वक्त अजीज पर कितनी खूबसूरत और बसीरत अफरोज बहस फरमाई है जिसका खुलासा ये है कि वक्त देखते देखते गुजर जाता है जिसका तदारुक करना नामुमकिन है, इसे किसी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। फिर फुर्सत का वक्त जाया करने वाला इंसान सारी उम्र हाथ मलता ही रह जाता है, फिर उस पर नदामत करना भी मजीद वक्त जाया करने के बराबर है। इसलिए जब मौका हाथ से निकल जाता है तो फिर माँ सिवाय हसरत और यास महरूमी और नदामत के कुछ हासिल नहीं हो। वक्त के एहसास और इदराक के लिए कुरान अजीम में इरशाद है, जिसकी मौत आ जाती है तो अल्लाह ताला उसको हरगिज मोहलत नहीं देता। बिलाशुबा वक्त बर्फ की तरह है, अगर आप में इसे इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं तो ये बर्फ पानी की तरह पिघल जाएगा। जमाने ने आज तक कोई ऐसा आला भी इजाद नहीं किया जिसकी बदौलत आप जिंदगी के गुजरे हुए लम्हात वापस लौटा सके, और जो जमाना गुजर जाता है वो हमारे हाथों से निकल कर माजी बन जाता है। सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। जी हाँ, जो वक्त अभी मौजूद है उसे हाल और आने वाले मुस्तकबिल के नाम पर मौसूम करते हैं, जिसके मुतालिक हम अपना मुफीद लाए अमल बनाकर बखूबी मस्बत कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे कीमती सरमाया वक्त है, काश हम इसे जाया होने से बचा सके। जरा अपनी घड़ी की जानिब देखिए, किस कदर तेजी से वक्त गुजर जाता है और हमारी मुकर्ररा जिंदगी लम्हा ब लम्हा इख्तिताम की जानिब गामज़न है। वक्त हर इंसान का मता गिरा है। जब इंसान अलील सुबह बेदार होता है तो उसे कुदरत की जानिब से रोजाना 24 घंटे की गिरा माया प्यारी पूंजी हाथों में थमा दी जाती है, ताकि इंसान इसे सोच समझ कर मुफीद कामों में सर्फ करे। फिर आगे इसकी मर्जी वो अपनी कामयाबी व कामरानी की जानिब लपके या इसे नादानी और नाफरमानी की वादी में फेंक दे। वक्त को गुजर जाना ही है, फैसला हमें करना है कि हम क्या इसे सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं। बहुत खूब बहुत खूब बहुत बहुत शुक्रिया रिदवान रशीद आपके स्क्रिप्ट का जो आपने वक्त के बारे में लिखी थी। उम्मीद है सामिन किराम आपके इस

गाय का दूध पीने से परहेज अक्सर करते हैं, परहेज भी नहीं कहेंगे लेकिन मना जरूर कर लेते हैं ये कह के कि हमें दूध पसंद नहीं। अगर यही दूध हम उनको बाकी चीजों में मिलाकर भी दें तब भी वो ये कहते हैं कि हम दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि आजकल के बच्चों को ये भी लगता है कि दूध से हम मोटे हो जाते हैं। लेकिन गाय का दूध न पीने वाले बच्चों का कद देखा गया है छोटा रह जाता है अगर हम उनके शुरुआती सालों में ये ना दें। सुमन किराम माहरीन ने एक हैरत अंगेज इंकशाफ करते हुए कहा है कि जो बच्चे गाय और भैंस के दूध का मुतबादल दूध पीते हैं उनका कद छोटा रह जाता है। इस जमीन में 5000 से ज्यादा बच्चों का जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि जिन बच्चों को गाय के दूध के बजाय दीगर अकसाम के दूध दिए गए हैं उनकी बढ़ोतरी पर फर्क पड़ा और मुतबादल दूध पीने से उनका कद छोटा नोट किया गया, यानी अपने उम्र के लिहाज से बच्चों का कद कदर कम देखा गया। इस तहकी का एक पहलू और भी है कि जिन बच्चों ने गाय के दूध के अलावा दीगर अकसाम के दूध इस्तेमाल किए उनमें पस्ता कद की शरह भी इसी लिहाज से थी। कनाडा में सेंट माइकल हॉस्पिटल के डॉक्टर जोनाथन और उनके साथियों की जानिब से अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 साल बच्चों के लिए माँ का दूध ही बेहतर होता है और इस दौरान गाय के दूध से परहेज करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन लहमियात इतने छोटे बच्चे के लिए काबिल हजम नहीं होते, जबकि इसके बाद बच्चों को गाय का दूध जरूर पिलाना चाहिए वरना इनके नशोनुमा मुतासर होती है। गाय के दूध में दिमाग और हड्डियों के लिए जरूरी अज्जा मसलन प्रोटीन, कैल्शियम और दीगर जरूरी चिकनाइयां मौजूद होती हैं, जो 2 साल के बाद बच्चों के लिए इंतहाई नागुजीर हो जाती है। माहरीन ने 24 से 72 माह के 5034 बच्चों का बगौर मुताला किया और उनमें गाय के दूध और गाय के मुतबादल दूध मसलन सोया दूध, बादाम का दूध और दीगर तरह तरह के दूध पीने का जायजा दिया गया। अगरचे तहकीक अमेरिका और कनाडा के माहौल में हुई लेकिन हमारे मुल्क में भी बच्चों को गाय के मुतबादल दूध देने का रुझान बढ़ रहा है। तजिये में मालूम हुआ है कि इनमें 92% बच्चे गाय का दूध बाकायदगी से पी रहे हैं जबकि 8% बच्चे रोजाना गाय का मुतबादल दूध पीते थे। जिन बच्चों ने गाय का दूध नहीं पिया वो गाय के दूध पीने वाले बच्चों के मुकाबले में 0.4 सेंटीमीटर छोटे थे और दूध पीने वाले बच्चे औसतन इनसे 0.2% ज्यादा कद आवर थे। 3 साल के बच्चों में ये फर्क 1.5 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। डॉक्टर जोनाथन के मुताबिक गाय के दूध में 1 कप में 16 ग्राम प्रोटीन होता है जो 3 साल बच्चे की जरूरियात पूरा करने के लिए काफी होता है। हम बात करेंगे अखरोट खाने से बच्चों का दिमाग तरोताजा कैसे रहता है। समन किराम, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड और सिलीनियम की वाफर मिकदार मौजूद होती है जो दिमागी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों को अफसरदगी से दूर रखते हुए इनका दिमाग तरोताजा रखना चाहते हैं और इस बात के भी ख्वाहिशमंद है कि बुढ़ापे में वो दिमागी अमराज से महफूज रहें तो इन्हें बाकायदगी से अखरोट खाने का आदि बनाएं। फ्रांस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च के मुताबिक नौ उम्री के जमाने में जब बच्चे लड़कपन से बलोगत की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका दिमाग भी बहुत सी तब्दीलियों से गुजर रहा होता है, इसीलिए इन्हें इस उम्र में अखरोट खाने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि अखरोट ओमेगा 3 प्रोटीन से मालामाल होते हैं जो दिमाग के अफाल को दुरुस्त रखते हैं। माहरीन के मुताबिक अखरोट में तमाम जरूरी अज्जा होते हैं जो उम्र गुजरने के साथ साथ याददाश्त को कमजोर होने से महफूज रखते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड इंसानी जिस्म और दिमाग के लिए बहुत जरूरी होता है जो अखरोट के अलावा पालक, रोगनी मछली, अलसी के बीजों और सोयाबीन में भी वाफिर पाया जाता है। ताजा तहकीक में माहरीन ने कुछ जानवरों तजुर्बात भी किए जिन जानवरों को अखरोट में शामिल अज्जा दिए गए गजा के तौर पर और उनमें याददाश्त के तजुर्बात किए गए जिनसे साबित हुआ कि अखरोट जहनी और दिमागी सलाहियत बरकरार रखते हैं और डिप्रेशन या मायूसी को भी दूर भगाते हैं। इन जानवरों पर किए गए तजुर्बात से मालूम होता है कि अखरोट खाने से इनके दिमागी खलियात जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं के दरमियान राबते भी मजबूत होते हैं जो याददाश्त और हाफसे को अच्छा बनाते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि अखरोट हमारी नफसियाती सेहत तवाजुन में रखते हैं। इससे कबल इम्पीरियल कॉलेज लंदन के साइंसदानों ने इंकशाफ किया था कि रोजाना अखरोट और दीगर फलियां मसलन बादाम वगैरह खाने से अमराज़ क़ल्ब को
دور رکھا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ روزانہ

गजल आपने सुनी, उम्मीद है समीन कराम आपको यह गजल पसंद आई होगी। समीन कराम, अक्सर बच्चे खाने पीने में बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं, या अगर हम कहें कि नखरे करते हैं, गलत ना होगा, क्योंकि उनके पास चॉइस बहुत है और अच्छी अच्छी जो गजाएं हैं जिनमें न्यूट्रिशन है, जो उनकी जिस्म की निगहदाश्त और नशोनुमा के लिए जरूरी है, वो नहीं खाते हैं। तो इसी तरह अक्सर हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो गाय

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 1 बजा चाहता है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों के बुलेटिन नश करेंगे, जरा सा इंतजार कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में ये परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून 1975

0: भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19, acts of terrorism or the impact of extreme climate events.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा।

0: मा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए अब बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई। ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि। भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य

0: श्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
1: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
0: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुईं, जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
1: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजुभाई बधेका।
0: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजुभाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
1: गिजुभाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजुभाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
0: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: मास्टर जी।
1: प्रणाम। हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बिजू, तुम सुनाओ।
2: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
1: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता। खड़े होकर सुनाओ।
2: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
1: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
2: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना।
1: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ सामने।
2: जी।
1: कान खोल कर सुन लो तुम सब। यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?
3: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
4: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
5: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह

0: मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
1: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
2: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
1: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
2: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
1: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
2: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
2: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
1: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधुओं, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है, तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?

0: साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जीतेश जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो जीतेश जी, प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षण के लिए गिजू भाई द्वारा बताई गई पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो हमें और हमारे श्रोताओं को बताइए कि वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं।
1: देखिए, वैसे उनकी तो बहुत सारी पद्धतियां हैं
0: जी,
1: लेकिन कुछ खास हैं जिन पे मैंने काम किया है और मैं काम कर रहा हूँ। उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है
0: जी। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है
1: जी? और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
0: युगल और सहभागिता पद्धति
1: जी। इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
0: जी,
1: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है
1: जी। इसके अलावा एक पद्धति और है।
0: हाँ हाँ, बताइए।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति
1: जी। इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
0: अच्छा।
1: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
0: जी,
1: वो बहुत ही शानदार है।
0: अच्छा
1: जी।
0: तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
0: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
0: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
0: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय

0: और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप समाप्त कर रहे थे NCERT का तैयार करता तालीमी प्रोग्राम उमंग। हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

जी दोस्तों, ये था सदमा फिल्म का नगमा। गुलजार के बोल थे, इल्लैया राजा की मौसीकी थी, ये सुदास की आवाज थी। और अब आपको सुनवाते हैं मासूम फिल्म से एक बार फिर से गुलजार के बोल। आर डी बर्मन की मौसीकी है और आवाज आरती मुखर्जी की।

जी दोस्तों, ये था मासूम फिल्म का नगमा। गुलजार के बोल थे, आर डी बर्मन की मौसीकी थी और आवाज़ आरती मुखर्जी की थी। हमारी आवाज़ आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू खबरें और ठीक 2 बजे मिड डे न्यूज़ रिले करेंगे। जरा सा इंतजार कीजिए।

दोस्तों ये है आनंद बख्शे के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में। आवाज इस नगमे को दी है शैलेंद्र सिंह ने और फिल्म है जॉन जॉनी जनार्दन।

जी ये था सागर फिल्म का नगमा। जावेद अख्तर के बोल थे, आरजी बर्मन की मौसीकी थी और आवाजें थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। ये छ आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत 68.8 मीटर ते एफएम 73.5 मेगाहर्ट्ज़ सनपेट समिन वैल्यू सूफियाना मौसीकी बोजो। फनकार छ शेख अब्दुल अजीज दीन सती यमन बुजदी मकामी आशीरान।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 208.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। पेश है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जी फौज भाइयों, जय हिंद, आदाब। प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आइए प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है, अनुराधा और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है मेरी जंग।

ये था साधना सरगम और सुरेश वाड़कर का गाया हुआ नगमा। कल्याण जी आनंद जी के मौसीके थे, अनजान इंदीवर के बोल थे। फिल्म का नाम था करिश्मा कुदरत का। अगली पेशकश है फिल्म दिलवाला से। इंदीवर के बोल है, पप्पी लहरी ने इसकी मौसीकी दी है और आवाज़ें हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की।

वाजवाइयो, ये थे गुलजार के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसिकी में। शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें थी। फिल्म का नाम था गुलामी। और अब आपको सुनवाते हैं मुद्दत फिल्म से इंदिवर के बोल। इसकी मौसिकी तैयार की है मौसिकार बप्पी लहरी ने, आवाज़ें दी है आशा भोसले और मोहम्मद अजीज़ ने।

फौज भाइयों, ये था मुद्दत फिल्म का नगमा। इंदीवर के बोल थे पप्पी लहरी की मौसीकी थी और इस नगमे को गाया था आशा भोसले और मोहम्मद अजीज ने। फौज भाइयों, फिल्म नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं और आप हमें समाप्त कर सकते हैं DTH और ऑल इंडिया रेडियो की मोबाइल ऐप पर।

0: फौजी भाइयों, ये गीत आपने सुना मजलूम फिल्म से। एसएच बिहारी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी थी, आवाजें थी सुरेश वाड़कर और कविता कृष्णमूर्ति की। फौजी भाइयों, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: फौज भाइयों, ब्रेक के बाद आपका प्रोग्राम में एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम की अगली सौगात। ये है अमृत फिल्म से आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी है और ये नगमा गाया है मनहर और अनुराधा पौडवाल ने।

0: वाजुभाइयों, ये था प्रोग्राम का आखिरी नगमा और इसे हमने लिया था फिल्म डकैत से। आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की मौसीकी थी और आवाजें थी सुरेश वाडकर और आशा भोसले की। अब हम आज इस प्रोग्राम से इजाजत चाहते हैं, आपसे फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हमारे यहाँ से उर्दू खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा।
1: सामिन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों के साथ मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस, इमरजेंसी के मुतासरीन को खराज अकीदत। वजीर आला ने की एक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की 27वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत। आशुराए मुहर्रम कल, तैयारियों और इंतजाम को हतमी शक्ल। और जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार जमानती आजीविका मिशन ग्रामीण होगा नाफिज। और अब पेश खबरों की तफसील। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन इस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था, क्योंकि उस वक्त की वजीर अजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। उसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल अख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफ़ुज़ात मुअत्तल कर दिए गए थे। शहरियों को उनके हकूक के खिलाफ वर्जी के लिए अदालती चाराजोई करने का हक से महरूम कर दिया गया था। अखबारों पर सेंसरशिप नाफिज कर दी गई थी। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन, वजीर अजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी अफराद को खराज अकीदत पेश किया है जो इमरजेंसी के दौरान जमहूरी इकदार के दिफा में साबित कदम रहे। वजीर अजम ने इमरजेंसी के मुतासरीन को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि इमरजेंसी आईन पर एक बराह रास्त हमला था। मोदी ने कहा कि आईन 140 करोड़ भारतीयों की उमंगों, हकूक और फराइज को बयान करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क इंसाफ, आजादी, बराबरी और भाईचारे के उसूलों के तहफ्फुज़ की खातिर मुसलसल अहदबस्ता है। वजीर अजम ने संविधान हत्या दिवस के मौके पर साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी की तहरीर करदा एक नज्म के कुछ अशार भी पढ़े।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के श्री आनंदेश्वर भैरव नाथ जी अस्थापन माइसुम श्रीनगर में शिव आचार्य अभिनव गुप्त जयंती और निर्जला एकादशी के मौके पर रुद्र अभिषेक तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने वहां आए हुए श्रद्धालुओं के साथ मुलाकात करके उनके तई नई ख्वाहिशात का इजहार किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा आईजीपी कश्मीर वी के बिरदी, आईजीपी सीआईडी तेजेंद्र सिंह और सिविल पुलिस इंतजामिया के सीनियर अहदेदार भी थे।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आईदा पारी प्रोग्राम कहन का मैं तुस्ता मेजबान शब्बीर अहमद शमस तुस्ती खिदमत बिच हाजरा और संसारियों को अदब ताजीम नाल अस्सलाम अलैकुम अर्ज करदा और उम्मीद है जी तुस सारे खैर खरीद नाल होसो। सामीन इंसान दुनिया दे निज़ाम दा एक ओएस है जिस नाल दुनिया दी रौनक है। इसी वास्ते इंसान को अदलो इंसाफ की जिम्मेदारी दिती गई है। मगर यजीद जे लोग जिन्हें सुन दुनिया बिच हक के बदले ना इंसाफी त जुल्म को बाधा दिता ए मुहर्रम 61 हिजरी का वाक है अलं जिया कल का सानिया लगता है। खास करका 9 मुहर्रम का उस जुल्म जिस बिच दाना पानी बंद करका शिमर लाइन जे जालम जंग त आमादा हो गई दिया से। और नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने मासूम बच्चों समेत भुखे त त्रियाया से। तसामीन अज वीरवार है ता असों को याद रहिंदा हमेशा जी अज तुस्ते मनपसंद गीत जड़े पेश कीते गए। तो आओ सुनदे हैं अब्दुल रशीद कुरैशी की आवाज़ बिच एक गीत।

0: जी सामीन, तमने नगमो सुनियो। सामीन, रवायती ज़रात हमारी सकाफत, तहजीब और दही जिंदगी को अहम हिस्सा है। यह हमारा बुजुर्गों का इल्म, तजुर्बा और कुदरत ना मोहब्बत की अक्कासी करे। अगर रवायती जरिए तरीका ना जदीद साइंसी टेक्नोलॉजी के ना मिलायो जाए तो पायदार ज़रात ना फरोग दितो जा सके और किसाना की जिंदगी बेहतर बनाई जा सके। आज हमारा प्रोग्राम में हम तमना एक इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं जोड़ा कि इसे रवायती ज़रात पर मबनी है। हमारा एक बुजुर्ग किसान जोड़ा बहुत सालों से कई दहाइयों से रवायती ज़रात करता आया है, उन्होंने ना रिकॉर्ड की होगी इंटरव्यू हम तारे तक पहुँचाऊँगा। हमारा आज का मेहमान है हाजी अलादीन खारी साहब और उन्होंने गल की है मोहम्मद यूनुस कालूखेल साहब और
1: मेरा सामने तशरीफ फरमा है हाजी अलादीन खारी साहब। हाजी साहब अस्सलामु अलैकुम।
2: वालेकुम सलाम जनाब।
1: हाजी साहब तम बुजुर्ग भी हैं, एक तगड़ा जिम्मेदार भी तम रिया भी हैं, आज भी माशाल्लाह जिम्मेदारी के नाल थारी वापस की और किराए में लगा करे में लगा। सबसे पहला तम थोड़ा अपना बचपन का अहवाल दसेंगा, तम किस इलाका कर रहे नाला है, इब्तदाई तालीम और तरबियत जुड़ी है वह किस तरीके नाल हुई, तो उसके बाद हम अपना स्टाफ पे जो जिम्मेदारी इसकी तरफ आवा।
2: जनाब अली, हम इलाका छतरगुल बाला तहसील कंगन के बिजरे नाला
1: जी।
2: मारो रिकॉर्ड यू आवे कि 47 के बीच जन्म होयो,
1: ठीक,
2: इसना डेट ऑफ बर्थ की हो जाए। तो उसके बाद जब हम थोड़ा बचपन में था तो उस वक्त मजहबी तालीम शुरू की
1: जी,
2: मुकामी मौलवी साहबों को आते तो जिसके अंदर कुरान पाक का पहला सुपारा भी तालीम शुरू करी
1: जी।
2: तो उसने बाद मौलवी सैद अमीर उस्ताद चक छतरगुल मरण आला,
1: ठीक,
2: तो उनते हासिल की कुछ। उसने बाद मौलवी जमालद्दीन हाजी साहब इमाम हाई रियायत का
1: जी
2: छतरगुल पायम में नमाज जुम्मा पढ़ावे था और बच्चन तालीम भी दें था, उन को लाते कुरान पाक को कुछ सिपारा हासिल किया,
1: ठीक।
2: उसके बाद फिर स्कूल की तरफ रजू कियो।
1: उस वक्त थारा इस इलाका के बीच स्कूल में था?
2: हाँ जनाब, स्कूल नहीं था, इसके बीच कंगन के बीच स्कूल था,
1: ठीक,
2: स्कूल एक ही था कंगन के बीच और इतनी बस्ती भी नहीं बैठी, दुकान को दो त्रै में था खतरियाँ का,
1: ठीक।
2: तो उसने बाद फिर इस इलाका में मौलवी फकीर शाह उस्ताद जरा था वे श्रीनगर गया, एजुकेशन दफ्तर जो तो वो श्रीनगर का भी तो।
1: अच्छा,
2: तो उन्होंने दरख्वास्त पेश करी कि हमने स्कूल चाहिए छतरगुल बाला में,
1: ठीक।
2: तो मुख्तार उस वक्त टीचरों ने जड़ी तनख्वाह थी बहुत कम थी, कोई 60 रुपये टीचर की तनख्वाह थी
1: जी,
2: बाकी टीचरों ने इनकार किया। तो एक टीचर मोहम्मद इब्राहिम बम्बा था वे जात का,
1: अच्छा,
2: काशवान सलामबाद में रहे था
1: जी।
2: तो उन्होंने जिम्मो दियो कि हूँ आ जाऊँगो लेकिन मैंने मकई की रोटी वह
1: जी
2: और दूध वगैरह वह तो हूँ ड्यूटी दियूँगा दूध और मैंने कमरा होना चाहिए,
1: ठीक।
2: फिर मौलवी फकीर शाह उस्ताद ने कमरों भी दितो, तो उसके अंदर 3 साल उर्दू तालीम हासिल की
1: जी,
2: तो इंग्लिश उस वक्त 6 छठी जमात ऊपर बैठो,
1: ठीक।
2: तो उसके बाद फिर आहिस्ता घर की मजबूरियों की वजह से स्कूल भी छोड़ना पड़े
1: जी,
2: तो फिर इतू जा गए कशनम्बल उडर गए बीच मौलवी मीरा मद उस्ताद में था मीलू में तालीम हासिल कर गया था लाहौर थे उस वक्त
1: जी,
2: तो उन्होंने पास तालीम हासिल की, फिर में कुरान पाक पूरो
1: उस वक्त यानी थारी बड़ी खासी उम्र थी 3 साल की थी, तो यू फिर दोबारा जाकर पढ़ लो कारण की इजाजत, फिर डेरा का मसला या कई लोग शर्म भी जाए ना कि नहीं होना, तो किस तरह या शौक या

0: किस तरह जो
1: ये शोक कुदरती मिना आ गई कि किताबों के अंदर आवा कि हर किस्म दा इल्म फरीजा, हर एक कसब जो है सीखना फर्ज है, लेकिन सबसे उला जो है वो दीनी तालीम सीखनी वो बेहतर है
0: जी।
1: तो फिर मेरे ख्याल हो गया, फिर मैं फिर किताबों दर तवज्जो हो गयो। कुछ अरसों रहे मौलवी के पास, उसके बाद फिर वापस आ गया किताबों की तरफ तवज्जो की हो
0: जी।
1: और किताब मैंने उर्दू तालीम भी कुछ हासिल की थी, उर्दू तालीम जड़ी किताबों के अंदर
0: जी
1: वाह में शुरू की
0: जी।
1: और इंशाअल्लाह अल्लाह का फजल का नाल इस वक्त काफी किताब है मेरे को।
0: यानी तब जड़ी ये मज़ भी तालीम फिर चिर की उम्र में हासिल की
1: जी जी,
0: के इल्मों के फायदों मिले इंसान ना, फिर तब हम आज ना भी बरादरी के बीच तब ना इज्जत के नाल निगाह नाल देखे
1: इल्म को, जो चीज वाया के इल्म ते इंसान ना पतो लगे
0: जी
1: कि ये दीन क्या चीज है और दुनिया क्या चीज है, अदब और एहतराम की चीज है, तो जहालत क्या चीज है। इलम के नाल इस चीज को इंसान ना पतो लगे कि अल्लाह ताला ने के फरमायो और अल्लाह का नबी ने के फरमायो, इस वास्ते किताबों के अंदर आवे वाती उल्लाहु वाती उर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और अल्लाह का रसूल की। हर मजहब का लोग अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन अपना अपना हिसाब गना सब जरा बिठा उन्नी तालीम अपनी अपनी हासिल की। इलम जरूरी है सीखनो हर इंसान के वास्ते, क्योंकि इलम तो दीन और दुनिया दो ही चीज चलानी आसान हो जाए।
0: आजी अलादीन साहब यो थारो तालीमी सिलसिलो थो
1: जी जी,
0: तो उस ते बाद खासो आसो तम समाजी काम भी करता रिया
1: जी। बिल्कुल
0: जी,
1: इसके बीच सियासी काम भी कियो, हालांकि सियासी वर्कर भी रहे हूं ते कोई 18 साल
0: ठीक,
1: उसके बाद
0: लोगों की ग्राई लोगों की
1: खिदमत की
0: जी,
1: लोगों का काम किया। उसके बाद 2010 तक मैं नौकरी की
0: जी,
1: फिर वापस मुड़ गए अपनी जिम्मेदारी वगैरह करने लग गयो।
0: जिम्मेदारी तो पहला भी करे था,
1: पहला भी करा
0: था। कितनी जमीन थारे को?
1: मैं काफी है मारे को, अल्लाह का फजल है, उतु भी तजुर्बो हासिल कियो
0: जी,
1: केड़ी जमीन ना केड़ो बीज होना चाहिए
0: जी। हम असल में थारा ते तफसील जो जानना चाहवा, क्योंकि बुनियादी तौर पर मारी बरादरी का ज्यादातर लोग है जब वे माल पारूसा में तैंदा लेंदा ते वे इसी जिम्मेदारी के नाल वाबस्ता है।
1: बिल्कुल,
0: हालांकि भी पहले जी लोगों पर जमीन तो रही नहीं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आना भी है,
1: है।
0: तब दसेगा कि थारो एक अच्छा खासो तजुर्बा है,
1: बिल्कुल,
0: जिम्मेदारी किस तरीके नाल की जानी चाहिए, यानी पाल दी थी शुरू कर लिया तो जिस तरह की कटी चुने था पहला
1: जमाना, जमीन की पहली जड़ी ये मारी खुशक जमीन है
0: ठीक
1: देहातों की, इनके अंदर पहला इनके अंदर पत्थर में छोटा छोटा बीज जमा कर गए, उनकी दीवार बढ़ानी पोए, फिर उस जमीन के अंदर गो वगैरह सटनो है, खाद जड़ी सटें इसके बदले हम लोग गो सटा मांगो, जिसको नहीं तो वो खाद भी इस्तेमाल करे, लेकिन खाद का असरात जरा वे और में
0: ठीक
1: गोआ गो असरात जरूर जो अच्छो है, खाद के नाल चाहे बस सब्जी ले लियो बाड़ियाँ गई। देखो इस वक्त बारह सब्जियों में हर किस्म की सब्जी आवे, लेकिन उसके अंदर इस्तेमाल की जाए खाद
0: जी।
1: जिस खाद के नाल हर इंसान ना प्रेशर वह यू प्रेशर बुनियाद खाद की है, लेकिन बहरहाल जिसके पास गो नहीं तो उसने खाद इस्तेमाल करनी है, अगर वो ना करा गो तो वो खेती बाड़ी होती नहीं
0: ठीक,
1: लेकिन हम लोग का मर अल्लाह फजल है, हमारा माल है गो वगैरह सटन
0: ठीक
1: अच्छी सब्जी हो जाए जिसका भी कोई बीमारी नहीं।
0: तब फरमायो कि सबसे पहले पानी में आपला जमीन पहले साफ करनी,
1: बिल्कुल साफ करनी, पत्थर साफ करना है, फिर उसके अंदर गो सटना है, फिर उसके अंदर हाल मारनी है
0: ठीक।
1: हालांकि हम इस वक्त तक हाल जी चलावा बैल

0: रखे भी दांद रखे मी
1: अच्छा
0: तो उनके नाल उस जिमीदारी ना करा आज बाकी लोग कोई ट्रैक्टर लावे बे
1: टिलर लावे
0: टिलर लावे कोई कुछ करें ना हम इस वक्त थोड़ी दांद ही लावा इस्तेमाल करा।
1: आज साहब जिम्मेदारी के पीछे सब तो अहम चीज आ जाए ना
0: जी
1: सफाई ते जमीन केड़न ते गो सटन दे बाद इंसान तो बीज को इंतखाब कर रहा
0: है। बीज मुख्तलिफ जमीन में मुख्तलिफ किस्म का बीज लगे।
1: अच्छा
0: जो बीज इस वक्त बाहरों जो सरकारी बीज आवे
1: जी
0: इसके बीज भी किस्म है।
1: हाँ।
0: एक लाल किस्म बीज है
1: ठीक
0: एक सफेद है एक सफेद मोटो सफेद है
1: जी।
0: मोटो सफेद जरी देर के नाल तैयार है जो छोटो सफेद है उसने त्रै त्रै माह के त्रै महीना के अंदर वो तैयार है जो लाल किस्म को वो भी उस चिट्टो जो सफेद मोटो है उसने पहला तैयार है लेकिन जिस जैसी जमीन है ऐसो ऐसो बीज तजुर्बा के नाल किस जमीन के अंदर केड़ो बीज कामयाब रहे।
1: बेहतर नहीं कि अगर आजकल साइंटिफिक दौर है अगर जमीन की मिट्टी को टेस्ट करा लिए तो उसी के
0: हाँ वह भी करें आजकल। अच्छा। बिल्कुल बाग के वास्ते भी टेस्ट करें
1: जी।
0: और फसल के वास्ते भी टेस्ट करें तो वो किसो भी है लेकिन बहरहाल सब बेहतर जो है तजुर्बो।
1: ठीक
0: तजुर्बो एक बड़ी चीज है। तजुर्बा के वास्ते है किस टाइम ना ये फसल बीजनो है और किस टाइम ना इसकी गोडी होनी चाहिए मौसम कैसा होना चाहिए। अगर बारिश वगैरह में गोडी करी तो वो फसल ही तबाह हो जाए।
1: अच्छा
0: ऐसे ही उसकी टाली है उसको बाकी अखराजात है
1: जी।
0: जब थोड़ी मकई थोड़ी बड़ी वह उस वक्त उसके भी सील दें।
1: अच्छा
0: दांत बात गए
1: सील करने के फायदे है
0: सील करने जो फायदा है एक तो या जमीन जी मकई वह या कणी वह दे थोड़ी पतली हो जाए।
1: अच्छा
0: और दूसरों यो है कि या हवा ना काट
1: अच्छा
0: चढ़े
1: स्टार्टर के चिफेरी
0: मिट्टी चढ़ जाए और अच्छा। जब पानी लाए इसके अंदर ताकि इस दानों को जो सियाड़ है इसको किनारा को सिरो जरी ऊंचो रहना लोड़िए कि उसके भी पानी सटे हो तो वो पानी खुद फिर जाए इन सियाड़ों के अंदर।
1: अच्छा
0: अगर एक तरफ नीमू करियो आलमा तो वो पानी एक तरफ बह जाए
1: जी।
0: इस वास्ते ये तजुर्बा है।
1: ठीक
0: जब फिर इसने थोड़ी टाली करे फिर सागला में इतना उसके बाद यो फसल तैयार हुआ
1: ठीक
0: लेकिन सब से बड़ो जड़ो हुआ तजुर्बो
1: जी।
0: अगर बीज के साथ छोड़ी तो वाह
1: अच्छा
0: वो फसल नहीं बनतो
1: जी।
0: उसके बाद रह गया जरा जिमीदार है उन्ना कपड़ को भी तजुर्बा होना लोड़िए
1: जी
0: मौसम कैसे होना लोड़िए
1: ठीक
0: इसको का खराब ना हो इसकी सिटी वगैरह दाना खराब ना हो ये तजुर्बा है
1: जी।
0: लेकिन जनाब ने उसके पीछे
1: आज साहब जिस वक्त लोग शर्त के बीच मकई काप लिया उसके बाद यो बीज अलग निखड़े हालांकि जो इसी मकई बीज हुआ है
0: इसी मकई
1: किस तरह पता चला कि
0: इसको यू पता चला है कि एक तो जड़ी सिटी दानो उसको पको हुआ
1: ठीक
0: तैयार है और अच्छो रंग है वह सिटी अलग करें
1: ठीक
0: जी कच्ची वह खाम हो कोई किसरा को बैठा उसने अलग करें
1: जी।
0: जो यू बीज है ताकि यो बिल्कुल अच्छो
1: जी
0: तरीका को होना चाहिए जो कल जमीन में सटे हो तो इसको फिर अगर इसको अंगूर भी ऐसो ही चढ़े
1: जी। अच्छा साहब किसी वक्त ऐसा भी हुआ ना कि बाद के बीच मौसम ठीक रहे
0: जी
1: आता बाद ही में लोग जिम्मेदारी कर लिए जमीन
0: बेच लिए
1: लेकिन किसी वक्त खासी सा वक्त पर बारिश लग जाए बारिश की तरह महीनों डेढ़ महीनों भी चल जाए पछे ही हो जाए उस वक्त करो बीज इस्तेमाल करो या पहले करो इस्तेमाल करो
0: पहले अंदर जमीन जी है जमींदारी ही खुशक जमींदारी जी है मकई की इसको यू चीज करना चाहिए कि इसको हाल जो चलेगा तो यू अच्छा मौसम में चलाना चाहिए कि बारिश के बगैर अगर इस गीली जमीन के अंदर आलमा

0: Tarih orta ya gunece
1: अच्छा
0: या खराब हो जाए सकड़े जाए इसमें काम सकड़े गई तो
1: ठीक
0: फिर या फसल अच्छो नहीं देती भी। जैसो मौसम खुशक हो उसमें हाल लगो फिर मकई बीजे गई तो इसमें भी मौसम अगर थोड़ो नरम भी हो तो कुछ परवाह नहीं लेकिन इसका भी जी गोडी है गोडी बिल्कुल खुशक जमीन की होनी
1: जी
0: चाहिए।
1: अच्छा
0: अगर गोडी में बारिश हुई
1: जी
0: तो यू फसल खत्म हो जाए खराब हो जाए।
1: मेरे ख्याल का मतलब है कुछ है ना बाद में पहले बीज लिए
0: जी जी
1: अगर जमीन
0: जी
1: पीछे ही होगी तो बीज तब्दील करना चाहिए।
0: अगर पीछे ही होगी फिर इसका भी दो किस्म को बीज कामयाब हो आगो
1: अच्छा
0: कि टाइम चला गया जिस वक्त
1: ठीक
0: मतलब जिस तरह 10 अप्रैल तो पहला पहला मोटी मकई जड़ी है वह ठीक रहेगी।
1: ठीक
0: 10 अप्रैल ते पीछे जड़ी मकई बीजी जाएगी
1: अच्छा
0: वह मकई ताकि याद त्रैमाही होनी चाहिए
1: जी
0: याद है वह रत्तो किस्म पीली मकई की अपना
1: ठीक
0: वह फिर कामयाब होगी
1: जी
0: क्योंकि जी मोटी चिट्टी है वह 10 अप्रैल ते पहला पहला हुआ है
1: ठीक
0: पीछे वह नहीं रहती वह कच्ची रह जाए खाम रह जाए।
1: जी
0: हाँ इसको तो जुबो हुआ है
1: ठीक
0: जी बाकी इसका बीच यू ही तजुर्बा इनको इस खुशक जमीन को पीछे रह गई जड़ी शाली जमीन टाई गई है
1: हाँ
0: वह बदला है वह उसने पानी के बीच बजरी पनीरी के थाल भी के उसने
1: जी
0: तो वह पानी के बीच लावे तो वह उसी तरह कामयाब रहे
1: जी
0: इसने खुशक जमीन के इसको यू तरीको है
1: ते अगर आजी साहब बढ़िया किस्म रड़ो लग जाए या
0: जी
1: अक्सर बकिया ना रही लग जाए इसको
0: ठीक
1: क्या इलाज है।
0: रोडो लगो तो अगर साग है तो बुलाणो है
1: ठीक
0: अगर साग नहीं तो फिर खुदा की जात ना अगर आ गई रहम दे वो बारिश दे छुड़ा
1: जी
0: फसल हो जाए।
1: जी राई वगैरह
0: हाँ
1: लाके मतलब बीमारी लग गई।
0: रही जड़ी बीमारी है उसके वास्ते इस वक्त
1: अच्छा
0: गवर्नमेंट ने दवा भी रखी हुई है
1: ठीक
0: बेबी दें बेबी करें लेकिन असल के बीच रही जड़ी है रही गो इलाज यू है कि अगर खुशक मौसम में रही लगी
1: जी
0: तो उसना लोग के रती
1: ठीक
0: रही इस मकई को जो पत्थर है यू पीलो हो जाए
1: ठीक
0: उसने के रती रही जड़ी बारिश की वजह तो रही लगा और धुंध वगैरह ते जड़ी रही लगा था उसका नाल मकई की पत्ती काली हो जाए
1: अच्छा
0: ये दो किस्म की बीमारी हो जाए।
1: जी
0: गर्भ दुआ शुआ भी करे इस्तेमाल लेकिन असल का बीच अल्लाह ताला ने इसको इलाज रखे हुई है अगर खुशक रही हुई तो उसका वास्ता है साग इस्तेमाल करें
1: जी
0: पानी
1: ठीक
0: अगर पानी अल्लाह ताला बारिश दिया तो वह अच्छी है उसके वास्ता है
1: जी
0: जड़ी या बारिश की रही काली रही है तो उसका मस्त है धूप की जरूरत है।
1: जी तो अच्छा साहब अगर आप यूरोपीय जो कंट्री है तो यूरोपीय ममालिक है उधर
0: जी
1: देखा तो वो तो मकई की काश्त बहुत ज्यादा है। एक
0: जी
1: एक टांडा के नाल वो तो 5 5 6 6 सात सात सीटा वे
0: जी
1: हालांकि भी टेक्नोलॉजी को सही इस्तेमाल करें
0: जी
1: हाइब्रिड किस्म का जो बीज आजकल भी एक भी है
0: बिल्कुल
1: तो और
0: बिल्कुल
1: को इस्तेमाल करें क्या वह टेक्नोलॉजी वो बीज वह चीज़ आप अगर अपनी जमीन में इस्तेमाल करा आप ज्यादा फायदा नहीं चाह सकता।
0: बिल्कुल फायदों क्यों नहीं जा सकता लेकिन जमीन की तासीर उसी होनी चाहिए
1: ठीक
0: वो वह मकई जड़ी है वह खुशक इलाका में भी हो जाए
1: जी
0: जी या कश्मीर की मिट्टी है
1: ठीक
0: कश्मीर की मिट्टी जड़ी है या सराब आ रही है या सराब आ रही है इसके बीच यू फसल कामयाब रहे
1: जी
0: क्योंकि उस मुल्क में शादी की जड़ी फसल है
1: जी
0: वह बगैर पानी इत कश्मीर के बीच पूरा 6 महीना उत्तर की जमीन के बीच पानी की लोड़ी है
1: ठीक
0: लेकिन उस बार जो है उसके बीच उत्तर जरा वे खुशे कहीं और उन सग दी तो जाए
1: जमीन जमीन की
0: जमीन
1: जमीन
0: की तासी है अपनी
1: ठीक
0: अपनी
1: ठीक ठीक
0: जी
1: हमारा जो पुराना लोग था
0: जी
1: वे अक्सर जिस वक्त जमीन की देखभाल बहुत ज्यादा करे था
0: जी जी
1: हालांकि जानवर भर या जमीन वहां जाए उनकी देखभाल तो खैर करनी है राखी करनी जाती है।
0: बिल्कुल
1: इसके अलावा भी हम सुना था या देखा भी था पुराना बुजुर्ग था ना जैसा भी सुबह उठकर नमाज के बाद सोटी ले भी पूरी जमीन में एक चक्कर
0: चक्कर

0: ਤਾਂ
1: चक्कर
0: घर दे
1: कस
0: अंदर दस करे था कोई टाटो का चार बात क्यों है कितने कमजोर बात हो क्यों है या का कोई हो जो का मतलब दे रहना चाहिए वो कब
1: जी
0: नो
1: जी
0: चाहिए या क्या रही है तो क्या वह चीज जड़ी आजकल भी तब देखे नौजवान वाकई नहीं
1: देखो
0: तब्दीली आ
1: उससे
0: गई।
1: ज्यादा यह गल है उसने कही निगरानी
0: ठीक
1: देखभाल
0: जी
1: देखभाल जिस जमीन के बीच ताली ना हुई घास ज्यादा हो
0: जी
1: उसकी वजह से मेरी यही लग सके
0: ठीक
1: और उसके अंदर कोई का इस किस्म को है जिस नाम का क्यारी वगैरह उसके नाल एक ऊपर कीड़ो है उसने मोरी की
0: ठीक
1: वह फसल ना भी लग सके। हाँ
0: अच्छा
1: उसी चीजों को उसो का वगैरह वह चीज काट छुड़े लोग
0: जी
1: क्योंकि ये फसल जो है इसके अंदर हवा भी चलनी चाहिए
0: ठीक
1: हूँ अगर कुदरती हवा के नाल या फसल मकई को जो यू झाड़ गयो
0: जी
1: फिर यू कामयाब नहीं रहते मुंडू जमीन के ऊपर फिर यू यानी कि खराब हो जाए ट्रक जाए
0: ठीक
1: और फसल भी दे तो नहीं
0: जी
1: जो झाड़ गयो फसल या इसमें तजुर्बो है कि जमीन के अंदर मकई जड़ी है वह कम से कम टांडा आते टांडा ना 4 फुट को फर्क होने लगी।
0: अच्छा खासी बड़ी गेप होनी चाहिए
1: हाँ
0: उनकी।
1: नहीं चार उस तरह नहीं चार
0: अच्छा
1: 4 फुट इस तरह है कि इस टांडा का इस तरफ भी 1 फुट पर टांडा होने लगी
0: अच्छा
1: उस तरफ भी 1 फुट पर होने
0: अच्छा
1: उस
0: जी
1: तरफ भी
0: ठीक
1: ये चौरस
0: अच्छा जी। ठीक
1: क्यों ही पासे इस ना
0: इसका ना क्या फायदा मिले।
1: फुट
0: अच्छा
1: फुट होने लोड़ी जिसके नाल यू टांडो कामयाब रहे
0: अच्छा
1: और इसके नाल अगर सील या गोडी वगैरह की मिट्टी भी चाड़ेगा
0: जी
1: टांडा के नाल
0: ठीक
1: तो उस फुट के बीचों या मिट्टी इस टांडा की तरफ
0: जी
1: लेमेंगा तो टांडो ताकत पकड़े
0: ठीक यानी जितनी ज्यादा इंसान मेहनत कराए को
1: मेहनत का
0: जितना
1: नाम
0: जिम्मेदारी सीखे को
1: मेहनत का
0: तो उतना ज्यादा
1: नाम
0: फायदा हासिल कर सके।
1: तजुर्बा
0: जी
1: ये मेहनत अगर उन बीज छुड़ी तो बीचे का भी है तो बीचे क्यारी तो बीचे सब कुछ है डंड बूटा भी है वो फसल कामयाब नहीं रहता
0: ठीक
1: इसको ये तजुर्बा जरा
0: जी तो आज साहब मैं तब पहले जिक्र कर रहा था बाड़ियों को कि आजकल
1: बिल्कुल
0: जितना भी साग आए
1: देखो
0: चाहे
1: जरा
0: एक केमिकल में उनमें चाहे खाद में दवाई
1: जरा
0: में ज्यादा में
1: जरा इत साग है बाड़ी
0: जी
1: है देहात के अंदर
0: ठीक
1: इत बांध का वक्त पहला सौंत जो आवे पहला चैत फगन
0: जी
1: चैत उस वक्त इन बाड़ियों के अंदर कड़म वगैरह कोई भी सब्जी बीजनी चाहिए लेकिन इत एक गल है कि हवा सर्द है कभी कभार इस बांध का टाइम जब बारिश हुई तो ना बर्फ भी बढ़ जाए दातम
0: जी
1: जिसना हमेश रेडियो पर इस पर कहेंगे कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो गई
0: जी
1: वो पहाड़ों पर जी बर्फबारी हुई या इन जमीनों में देहात की में बारिश हुई उसकी वजह तो यू बाड़ी को जो साग है तो यू खराब हो जाए
0: ठीक
1: इसके वास्ते अगर करें तो इसके वास्ते ऐसा करना चाहिए कि ग्रीन हाउस ले आओ
0: जी
1: ग्रीन हाउस एक लॉग गई पाइपों को बने
0: पूरा
1: हुए
0: तरपाल
1: बाहर
0: में
1: उसके ऊपर तरपाल है
0: जी
1: वो नाले दें
0: ठीक
1: जैसा कि मैं भी यूज अपनी जमीन का भी ग्रीन हाउस लाए हुए है
0: ठीक
1: तो अगर हम फगड़ में इसमें सब्जी बीजेंगा
0: जी
1: तो बहुत अच्छी बन जाए उसका बूटी वगैरह काट के फिर जब बसाख आयो और हम पर हम ला
0: फैला
1: सका
0: सके
1: फैला सका तो सिर्फ बाड़ी में बीजिए ऊपरों बर्फ की छटी आई या बर्फ पे जाए वो नाकाम हो जाए
0: जी
1: इस वास्ते इसको तजुर्बो यू है
0: तो ग्रीन हाउस सियाल हो भी रहे हैं सियाल भी सब्जी का हो
1: बिल्कुल
0: अच्छा
1: स्याल हम खाता रहे हैं स्याल सब्जी
0: अच्छा
1: बर्फ में
0: ठीक
1: और इस ग्रीन हाउस के अंदर जो ऊपर तरपाल है इसके अंदर स्याल भी इतनी गर्मी में
0: जी
1: जितनी बढ़िया मौका
0: जी यानी इंसान अगर कमाना चाहे मेहनत करना चाहे
1: बिल्कुल
0: फायदा हासिल करना चाहे
1: मेहनत और तजुर्बो और ये चीज करनी पड़े अगर
0: ठीक
1: जिम्मेदारी कोई करे
0: जी
1: अगर बानी करता तो फिर सट छुड़िया दाना पावे हो या ना हो वह एक दूजी गल है मेहनत के नाल मजदूरी है
0: कि इस थारी में ये बाड़ी है तो ये भी बड़ी सोनी लगे लगी दाल ग्रीन हाउस भी है तो के सब्जी इस्तेमाल हासिल करें।
1: इसके अंदर कड़म भी बीजा

0: इसके अंदर मर्च भी भीजा, इसके अंदर टमाटर भी भीजा
1: जी,
0: इसके अंदर डोबरी के
1: ठीक
0: यानी के वे
1: आले
0: आले कश्मीरी आल के
1: जी
0: वे भी बीजा
1: जी,
0: जो सब्जी भी बीजी
1: जी
0: ताचीर है
1: जी बिल्कुल। आज अक्सर आप देखा ना लोग ज्यादा परेशान सब्जी के बजाते हुए
0: बिल्कुल
1: दुकान पर चले थे जड़ी दुकानदार कीमत दस है इंसान का परसे आ जाए
0: अनाज से बढ़ गए सब्जी की ज्यादा रकम लगा
1: ठीक
0: और वह भी आना हम बुना थे
1: जी
0: जिसके नाल
1: एक तो ताजी भी होती
0: जिसके नाल हमने प्रेशर हुआ है
1: ठीक
0: जिसके नाल हमने और
1: बीमारियों
0: को नमूदार में तो इस वास्ते अगर अपनी बाड़ी की कोशिश करें
1: ठीक
0: तो बहुत अच्छा है क्योंकि यह सब्जी जड़ी है
1: अच्छा साफ सुथरी
0: या साफ सुथरी है और या पा वगैरह गुआ गप
1: जी
0: बन सके खाद साहब इसके भी नहीं
1: और अजी साहब जब मर्जी आए थे बस मर्जी की सब्जी
0: आज जो जिस वक्त जड़ी सब्जी
1: अच्छा
0: जरूर रोटी हुई तो वह इस्तेमाल कर लिया
1: ठीक तो इसके बाद शायद अजी साहब रहे कि दाल लगो सिस्टम क्योंकि दाल भी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी है
0: दाल मुख्तलिफ बे मोटी की दाल तो खुली मकई के नाल बीजें
1: अच्छा
0: वह भी हो जाए लेकिन और भी जड़ी किस्म दाल बीजेंगा तो वो हो जाएगी
1: बूटे की दाल को जो वो भी यो इस सीजन है मकई बीज के दाल
0: हाँ मकई का ना उस इस ग्रीन हाउस की जो बाड़ी की जरूरत नहीं
1: ठीक
0: खुली हो सके मकई में
1: जी
0: जी
1: तो अजी साहब चलता चलता बारह जिम्मेदार ना बारह लोग ना के कहना चाहेगा तब कि जिस तरीके ना तब जिंदगी में मेहनत करें या पहला वक्त का बारह बुजुर्ग करे था अगर उसी तरह आज भी मेहनत करें तो अच्छा फल हासिल कर सके
0: बिल्कुल
1: जी
0: इस न कहें अपनी मदद आप करनी
1: ठीक
0: पीछे रह गयो आज लोग के पास सरमाए हो लोग के पास पैसों है खरीद गए लेवें लेकिन उस ना इसने बड़ो फर्क है
1: जी
0: खरीदिया भी सब्जी ना तो इसने बड़ो फर्क है
1: ठीक मकई में चाहे सब्जी में दाल में
0: बिल्कुल इसके अंदर भी चीज नहीं देखो खाद है दो त्रै किस्म
1: जी
0: यह खाद इस जमीन ना साड़ गए तो स्वागा जैसी बना छोड़े
1: ठीक
0: और अपनी तासीर करे जिसके नाल यो फसल या चीज या सब्जी जल्दी बड़ी वह लेकिन अगर खाद ना सटी तो फिर यह नाकाम रहे
1: जी
0: लेकिन असरात जरा खाद का तो फिर
1: आगे जाके खराब निकले
0: खराब निकले इस वास्ते इस वक्त गवर्नमेंट ने भी जो तजुर्बा रखे हो ये बनावे को वे आट जा जिनके बीच गो सट गए
1: जी
0: ओखर सट गए वगैरह सट गए
1: घरेलू खाद
0: उसकी घरेलू खाद बनावे
1: जी ठीक
0: वो इस वास्ते बनावे के वह बिला जवाल है
1: अच्छा
0: इस वास्ते वह बनावे गवर्नमेंट दे अभी
1: जी
0: शर जा
1: ठीक
0: तो उस ना दे इस ना जो फर्क है
1: जी
0: वो का वो गो सड़ गए उसकी भी एक किस्म की खाद बने
1: जी अगर इंसान फायदा लेना चाहे तो वो हर तरीका ना ले
0: हर तरीका का ना तजुर्बा का ना
1: ठीक
0: तो हूँ इतनी मेहनत भी लोग नहीं करते
1: जी
0: वजह यह है कि वे किसी शायर नहीं क्यों कर कमाई नेक बंदे मुफ्त खाना छोड़ दे
1: जी
0: हम आज मुफ्त खाना अगर पीछे होया भी
1: अच्छा थोड़ा आलसी बन गया है
0: बिल्कुल
1: जी
0: हम कहूँ तू मुफ्त चावल भी आ जाएगा उतू जा चीज़ है उतू मुफ्त रुपया भी आ जाएगा सब्जी भी ले आवांगा तो यह चीज़ हमना आज ज्यादा है
1: जी तब लगा कि आप पहले की तरह मेहनत
0: अगर वह मेहनत करा तो एक तो हलाल की मेहनत है
1: ठीक
0: दूसरी किसी का गए हाथ फैलाने से बेहतर है लेकिन ज्यादातर हम इस मेहनत पर कासर
1: ठीक
0: मेहनत करता नहीं
1: जी
0: वजह ही है
1: जी हाजी अला देर खारी साहब तब ने अपना कीमती वक्त दी तो तब ने अपनी जिंदगी का कुछ हालात अहवाल भी दसिया और जिम्मेदारी का हवाले नाल ढेर सारी गल की और एक थारो पैगाम थो कि मेहनत करो ते तब हाँ कलाल की चीज़ भी खाएगा साफ सुथरी चीज़ खाएगा ताज़ी चीज़ खाएगा तो यो बहुत अच्छा पैगाम भी है हाजी अला देर साहब थारो बहुत बहुत शुक्रिया
2: सामीन तब ने इंटरव्यू सुनो।

महाराज का मेहमान था हाजी अलादीन खारी साहब, उन्होंने गल की मोहम्मद यूनस कालूखेल साहब और जी। सामीन इसके नाल आज का प्रोग्राम को वक्त मुक्कण आयो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेज़बान शबीर अहमद पसवाल ना दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। 5:50 होने वाले हैं, आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों को बुलेटिन लेके हम हाजिर। पहले अहम खबरों की सुर्खी। मुल्क भर में आज मनाए जा रहे संविधान हत्या दिवस, इमरजेंसी का मुतासरीन खराज इकीदत अदा। पुलवामा का अवंतीपुरा में अपनी नवीयत को पहलो मरकजी इम्तियाज मंजूर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर अजम और खेलकूद का मरकजी वजीर को कियो शुक्रिया अदा। सरकार जम्मू कश्मीर की जीलाना तहफुज देन वस्ते पुर अजम, वजीर आला ने की लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की 27वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत तय आशूरा मोहर्रम पालक। उन पेश है खबरों की तफसील। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहे हुआ, यो त्याड़ो उस वक्त की याद दुआवा जद भारत का आई न 5 जून 1975 ना पामाल की योग्य थो। यो आर उस शख्स ना खराज अकीदत पेश करन को त्याड़ो भी है जिनने इमरजेंसी की ज्यादतियां की वजह तो मुसीबत झेली थी। इस इमरजेंसी को ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल की वजह तो की योग्य थो, क्योंकि उस वक्त की वजीर अजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहा था। इसका नतीजा में अमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपना हाथ में ले लिया था और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज को ज्यादा कंट्रोल हो गया था। इसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफुजात मुअत्तल कर दिया गया था। शहरियाना उनका हुकूक की खिलाफ वर्जी वस्ते अदालत को रुख करने का हक तो महरूम रखे गया था। अखबारों पर पाबंदी भी लाई गई थी। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन, वजीर अजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सारा बंदाना खराज इकीदत पेश किया जेड़ा इमरजेंसी के दौरान जमहूरी इकदार का दिफा में पेश रहा। वजीर अजम ने इमरजेंसी का मुतासरीन खराज इकीदत पेश करता हुआ इमरजेंसी आइन पर एक बराह रास्त हमलों तो मोदी ने क्यों कि आइन 140 करोड़ भारतीय की उमंगा हकूक और फराइज न बयान करे। उनने जोर दे के क्यों कि मुल्क इंसाफ आजादी बराबरी और भाईचारा का असूलों का तहफुज वस्ते खड़ी है। वजीर अजम ने संविधान हत्या दिवस का मौका पर साबिक वजीर अजम अटल बिहारी वाजपेयी की तहरीर की गई एक नज़म का कुछ अशार भी पढ़िया।
2: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा जिला का अवंतीपुरा में अपना नवियत का पहला कौमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस न मंजूरी देने वास्ते वजीर अजम नरेंद्र मोदी और खेलकूद का वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया को शुक्रिया अदा किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौमी सतह को यह मरकज इम्तियाज मुख्तलिफ किस्म का खेल जुमरा में हजारा नौजवानों की सलाहित साजी के अलावा मुख्तलिफ एथलेटिक मुकाबला की एक आला सतह की बनेगी। इस मरकज में एथलेटिक ट्रैक्स और इंडोर कोर्ट्स के अलावा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, निशानाबाजी, तैराकी और टाइकवांडो जैसा खेल खेलने की सहूलियत होगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि जदीद तरीन सहूलियात लेस इस मरकज में आलमी मयार का बुनियादी ढांचा और कोचिंग की सहूलियात होंगी जिनकी बदौलत अगली पीढ़ी का ओलंपिक और बैन अल-अक़वामी चैंपियंस न तरबियत फराहम की जा सके। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में जीलों का तहफुज वस्ते देरपा इदारा जाती तालमेल साइनसी मनसूबाबंदी और वक्त पर अमल आवरी पर जोर देता हुआ मुतलका महकमा और अथार्टीज ने हिदायत दी है कि वे कानून जवाबित और माहौलियाती मयारात के नाल जेर तामीर प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में तेजी आने। श्रीनगर में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथार्टी की 27वीं बोर्ड की मीटिंग की सदारत करता हुआ वजीर आला ने डल, नगीन, खुशालसर और गिलसर जैसी जील जारी तफावजाती कामों के अलावा इन नाल जुड़िया बुनियादी ढांचा और इंतजाम

0: محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سری نگر میں کشمیر یونیورسٹی اور نیشنل ای گورننس ڈویژن کا اشتراک نال ڈیٹا کا سائبر تحفظ تو متعلق ایک مشاورتی ورکشاپ کو انعقاد کیا، جس میں سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا کا تحفظ، سرکاری ڈیجیٹل نظام کی سلامتی اور سائبر خطرات نال نمٹن کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو بلٹن مکیو مارو خبروں کو اگلو بلٹن شام 6:05 پر آکاشوانی تو کشمیری میں نظر آئے گو۔ دیوں اجازت، اللہ حافظ۔
1: نمسکار، آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں لولین نگم۔ आज संविधान हत्या दिवस है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता को साझा करते हुए उनकी संवेदनाओं भरी इन पंक्तियों को सुनने का आग्रह किया।
2: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
3: सीख चौ में सिमटा जब किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंताकयाला और बश्यम रामकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के ताई तागक, ओडिशा से भाजपा के देवशीष सामंतराय, तमिलनाडु से कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती और गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। भारत ने आज हरियाणा के गुरुग्राम में 2026 के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। विद्युत मंत्रालय ने बताया कि इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के ऊर्जा मंत्रियों, उपमंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में प्रमुख वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है, 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है, विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने वेनेजुएला सरकार और वहां के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में तन्वी शर्मा, देविका सिहाग और किदाम्बी श्रीकांत सहित अन्य भारतीय खिलाड़ियों ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने आज आसान जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने भारत के ही डी सनीत को पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: इस आकाशवाणी ऑन श्रीनगर स्टेशन मीडियम यूज हतार 8.8 मीटर थे एफएम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ सिंपेट 6:05 सब दे वो प्रोग्राम गबी भाई निखत रहा।

فسوف يعلمون فإذا ركبوا في الأرض

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

समीन आपको याद दिला दे कि आज रात 9:30 पर आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे बुजुर्ग नींद खतरा। प्रोग्राम के मेहमान हैं सूफी शायर अली मोहम्मद मिस्कीन, जिनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के मेजबान और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर गुलाम रसूल आखून। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप प्रोग्राम समाप्त करेंगे शहरबीन, बस थोड़ा सा इंतज़ार।

आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम।

0: शाम के 7 बजे है।
1: प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शहरबीन के सबैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम में लिया। विमेंस डिग्री कॉलेज अनंतनाग में अमरनाथ यात्रा पर दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस आज इख्तिताम को पहुंची। डोडा में दिलदोज सड़क हादसा, 3 अफराद लुकमे अजल। कल आशूरा मुहर्रम मुकम्मल। और वजीर तालीम और सेहत सकीना इत्तू का त्राल का दौरा। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है, हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
8: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
9: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ,
10: वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। नहीं, मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
9: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
10: अच्छा भाभी,
9: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
10: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
11: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
8: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तिचु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिज कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इथी रोजान। मगर वन छ अत हाल JK सेहत ऐप, यह तुहद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आई

0: ने नौकरी देकर के उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं मानता हूं कि आज के समापन सत्र इस कॉन्फ्रेंस का अंतिम पड़ाव नहीं है, यह उन विचारों की परिणति है जिन्होंने हमें नई दृष्टि प्रदान की है और उन संवादों का उत्सव है जिन्होंने विभिन्न पृष्ठभूमि से आए लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है।
1: गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन अनंतनाग में 2000 कॉन्फ्रेंस अमरनाथ यात्रा के ताल्लुक से और इस कॉन्फ्रेंस की तकरीब में आज शमूलियत की जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज मायसूमा श्रीनगर में श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ जी महाराज स्थापन में शिवाचार्य अभिनव गुप्त जयंती और निर्जला एकादशी के सिलसिले में मुनक्किदा रुद्राभिषेक तकरीब में शिरकत की और अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की। एलजी मौसूफ ने तकरीब के दौरान अकीदतमंदों से मुलाकात की और उनके साथ तबादले ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि श्री आनंदेश्वर भैरवनाथ जी महाराज स्थापन जम्मू कश्मीर के अवामी शऊर और मजहबी रिवायत की एक अहम और काबिल एहतराम मिसाल है। सवन कल आशूराए मुहर्रम है, वो दिन जब करबला के मैदान कारजार में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम ने जामे शहादत नोश किया और रहती दुनिया तक यह मिसाल कायम की कि बातिल के आगे हक कभी सरनिगु नहीं हो सकता। सच का बोल हमेशा बाला होता है और इंसानियत के आला अकदार और उसूलों की पासदारी के लिए कोई कुर्बानी बड़ी नहीं हो सकती। आशूरे मुहर्रम के मौके पर कलवादी के मुतअद्दिद इलाकों में अरम शरीफ और जुलजनाह के जुलूस निकाले जाएंगे और हुसैनी मजालिस का एहतमाम किया जाएगा। जुलूसों के गुजर को यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई रूट्स में तब्दीली की है। इस सिलसिले में मौसूल इत्तिलात के मुताबिक बटकदल श्रीनगर से इमामबाड़ा जर्डीबल तक जुलूस का गुजर यकीनी बनाने के लिए जर्डीबल से श्रीनगर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ आने वाली गाड़ियों को फिरदौस सिनेमा, मिल स्टॉप, लाल बाजार और बटकदल में डायवर्ट किया जाएगा, जबकि करण नगर और नालामार से सोरा की तरफ आने वाली गाड़ियों को फकत अलीजान रोड से गुजरने की इजाजत होगी। वाजह रहे कि अली मस्जिद के पास साजगरी पूरा की तरफ जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी, जबकि हवल रोड की तरफ जाने वाली गाड़ियों को फिरदौस सिनेमा के पास दाएं मुड़ के साजगरी पूरा क्रॉस से अली मस्जिद तक आने की इजाजत होगी। अलावाजी कलाई अंदर से आने वाली गाड़ियों को फिरदौस सिनेमा के रास्ते जर्डीबल की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी, इसके बरक्स वो साजगरी पूरा या नौहट्टा का रास्ता इख्तियार करें। इसी तरह सौरा से आने वाली गाड़ियों को जर्डीबल की तरफ आने के दौरान नालबल से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं होगी, जबकि नालबल और नौशहरा के ट्रैफिक को जूनीमर और अंत भवन के रास्ते आगे बढ़ाया जाएगा। ये बात भी वाजे रहे कि लाल बाजार से किसी भी गाड़ी को बटकदल की तरफ आने की इजाजत नहीं होगी। मुतबादिल के तौर पर सौरा या आसपास के इलाकों में पहुंचने के लिए मलबाग का रास्ता या अंदरूनी सड़कें इख्तियार की जा सकती हैं। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आशूरा पर अपने पैगाम में कहा है कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों की शहादत तारीख आलम में एक फकीदुल मिसाल कुर्बानी है जो रहती दुनिया तक नौ इंसानी को तहरीक बख्शती रहेगी। इसी दौरान दरगाह हजरत निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह बाबा नंगरी बागत के सज्जादा नशीं मियां अल्ताफ अहमद ने यौम आशूरा पर अपने पैगाम में कहा है कि इमाम अली मकाम और उनके जानिसार साथियों की शहादत अपने दामन में दुनिया भर के मुसलमानों के लिए आला किरदार व अमल की बेमिसाल मिसालें समेटे हुए हैं। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर

0: इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
1: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
2: हाय, नमस्ते, मैं हूँ खुशी, आपकी TB साथी। पूछिए जो पूछना है।
3: TB के सिम्टम्स क्या होते हैं?
2: बताती हूँ।
3: ट्रीटमेंट कितने दिन चलता है?
2: ये भी बताती हूँ।
3: और मेडिसिंस लेना भूल जाऊँ तो?
2: रिमाइंड भी करवाती हूँ।
4: अब TB से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, सपोर्ट और केयर सब कुछ आपके स्मार्टफोन में TB मुक्त भारत ऐप के साथ। यहाँ मिलेगी TB से जुड़ी हर जानकारी, नजदीकी टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सेंटर्स की लोकेशन, ट्रीटमेंट ट्रैकिंग और मेडिसिन रिमाइंडर्स और एक्सपर्ट गाइडेंस भी 24/7 बिल्कुल फ्री और कॉन्फिडेंशियल। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए TB मुक्त भारत ऐप।
5: TB हारेगा देश जीतेगा, TB हारेगा देश जीतेगा।
2: ज्यादा जानकारी के लिए 1-800-11-6666 पर कॉल करें या अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन जन का रखे ध्यान, TB मुक्त भारत अभियान।
6: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय डिस्ट्रिक्ट ट्यूबर क्लोसेस ऑफिसर डोडा, किस्तवाड़ एंड रामबन।
7: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज, शहर भी ना, आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। डोडा में कल रात पक्की हट्टी खिलाने के मकान पर एक सड़क हादसा पेश आया। बताया जाता है कि पाडर मचेल यात्रा से लौटाने वाले यात्री इस हादसे का शिकार हुए। हादसे में 3 अफराद लुकमा अजल बन गए जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। इन सब का ताल्लुक एक ही कुंबे से था। तफसीलात के साथ डोडा से नसीर अहमद खोड़ा।
8: जिला डोडा के खिलानी इलाका में गुज़श्ता रात एक निजी गाड़ी को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 3 लोगों की मौत वाका हुई और 2 दीगर अफराद शदीद तौर से जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक एक गाड़ी जैर नंबर JK02D6037 जो कि पाडर किश्तवाड़ से जम्मू के लिए आ रही थी कि खिरेली के मकाम पर टनल के नजदीक सड़क से लड़कर तकरीबन 500 फुट से जायद नीचे एक गहरी खाई में जा गिरी और 3 अफराद की मौत मौके पर ही वाका हुई और गाड़ी में मौजूद दीगर 2 अफराद शरीर तौर से जख्मी हुए जिनको पहले GMC डोडा और बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू बेहतर इलाज मुआवजा के लिए मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि इस गाड़ी में एक ही कुंबे के 5 अफराद सवार थे जो पाडर मचेल यात्रा से वापस आकर अपने घर इथम सिदरा रवाना हुए थे और के खरनी टनल के नजदीक पक्की हट्टी में ये दिलखराश वाका पेश आया। हादसा की खबर सुनते ही महकमा हेल्थ से वाबस्ता रेड क्रॉस की टीम फौरी तौर जाए हादसा पर रवाना हुई और टीम के तर्जमान उमर अनायत खान ने शहरबीन से बात करते हुए बताया कि हादसा की खबर मिलते ही रेड क्रॉस मेडिकल अमला की टीम खिलेनी पक्की हट्टी पहुंच गई और जख्मियों को फर्स्ट एड देकर GMC डोडा रवाना कर दिया गया। उमर अनायत ने मजीद शहरबीन को बताया कि इनको जिस्म के अंदरूनी आजा में कई चोटें आई हुई थी जिसके सबब इनको GMC डोडा से इलाज मुआवजा की खातिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जम्मू मुंतकिल किया गया। जख्मियों में 13 साल आर्यन व 23 साल विशाली देवी शामिल है जो कि इस वक्त GMC जम्मू में जैर इलाज हैं, जबकि फौत हुए अफराद में जिया सिंह, वालिद मुख्तार सिंह, इसकी अहलिया बबली देवी और उनकी दुख्तर सनाक्षी शामिल है। इन तमाम का ताल्लुक इथम सिदरा हाल नगरोटा से बताया जाता है। खिताई चनाब के डोडा, बदरवा, ठाठरी, गुंदो बलेस, किश्तवाड़ व रामबन बानाल में सड़क हादसा का न थमने वाला सिलसिला जारी है और आए रोज किसी न किसी जगह से इन सड़क हादसा में कीमती जानों का जिया होना कोई नई बात नहीं। इन हादसा में नाकिस व नापायदार सड़क राबते, पुरानी और खस्ता

0: गाड़ियां ड्राइवरों की गैर जिम्मेदाराना व लापरवाही ड्राइविंग, पुरखतर पहाड़ी व खस्ता हाल सड़कों को जिम्मेदार गर्दाना जाता है। इस हादसा को भी सड़क व टनल तामीर करने वाली एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिन्होंने टनल के मुतसिल चारों तरफ सड़क पर मैकडम बिछाया है और अधूरा ही छोड़कर वहाँ डोडा जम्मू सड़क पर खड्डे ही खड्डे व दलदल पैदा किया है। ये हादसा भी इस सिलसिले की एक कड़ी है और लोगों ने इस तामीराती एजेंसी के खिलाफ काफी गम गुस्सा है।
1: डोडा से नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी का कहना है कि शुंगलीपुरा, सोगंद यारीनार, कुकरबाग, मलपुरा, खाग और बट्टीपुरा में भारी जालेबारी के बायस सेब के दरख्तों को बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि धान की पनीरी भी नुकसान ज्यादा हुई है। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया है कि नुकसान का तखमीना लगाकर मुतासरीन को मुआवजा फराहम किए जाने के फौरी इकदाम किए जाएं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियमान इंजीनियर रशीद अपने मरहूम वालिद के चहलम के मौके पर श्रीनगर पहुंचे हैं। वाजिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को उनके वालिद के चहलम में शिरकत के लिए जमानत पर रिहा किया है। इसी दौरान अवामी इत्तेहाद पार्टी ने इस बारे में दो रोजा मशावरती अमल शुरू किया है कि इंजीनियर रशीद रुकने पार्लियमान की हैसियत से अपने ओहदे पर कायम रहेंगे या फिर मुस्ताफी होंगे। याद रहे कि इंजीनियर रशीद ने अपने मरहूम वालिद की आखिरी रसूमात अदा करने के बाद ऐलान किया था कि वो रुकने पार्लियमान की हैसियत से इस्तीफा देने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो आवाम के तय अपनी खिदमात अंजाम देने से कासिर हैं। तकरीबन एक माह की बंदिश के बाद आज गुलमर्ग गंडोला सर्विस को दोबारा शुरू किया गया। इस सिलसिले में आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग पहुंचकर सर्विस को बाजाब्ता बहाल किया और कहा कि तमाम तकनीकी जांच मुकम्मल होने और माहरीन की मंजूरी के बाद ही सर्विस को बहाल किया गया है। याद रहे कि गुलमर्ग गंडोला सर्विस 25 मई को पेश आने वाले एक तकनीकी नक्स के बाद बंद कर दी गई थी। इस मौके पर लगभग 350 सयाह कई घंटों तक फजा में मौलक केबल कार्स में फंस गए थे, ताहम खासी मशक्कत के बाद सभी सयाहों को बहिफाजत बाहर निकाला गया था। आज गुलमर्ग में सहाफियों से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गंडोला सर्विस की बहाली का फैसला उस वक्त किया गया जब फ्रांसीसी इदारे पूमा ने मरम्मत और देखभाल के काम का जायजा लेने के बाद सर्विस को महफूज करार दिया। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तहकीकती रिपोर्ट्स मौसूल होने के बाद कंपनी ने तमाम मरम्मत के कामों और मेंटेनेंस के तरीकेकार का तफसीली जायजा लिया और इत्मीनान के बाद ही सर्विस की बहाली को मंजूरी दी गई। सेमिनार समाजी बहबूद, सेहत और तालीम की काबिनी वजीर सकीना इत्तो ने त्राल का दौरा किया और वहां एक अवामी दरबार मुनाकिद किया। वाजिर है कि जम्मू कश्मीर में मौजूदा अवामी हुकूमत कायम होने के बाद ये किसी वजीर का त्राल का पहला दौरा है। वजीर मौसूफा ने अवामी दरबार में लोगों की एक भारी तादाद से मुलाकात की और इसके मसाइल सुने और मसाइल के सदबाब के लिए मौके पर ही अफसरान को हिदायत दी। इसी दौरान आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आरिपल त्राल में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद भी किया गया। एक रिपोर्ट के साथ शब्बीर भट्ट।
2: नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज आरिपल त्राल में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का अहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पार्टी जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद रमजान और वजीर सेहत व तबी तालीम मिस्टर मसूद एतो ने की, जबकि इस मौके पर पार्टी के दीगर लीडरान शबद अमल मीर, सलमान अली सागर, सईद तौकीर, मोहम्मद खलील बंद और कोर्डिनेटर बराई त्राल पीरजादा मेराजुद्दीन रफीकी के अलावा वर्कर्स की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर त्राल इलाके को सयाती नक्शे पर लाने, शोबा सेहत और तालीम को फरोग देने के हवाले से आवाम ने अपनी मांग लीडरान के सामने रखी, जिस पर लीडरान ने हमदर्दाना गौर करने की यकीन दहानी कराई। मैं आपको बता दूं, वजीर बनने के बाद पहली मरतबा त्राल आने वाली वजीर सेहत व तबी तालीम सकीरा मसूद एतो ने अपने खिताब में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही वो वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के आवाम की इज्जत आबरू, तशख्स और मजमूई तरक्की के लिए हमेशा कोशा रहेगी और ये पार्टी आज भी अपने आवाम दोस्त एजेंडे पर कायम है। ताहम ये एक हकीकत है कि सभी पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही कमजोर करना चाहती है, क्योंकि ये वो जमात है जो मरकज और उसकी हलीफ जमातों के एजेंडे को यहां लागू नहीं होने दे रही है। सकीना मसूद इतू का कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जब 2014 में लोगों ने दीगर पार्टियों को एतमाद दिया था, फिर उन्होंने क्या गुल खिलाए ये किसी के सामने वाजह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पार्टियां जो वह कश्मीर में गैर यकीनी सूरतहाल के लिए जिम्मेदार है। ताहम नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम के मफादात को तरजीह दी है और शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला से लेकर आज तक ये पार्टी अवाम दोस्त एजेंडे पर कारबंद है। मौजूदा हुकूमत की हसूलियातों का जिक्र करते हुए सकीना इतू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की जैर क्यादत एनसी सरकार अवाम की फराह बहबूद के लिए हर सतह पर काम कर रही है और हुकूमत के क्याम के बाद ही शोबे सेहत, तालीम और दीगर अहम महकमजात में ठोस इकदाम किए गए हैं जिनके खाते

0: खा नताई बरामदा रहे हैं। उनका कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अवामी मंशूर पर काम कर रही है और रफ्ता रफ्ता उन तमाम वादों पर अमल दरामद किया जा रहा है जो हमने इंतखाबात से कबल अवाम के साथ किए थे। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन के मनफी प्रोपेगेंडे को एक तरफ छोड़कर हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है और वो इस हवाले से वादाबंद है। बादागाम वजीर सेहत ने मंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक की मौजूदगी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल के अंदर डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया। वादा रहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के कयाम के बाद पहली मरतबा आज त्राल में किसी वजीर का ये पहला दौरा था जिसको लेकर सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम देखने को मिले।
1: त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर जनता दल यूनाइटेड के सदर बराए जम्मू कश्मीर जीएम शाहीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एलजी इंतजामिया की तरफ से अमरनाथ जी यात्रा के लिए किए जाने वाले इंतजाम को एहसन करार दिया। इलाहाबाद उन्होंने इंतजामिया से तलकीन की कि वो कस्बों की तरफ से पेश की जाने वाली डिमांड्स पर हमदर्दाना गौर करें। और प्रोग्राम के आखिर में खबर कि आज जेकेएस के सीनियर ऑफिसर रोमैन शेख को जम्मू में अपनी रिहायशगाह पर मुर्दा पाया गया। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही है। उनकी मौत के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर इंतजामिया और खुद उमर अब्दुल्ला ने गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपने तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर। फोन नंबर 9419000255।
4: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: सेहत चु हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तिछु यु सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमातन हिस कमी, यम चीज चु रुकावट बनान तो जरूरी इलाज चु इत्थी रोजान। मगर वन चु अत हाल JK सेहत ऐप। यह चु तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुनी तो जरूर तो ख्याल चु थावान। यह ऐप चु एंड्रॉइड तो आईफोन दोश्विनी मज दस्तियाब। यात ऐप मज चु डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक कुछ मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी। बेचे अत सित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल, चाहे तुम मरीज डॉक्टर स्टूडेंट या अख साध शहरी छो। JK सेहत चु सारनी सूत सिंपल सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
13: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
14: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनेंगे।

0: सुर्खियां। अवंतीपुरा में अपनी नवीयत का पहला मरकज इम्तियाज मंजूर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर अजम और खेलकूद के मरकजी वजीर का किया शुक्रिया अदा। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तमाम तैयारियां पेशगी मुकम्मल करने की लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत। पहलगाम में यात्रा इंतजाम का लिया जायजा। सरकार जम्मू कश्मीर की झीलों को तहफ्फुज़ देने के लिए पुरअज़्म। वजीर आला और आशुराए मुहर्रम कल। अब पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में अपनी नवीयत के पहले कौमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को मंजूरी देने के लिए वजीर अजम नरेंद्र मोदी और खेलकूद के वजीर डॉ मनसुख मंडाविया का शुक्रिया अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कौमी सतह का यह मरकज इम्तियाज मुख्तलिफ किस्म के खेल जुमरों में हजारों नौजवानों की सलाहियत साजी के अलावा मुख्तलिफ एथलीट मुकाबलों की एक आला सतह की जगह बनेगी। इस मरकज में एथलीट ट्रैक्स और इंडोर कोर्ट्स के अलावा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो खो, निशानाबाजी, तैराकी और टाइक्विंडो जैसे खेल खेलने की सहूलियत होंगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि जदीद तरीन सहूलियत से लैस इस मरकज में आलमी मयार का बुनियादी ढांचा और कोचिंग की सहूलियत होंगी, जिनकी बदौलत अगली पीढ़ी के ओलंपिक और बैनुल अक्वामी चैंपियंस को तरबियत फराहम की जा सकेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज पहलगाम में एक आला सतह की मीटिंग के दौरान आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में तैयारियों और इंतजाम का बरसरे मौका जायजा लिया। उनके हमरा पुलिस और सिविल इंतजामिया के सीनियर अफसरान भी थे। हमारे नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि पहलगाम के नुनवन बुनियादी कैंप पर इंतजाम का बरसरे मौका जायजा लेते हुए उन्होंने तमाम मुतलका महकमों को सभी लाजमी इंतजाम पेश की मुकम्मल करने और सिक्योरिटी एजेंसियों को सलामती के माकूल इंतजाम करने की हिदायत दी।
1: जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत सरकार और जम्मू की सरकार के समन्वय के साथ हम और अच्छी यात्रा देश भर के श्रद्धालु कर सके, इसका इंतजाम किया गया है। आज यहाँ जो बैठक थी, इसमें सभी डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर थे, सिक्योरिटी एजेंसी के भी ऑफिसर थे। मैं मुतमईन हूँ कि सारी व्यवस्थाएं बहुत उच्च कोटि की है और मैं देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोग भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।
0: इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दरियाई रावी और कौमी शाहरा 44 पर सोहरखड़ के मुकाम पर गुज़श्ता साल के सैलाब से टूट गए दो अहम पुलों की तामीर मुकम्मल हो गई है, जो कि इस साल की यात्रा के लिए एक अहम पेशरफ्त है। मनोज सिन्हा ने इस कामयाबी के लिए सड़क, शाहराहों और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का शुक्रिया अदा किया है। इसी दौरान जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर जीएम शाहीन ने जुलाई के महीने में शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कश्मीर के मुकामी लोगों ने हमेशा ही यात्रियों के लिए मुकम्मल मेहमान नवाजी और अपना ताउन फराहम किया है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में झीलों के तहफ्फुज़ के लिए देर पाए दारा जाती तालमेल, साइंसी मनसूबाबंदी और बरवक्त अमलावरी पर जोर देते हुए मुतल्लिका महकमों और अथॉरिटीज़ को हिदायत दी है कि वो कानूनी जवाबित और माहौलियाती मयारात के साथ ज़ेर तामीर प्रोजेक्टों पर काम की रफ्तार में तेजी लाएं। श्रीनगर में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की 27वीं बोर्ड की मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर आला ने डल, निगीन, खुशहालसर और गिलसर जैसी झीलों में जारी तहफ्फुजाती कामों के अलावा उनसे जुड़े बुनियादी ढांचे और इंतजामी मामलों का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अटल ढुल्लो, जंगलात माहौलियात की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा और मकानों तो शहरी तरक्की की कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर भी मौजूद थी। वजीर आला ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में आबी पनागाहों के हसास माहौलियाती निजाम को तहफ्फुज़ देने की वादाबंद है। दरियासना वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज गुलमर्ग में गंडोला सर्विस की बहाली के प्रोग्राम की निगरानी की और इस तरह से आरजी मौतरे के बाद यह सर्विस मुकम्मल तौर से बहाल हो गई है। वजीर आला ने किंग डोरी तक गंडोला के फेज वन में सवारी की और हालिया तकनीकी खराबी के बाद अमल में लाए गए बहालियात काम के कामों का जायजा लिया। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन इस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। यह हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन भी है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थी। इस इमरजेंसी का ऐलान बढ़ती हुई सियासी बेचैनी और अदालती सूरत हाल के सबब किया गया था, क्योंकि उस वक्त की वजीर अजम इंदिरा गांधी की क्यादत में हुकूमत पर सवाल उठ रहे थे। उसके नतीजे में आमला ने मुकम्मल इख्तियारात अपने हाथ में ले लिए थे और सरकारी अथॉरिटी पर मरकज का ज्यादा कंट्रोल हो गया था। उसके बाद मुख्तलिफ आईनी तहफ्फुजात मुअत्तल कर दिए गए थे। شہریوں کو ان کے حقوق کی خلاف ورزی

0: रुकने पार्लियामान शशि थरूर की सरबराही में इस 13 रुकनी वफद का ये दौरा महज एक रस्मी कार्रवाई नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए इलाकाई सियासी मंजरनामे, सरहदों की हिफाजत और पड़ोसी ममालिक के साथ पेचीदा ताल्लुकात की रोशनी में एक दूररस और ठोस कदम साबित हो सकता है। इस कमेटी ने अपने दौरे के दौरान जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह का तफसीली अहाता किया। चूंकि ये खारजा उमूर की कमेटी है, इसलिए इसकी तवज्जो मकामी सियासत या अंदरूनी नज्म नस्क के बजाय खालिसतन बैरूनी तालुकात और सरहद पार के चैलेंजेस पर मरकूज रही, जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर सिक्योरिटी की सूरत हाल, सरहद पार दहशतगर्दी, सिंतास मुहिदे के असरात और मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी पेशकदमी के तनाजुर में सिक्योरिटी की तैयारियों की जांच शामिल थी। इस दौरे की सबसे बड़ी कामयाबी ये रही कि कमेटी ने श्रीनगर और लद्दाख में फौज के आला तरीन कमांडरों और सिक्योरिटी हुकाम से रूबरू मुलाकातें की, जहां फौज ने वफद को हालिया सिक्योरिटी ऑपरेशंस, मुस्तकबिल की एहतियाती तदाबीर और दिफाई तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इसके साथ ही कमेटी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला से भी तामीरी मुलाकातें की, जिससे मुल्क की सियासी कयादत और जमीनी दिफाई निजाम के दरमियान तालमेल मजीद मजबूत हुआ। नई दिल्ली में बैठकर रिपोर्ट्स पढ़ने और खुद करगिल और लेह की अगली चौकियों पर जाकर सरहदों की हसासियत को समझने में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए वफद ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों और मकामी आबादी से बराह रास्त बातचीत करके उनके रोजमर्रा के चैलेंजेस, लॉजिस्टिक्स की जरूरियात और बुनियादी ढांचे के मसाइल को गहराई से समझा। अवामी सतह पर एक और अहम कामयाबी ये रही कि कमेटी ने इलाकाई पासपोर्ट दफातर का मुआयना किया और जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए पासपोर्ट की तस्दीक और इसके इजरा के अमल को मजीद डिजिटल और तेज तर बनाने की यकीन दहानी कराई। इस दौरे के मुतवक्कु वसी तर नतीजे का जायजा लिया जाए तो सबसे अहम नतीजा एक तफसीली रिपोर्ट की शक्ल में सामने आएगा, जो ये कमेटी पार्लियामेंट में पेश करेगी और ये रिपोर्ट आने वाले वक्त में वजारत खारजा और वजारत दिफा के लिए बजट की तखसीस और दिफाई खरीदारियों को तरजीह देने में एक रहनुमा किताबचा साबित होगी। लद्दाख और कश्मीर की सरहदों पर मौजूदा तनाव के पेश नजर ये दौरा हिन्दुस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी में मजीद जारहाना और हकीकत पसंदाना रुख अपनाने में मदद देगा, जहाँ मुहिदे सिंतास पर वफद की जांच पाकिस्तान के खिलाफ मुस्तकबिल की आबी सिफारतकारी को नई सिमत दे सकती है और लद्दाख में चीन के अजायम का जवाब देने के लिए फौज की मुस्तकबिल की जरूरियात को पार्लियामेंट में मुअसर अंदाज में उठाया जा सकेगा। मजीद बरां सरहदी इलाकों के दौरे से वहां के शहरियों में यह मस्बत पैगाम गया है कि मुल्क की आला तरीन पार्लियामानी कयादत उनके मसाइल और तहफ्फुज के लिए संजीदा है, जिससे मकामी आबादी का एतमाद बहाल होगा और सरहदी बुनियादी ढांचे जैसे सड़कों और सुरंगों की तामीर में मजीद तेजी आएगी। खुलासा यह है कि पार्लियामेंट की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर का यह मुश्तरका दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जोग्राफियाई और सियासी अहमियत को आलमी सतह पर उजागर करने का बाइस बनेगा। शशि थरूर की कयादत में कमेटी ने ये वाजह कर दिया है कि बैरूनी सलामती और खारजा पॉलिसी का मजबूत होना ही अंदरूनी अमन की सबसे बड़ी जमानत है और इस दौरे के दौरान सामने आने वाले हकायक तवील मुद्दत में भारत की सरहदी हिफाजत को फौलादी बनाने और पड़ोसियों के साथ सिफारती मेज पर पोजिशन मजबूत करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम 268.8 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बज चुके हैं। पेश है प्रोग्राम वादे की आवाज।
2: वादे की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

वादी की आवाज प्रोग्राम आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं और बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदलिया का किरदार भी मुसलसल बहस का मौजू रहा है। कई मौके पर अदालतों ने फौजी हुक्मरानों के इकदाम को कानूनी जवाज फराहम किया, जबकि बाज़ औक़ात मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ भी अहम फैसले सामने आए। खामियों के मुताबिक अदलिया ने आईन की हिफाजत की कोशिश की। नाकदीन के मुताबिक अदलिया बाज़ औक़ात ताकत के तवाज़ुन में एक फरीक के तौर पर भी देखी गई। ये बहस आज भी पाकिस्तान के सियासी मंजूरनामे में जारी है। बाज़ तजिया निगारों के मुताबिक किसी भी नए मिसाक की बुनियाद 5 उसूलों पर होनी चाहिए: आइन की बालादस्ती, शिफाफ इंतखाबात, पार्लिमानी खुदमुख्तारी, सियासी जमातों के मसावी हुकूक और इख्तदार की पुरअम मुंतकली। सामईन किराम, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरतहाल को सिर्फ आज के हालात के तनाजुर में नहीं समझा जा सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि गुज़श्ता 7 दहाइयों के सियासी सफ़र का जायज़ा लिया जाए, क्योंकि मौजूदा बहरानों की जड़ें अक्सर तारीख में पैवस्त नज़र आती हैं। इब्तदाई बरसों में सियासी इदारे उतनी मजबूती हासिल न कर सके जितनी एक जमहूरी रियासत के लिए ज़रूरी होती है। आइन साजी में ताखीर, हुकूमतों की बार बार तब्दीली और ताकत के मुख्तलिफ मराकज के दरमियान कशमकश ने सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। बाज़ मौरखीन के मुताबिक यही वो दौर था जब पाकिस्तान में रियासती इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर जमहूरी बुनियादों पर उस्तवार न हो सका, और यही मसला बाद के अशरों में भी मुख्तलिफ सूरतों में सामने आता रहा। 1973 के आईन ने सूबाई खुदमुख्तारी और वफाकी वहदत के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये बहस बार बार सामने आती रही कि आया सूबों को उनके हुकूक और वसाइल में मुनासिब हिस्सा मिल रहा है या नहीं। ताहम आज भी बाज़ हल्के समझते हैं कि सूबाई खुदमुख्तारी और कौमी यकजहती के दरमियान तवाज़ुन कायम रखना पाकिस्तान की सियासत का एक मुस्तकिल चैलेंज रहेगा। पाकिस्तान की सियासी जमातें भी वक्त के साथ नुमाया तब्दीलियों से गुजर रही हैं। 1960 से 1970 की दहाइयों में नज़रियाती सियासत का असर निस्बतन ज़्यादा था। सोशलिस्ट, कौम परस्त, मजहबी और जमहूरी तहरीकें सियासी मबाहिस का मरकज हुआ करती थीं, मगर वक्त के साथ सियासत ज़्यादा शख्सियात के गिर्द घूमने लगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवील अरसे तक भट्टू ख़ानदान के गिर्द मरकूज़ रही। मुस्लिम लीग नून की शनाख्त नवाज शरीफ और उनके खानदान से वाबस्ता रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत इमरान खान की मकबूलियत से जुड़ी हुई नजर आती है। इस रुझान के नाकदीन का कहना है कि मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत सियासी इदारे जरूरी होते हैं, न कि सिर्फ मजबूत शख्सियात। दूसरी जानिब हामियों का इस्तदलाल है कि पाकिस्तान जैसे माशरों में अवामी मकबूलियत रखने वाली शख्सियात ही सियासी मुतहरिकियत

वादी की आवाज़ प्रोग्राम आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं और बात हो रही है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सियासी तारीख में अदलिया का किरदार हमेशा ज़ेर बहस रहा है। एक तरफ अदालतों ने कई मौके पर बुनियादी हकूक़ के तहफ़ और आईनी तशरी में अहम किरदार अदा किया, जबकि दूसरी तरफ बाज़ फैसले शदीद सियासी तनाज़े का बाइस भी बने। मुख्तलिफ़ अदवार में मुंतखब वज़राए आज़म की नाअहली, आईनी तरामीम की तशरी और हुकूमतों के इख्तियारात से मुतल्लिक मुकदमात ने अदलिया को सियासी मबाहिस के मरकज़ में रखा। पाकिस्तानी सियासत का अहम सवाल यह भी रहा है कि रियासत के मुख्तलिफ सुतूनों के दरमियान इख्तियारात की हदूद कहां तक होनी चाहिए। यह बहस सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि दुनिया की बेशतर जमहूरियतों में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहती है। पाकिस्तान की दाखिली सियासत को उसकी खारजा पॉलिसी से अलग नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की सूरत हाल, भारत के साथ ताल्लुकात, चीन के साथ इकतसादी शराकत दारी, अमरीका के साथ रवाबित और मशरक वस्ता में सफारती तवाजुन, ये तमाम अवामिल पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर भी असरअंदाज होते हैं। बाज़ मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तान में कौमी सलामती के मामलात हमेशा से सियासी फैसलों पर असर डालते रहे हैं, इसीलिए खारिजा पॉलिसी और कौमी सलामती से मुतालिक मबाहिस अक्सर सियासी इख्तलाफात का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमा वक्तन फवक्तन खारिजा पॉलिसी के हवाले से मुख्तलिफ मौकफ इख्तियार करते रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में नौजवान वोटर एक फैसला कुन उनसुर के तौर पर उभर रहा है। हर नए इंतखाब में लाखों नौजवान पहली बार वोट डालने के अहल होते हैं। यह तबका रिवायती सियासी वाबस्तगियों के बजाय अक्सर कारकर्दगी, रोजगार, तालीम और गवर्नेंस जैसे मसाइल को ज्यादा अहमियत देता है। इसी वजह से सियासी जमातें अब सोशल मीडिया, डिजिटल मुहिमात और नौजवानों की शमूलियत पर पहले से कहीं ज्यादा तवज्जो दे रही हैं। कई सियासी मुबसरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान की आइंदा दहाई की सियासत नौजवान नस्ल की तरजीहात से तश्कील पाएगी। अगर नौजवान वोटर्स जमहूरी अमल पर एतमाद बरकरार रखते हैं तो सियासी अदवारों को भी मजबूती मिल सकती है। पाकिस्तान की सियासत में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं, लेकिन मईशत का मसला तकरीबन हर दौर में मरकजी हैसियत रखता है। बढ़ता हुआ कर्जा, तजारती खसारा, तवानाई के मसाइल, बेरोजगारी और महंगाई ऐसे चैलेंजेस हैं जो मुख्तलिफ हुकूमतों को दरपेश रहे हैं। सरमायाकार अमूमन ऐसे माहौल को तरजीह देते हैं जहां पॉलिसियों में तसलसल हो और सियासी गैर यकीनी सूरतहाल कम हो। इसीलिए पाकिस्तान के बारे में ये दलील दी जाती है कि माशी बहाली का रास्ता सियासी इस्तेहकाम से होकर गुजरता है। सामईन किराम, पाकिस्तान की सियासी तारीख दरअसल मुसलसल इर्तका की एक कहानी है। ये एक ऐसी रियासत की कहानी है जिसने जमहूरियत, फौजी हुक्मरानी, आईनी असलाहत, सियासी मफाहमत और शदीद महाजराई के मुख्तलिफ अदवार देखे हैं। आज एक बार फिर पाकिस्तान एक ऐसे मरहले पर खड़ा दिखाई देता है जहां सियासी क़यादत को यह फैसला करना है कि आया माजी की कशमकश को जारी रखा जाए या मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका रास्ता तलाश किया जाए। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरतहाल एक बार फिर इस बुनियादी सवाल को सामने ला रही है कि क्या जमहूरियत सिर्फ इंतखाबात का नाम है या ये एक वसी तर सियासी कल्चर का तकाजा करती है। तारीख बताती है कि सियासी जमातें आती जाती रहती हैं, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं, लेकिन मजबूत रियासतें वही होती हैं जहां आईनी उसूल, जमहूरी रवायात और अवामी मैंडेट मुस्तकिल बुनियादों पर एहतराम पाते हैं। पाकिस्तान के लिए भी शायद यही सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा मौका है। यह थी बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। अब चलते चलते आपके लिए यह नगमा।

0: इस नगमे के साथ ही आज के वादी की आवाज का वक्त इख्तिताम पसीर होता है। अगली मुलाकात तक दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़ नासिर।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: श्रीनगर स्टेशन मीडिया व्यू ज्यादातर 8.8 मीटर एफ एम 71.5 मेगाहर्ट्ज़ एम्पेट समय 8:03 सबदे बोलू क्या कशिर बात बोझो आगाज़ में बोझो विजय कुमार मल्ला ने आवाज़ में कलामी रफीक राज़।

0: 성인도의 주기야 그 실버 부산 야가주니 가수인의 스테이션에 8시간 45분을 통해 말해 아바바 가수원이 딜리시 समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन

0: की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। आईसीसी क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रुपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपए होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे

0: ही निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
3: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने

0: 700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्व भर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंतकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा की देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्यत्व के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4,931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2,035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
2: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा

0: एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मेरे व्यूज आता 8.4 मीटर तो FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ पेट।

2026 की अपनी सदारत के तहत हरियाणा के शहर गुरुग्राम में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी की। बिजली की वजारत ने कहा है कि इस मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा, नायब वजरा और सरकर्दा ओहदेदारों ने एक जगह जमा होकर तवानाई से मुतालिक कलीदी आलमी चैलेंजों और तवानाई के शोबे में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने के बारे में तबादले ख्याल किया। वजारत ने यह भी बताया कि मीटिंग में ब्रिक्स के तवानाई के वजीरों की 11वें मुश्तरका एलामिया को मंजूरी दी गई, जिसमें तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारियत, इख्तरा, इस्तेहकाम, बुनियादी ढांचा और सलाह साजी से मुतालिक शोबों में ताउन की तौसीक की गई। मीटिंग से खिताब करते हुए बिजली के मरकजी वजीर मनोहर लाल ने कहा कि तवानाई इक्तिसादी नमू, समाजी तरक्की और इंसानी नशोनुमा के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने पासपोर्ट के लिए दरखास्त फीस में इजाफा कर दिया है। अब 36 सफहात पर मुश्तमिल नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद की फीस 2500 रुपये होगी। पासपोर्ट तरमीमी जवाबे 2026 का इतलाक 1 जुलाई से होगा। वजारत खारजा के मुताबिक नई फीस के तहत तत्काल स्कीम के तहत नए पासपोर्ट या पासपोर्ट की तजदीद के लिए 5000 रुपये वसूल किए जाएंगे। 60 सफहात पर मुश्तमिल आम पासपोर्ट या इसकी तजदीद की फीस 3500 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि तत्काल के तहत इसकी फीस 6000 रुपये होगी। वाज़ह रहे कि इस वक्त 36 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 1500 रुपये और 60 सफहात वाले पासपोर्ट की फीस 2000 रुपये है। अगर 36 सफहात वाला पासपोर्ट गुम या खराब हो जाता है तो इसके बदले नया आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए 5000 रुपये अदा करने होंगे। इसी तरह 60 सफहात वाले गुमशुदा या खराब पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट हासिल करने की फीस 6000 रुपये होगी। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज रेलवे के सीनियर अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की, जिसमें भारतीय रेलवे को मुख्तलिफ अकसाम की अशिया की बारबरदारी के लिए सबसे पसंदीदा जरिया बनाने के लिए मुजवजा इसलाहात पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हाल ही में सीमेंट और नमक जैसी अशिया की तरसील के लिए तैयार किए गए खसूसी वैगनों की कामयाबी ने इस अहमियत को वाज़ेह किया है कि वैगनों का डिजाइन सनअत की अमली जरूरियात के मुताबिक होना चाहिए। मखसूस अशिया के लिए तैयार करदा वैगनों ने सामान की लोडिंग, ऑनलोडिंग और नकल व हमल की कारकर्दगी में बेहतरी पैदा की है, जिसके नतीजे में रेल के जरिए माल बर्दारी का निज़ाम मजीद मुअस्सर और पुरकशिश हुआ है। जनाब वैष्णव ने कहा कि डिज़ाइन की मंजूरी और इब्तदाई नमूने की तैयारी के लिए सख्त मेयारात अपनाने से भारत में आला तरीन मेयार के वैगनों की तैयारी यकीनी बनाई जा सकेगी। दिफा के शोबे में खुद कफालत की समत एक अहम संग मील हासिल करते हुए दिफाई तहकीक व तरक्की के इदारे DRDO ने मुल्क में ही तैयार करदा निट्रा कबल अज वक्त फजाई वार्निंग और कंट्रोल निज़ाम के लिए हतमी ऑपरेशनल मंजूरी FOC हासिल कर ली है। FOC सर्टिफिकेट्स आज बेंगलुरु में मुनाकिदा एक शानदार तकरीब के दौरान भारतीय फजाइया के हवाले किया गया, जिससे मुल्क की फजाई निगरानी और नेटवर्क पर मबनी जंगी सलाहियतों में नुमाया इजाफा हुआ। इस तकरीब के मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए भारतीय फजाइया के नायब सरबराह एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने मुल्क में ही तैयार करदा इस निज़ाम की तारीफ करते हुए कहा कि इसने बालाकोट कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर जैसे अहम मिशनों में अपनी काबिल एतमाद कारकर्दगी को साबित कर दिया है। बांग्लादेश में भारत के नए तकर्रुर करदा हाई कमिश्नर दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में वाकई बंगा भवन में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपनी सिफारती असनाद पेश करने के बाद बाजाब्ता तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सदारती महल में असनाद पेश करने की तकरीब के बाद दिनेश त्रिवेदी ने ढाका में भारतीय वीजा दरखास्त मरकज IVAC का दौरा किया, जहां उन्होंने मरकज के कामकाज का जायजा लिया और हुक्काम से मुलाकात की। इस मरकज में वीजा दरखास्त गुजारों की बड़ी तादाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए हाई कमिश्नर ने बांग्लादेश के शहरियों के लिए मामूल की वीजा खिदमात दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सियाहती वीजा के लिए दरखास्तें इस माह की 28 तारीख से कबूल की जाएंगी। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उस वक्त की याद दिलाता है जब भारत के आईन को 25 जून 1975 को पामाल किया गया था। ये हर उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने का दिन है जिसने इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से मुसीबतें झेली थीं। नायब सर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज उन सभी को खराज अकीदत पेश किया जो

0: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: आकाशवाणी श्रीनगर स्टेशन मीडियम न्यूज आता आशार्य 8 मीटर तो FM 71.5 मेगाहर्ट्ज़ सनपेट समीन रसंस दायचन बजने वरियो क्या कश्र गजल बोजो आगास मज बोजो वही जिलानी तो सत्यन हिज आवाज मज कलामी बशीर आरिफ

0: Sovint to jest kościoła Kozlowo Zan.
1: Commercial Broadcasting Service Srinagar. आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है, मेरे लिए 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय रात के 10:30 और 24 सेकंड हो चुके हैं। पेश है आज का पंजाबी प्रोग्राम।

खेत सुनहरा धन दौलत रे। बिंदू दा बाप जुम्मा पिंड विच बहुत मकबूल सी। हर शख्स नू पता सी कि उस नू अपनी पत्नी दे नाल बहुत प्यार है। उना दोहां दा इश्क पिंड दे हर शख्स नू पता सी। उना दे दो बच्चे सन, एक बिंदू सी ते जिसकी उम्र 13 वर्ष दे करीब सी, दूजा चंदू। सब खुश सन, मगर एक रोज अचानक जुम्मे दी पत्नी बीमार पै गई। हालत बहुत नाजुक हो गई। बहुत इलाज कीते, टूने टोटके अजमाए, मगर ओनू कोई फर्क न पिया। जदों मर्ज जानलेवा शकल अख्तियार कर गई तां उसने अपने पति नू कमजोर आवाज विच कहा, तुसी मैनू कबूतरी कहा करदे सी ते खुद नू कबूतर। असी दोनां ने दो बच्चे पैदा कीते, हुण ए तुहाडी कबूतरी मर रही है। किते अजिहा न होवे कि मेरे मरण तो बाद तुसी कोई होर कबूतरी अपने घर ले आओ। थोड़ी देर तो बाद उसने बेसुरती विच बोलन दी कैफियत तारी हो गई। जुम्मे दियां अखां विच अथरू बग रहे सन अते उसदी पत्नी आवा तावा बोल रही सी, तुसी होर कबूतरी ले आओगे? ओ सोचेगी कि जदों तक मेरे बच्चे जिंदा हन तुसी उसनू मुहब्बत नहीं करोगे, इसलिए ओ उना नू जिबा करके खा जावेगी। जुम्मे ने अपनी पत्नी नू बड़े प्यार दे नाल कहा, सकीना मैं तेनू बचन दिंदा हां कि जिंदगी भर दूजा व्याह नहीं करवावांगा, मगर तेरे दुश्मन मरन तू बहुत छेती ठीक हो जाएगी। सकीना दे बुल्लां ते मुर्दा जिही मुस्कुराहट फैल गई। इस दे फौरन बाद ओदी रूह शरीरक पिंजरे विचों उडारी मार गई। जुम्मा बहुत रोया। जदों उसने अपने हथां नाल उसनू दफन कीता तां उसनू ऐसा महसूस होया कि उसने अपनी जिंदगी मणा मिट्टी दे हेठां गढ़ दित्ती है। हुण ओ हर वक्त गमगीन रहिंदा, काम काज विच उसनू कोई दिलचस्पी ना रही। इक दिन उसदे इक वफादार मुजारे ने उसनू कहा, सरकार बहुत दिनां तों मैं तुहाडी इह हालत वेख रहा हां अते जी ही जी विच कुड़दा रहा हां। अज मेरे तों नहीं रहा गया तां तुहानू इह अर्ज कर आया हां कि तुसी अपने बच्चियां दा बहुत ख्याल रखदे हो, अपनियां जमीनां वल भी कोई तवज्जो नहीं दिंदे। तुहानू इस दा इलम भी नहीं कि किन्ना नुकसान हो रहा है। जुम्मे ने बड़ी बेपरवाही नाल कहा, होण दिओ, मैनू किसी चीज दी परवाह नहीं। सरकार तुसी होश विच आओ, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हन। अजिहा ना होवे कि ओ तुहाडी गफलत दा फायदा चुक के तुहाडियां जमीनां ते कब्जा कर लैण। तुहाथों मुकदमेबाजी च की होवेगा? मेरी तां इही दिली राय है कि तुसी दूजा व्याह करवा लो। इस नाल तुहाडे गम दा बोझ हल्का हो जावेगा अते ओ तुहाडे मुंडिया नू प्यार मुहब्बत भी करेगी। जुम्मे नू बहुत गुस्सा आया, बकवास ना कर रमजानी, तुसी समझदे नहीं कि मतरेई मां की हुंदी है। इस दे इलावा तुसी ए भी सोचो कि मेरी पत्नी दी रूह नू किड्डा वड्डा सदमा पहुंचेगा। बहुत दिनां दे इसरार दे बाद आखर रमजानी अपने आका नू दूजे व्याह लई रजामंद करन विच कामयाब हो गया। जदों व्याह हो गया तां उसने अपने मुंडिया नू इक अलहदा मकान विच भेज दिता। हर रोज उत्थे कई घंटे रहिंदा ते बिंदू ते चंदू दी दिलजोई करदा रहिंदा। नवीं पत्नी नू ए गल बहुत नागवार गुजरी। एक गल होर भी सी कि मक्खण दुध दा बेशतर हिस्सा उस दे मतरेए बेटियां दे कोल चलिया जांदा सी। इस तो ओ बहुत बढ़दी। ओदा ए मतलब सी कि घर वार दे मालक ओही हन। एक दिन जुम्मा जदों खेतां तों वापस आया तां उस दी नवीं पत्नी जारो कतार रोण लगी। जुम्मे ने इस अर्ज आहो जाही दी वजह पुछी तां उसने कहा कि तुसी मैनू अपना नहीं समझदे, इसलिए बच्चिया नू दूजे मकान विच भेज दिता। मैं उना दी मां हां, कोई दुश्मन तां नहीं। मैनू बहुत दुख हुंदा है जदों मैं सोचदी हां कि बेचारे इकल्ले रहिंदे हन। जुम्मा इन्हां गल्लां तों बहुत प्रभावित होया अते दूजे ही दिन बिंदू ते चंदू नू लै आया अते उन्हां नू मतरेई मां दे हवाले कर दिता, जिसने उन्हां नू इन्नी प्यार मुहब्बत नाल रख्या कि आले दुआले दे सब लोग उसदी तारीफ विच मिठियां मिठियां गल्लां करन लग पए। नवीं पत्नी ने जदों अपने पति दे दिल नू पूरी तरह मोह लिया तां इक दिन इक मुजारे नू सद के इकल्ले विच उसनू बड़ी राजदारी वाले लहजे च कहा, मैं तेथों कम इक लैणा चाहुंदी हां, बोल करेंगा? उस मुजारे ने, जिसदा नां शबराती सी, हाथ जोड़ के कहा, सरकार तुसी माए बाप हो, जान तक हाजिर है। नवी पत्नी ने कहा, वेखो कल दरिया दे कोल विशाल मेला लग रहा है, मैं अपने मतरेए बेटियां नू तेरे नाल भेजांगी, उन्हां नू किश्ती दी सैर कराउणा अते किसे ना किसे तरह जदों कोई होर वेखदा ना होवे उन्हां नू डूंघे पानी विच डुबो देना। शबराती

0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर रात के 10:59 और 52 सेकंड हो चुके हैं। अब आप आकाशवाणी दिल्ली से खबरें सुनेंगे, पहले हिंदी और उसके फौरन बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: And together becoming a force multiplier.
1: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति

0: और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: Partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals. Our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all countries to do business in a fair and equitable manner.
1: Venezuela's acting president Delcy Rodriguez has said that 164 people have died and 971 others were injured after a pair of powerful quakes hit the country. Last night, 7.2 and 7.5 magnitude earthquakes hit the country. Buildings were evacuated in places as far away as Brazil's Amazon, about 1,700 kilometers from Venezuela's capital, Caracas. Meanwhile, the president of Venezuela has acknowledged the solidarity expressed by India in the aftermath of the earthquakes, saying it is in keeping with the spirit of cooperation between the people of India and Venezuela in times of difficulty. She welcomed the remarks by Prime Minister Narendra Modi, who expressed his condolences and India's willingness to support relief efforts in the wake of the severe consequences of the earthquakes. The government has hiked the fee for application of passports, with a 36-page fresh passport or reissue of passport now costing 2,500 rupees. The passport

पर पेश होगा सुबह 8:45 पर। मौजू है, क्या दूसरों के बच्चों से ज़ाती खिदमत लेना अनदुरुस्त है। मौजू पे बात करेंगे मौलाना फैयाज अहमद जरू। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर है सलीम एजाज कपड़ा। मगामी अखबारात की सुर्खियां समाप्त करें सुबह 9:00। आयुष्मान भारत के तहत तैयार करदा प्रोग्राम समाप्त करें सुबह 9:30 पर। मर्सिया समाप्त करें 11:30 पर। इंटरएक्टिव लाइव शो समाप्त करें सुबह 10:30 पर। जिक्र अहले बैत के हवाले से आप सैयद बिलाल अहमद किरमानी को सुनेंगे दिन के 12:10 पर। बज़्मे निस्वां रास्ता होगी दिन के 12:40 पर। एनसीईआरटी का स्पॉन्सर प्रोग्राम पेश होगा दिन के 1:10 पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मन मीत में आज बस इतना ही। जयती आ चुकी है निशिगंधा लेकर स्टूडियो में। अब आप मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अब से थोड़ी ही देर में सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत कार्यों में भारत की सहायता करने की तत्परता जताई है। सुश्री रोड्रिगेज ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की और वेनेजुएला के प्रति एकजुटता के लिए आभार व्यक्त किया।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

अगर कोई कुम्हार होता, अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। मैं तो चाहती कि तुम्हारे हाथों की रेखाओं में मेरी उंगलियों की स्मृति रह जाए और मेरी सांसों में तुम्हारे होने की हल्की सी गंध। मिट्टी मिलाने से पहले ही हम दोनों ने एक दूसरे में बहुत कुछ छोड़ दिया है। तुम कहते हो कि तुम्हारी पुरानी ख्वाहिशें मेरे आने से पूरी हो गई, पर क्या तुम जानते हो मेरे भीतर भी एक अनकहा अभाव था जिसका नाम मैंने कभी नहीं लिया। मुझे भी चाहिए था ऐसा मन जहां बिना मांगे ठहर सकूं, ऐसी आंख जो मेरी

लिमोन को पढ़ ले, और ऐसा स्पर्श जो मेरी थकान से पहले मेरा नाम ले। अगर कोई कुम्हार होता और वो सचमुच दो पुतले तोड़कर तीसरी मूर्ति गढ़ सकता, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती, तो वो मूर्ति मैं नहीं बनाती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कश्मीर की कली, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

कहते हो, जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तुम कहते हो, जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है। तो सुनो, मैंने तुम्हारे साथ अपनी अधूरी सच्चाइयों को पूरा होते देखा है। मेरी चुप्पियां तुम्हारे आवाज में अपना घर पा गई हैं। तुम्हारा गर्व मुझे भारी नहीं लगता, क्योंकि वो अधिकार से नहीं, संवेदना से उपजा है। और मेरे पास तुम्हारा सुकून और मेरा सुकून तुम्हारे पास किसी वचन की तरह नहीं, एक विश्वास की तरह रहता है। तुमने कहा, कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुमने कहा, कुछ पुरुष प्रेम कह नहीं पाते पर लिख सकते हैं। तुम कहते हो, जिंदगी अधूरी होकर भी सच्ची हो तो सुंदर होती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है दो दूनी चार, आवाज है किशोर कुमार की।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है हंसते जख्म, आवाज है लता मंगेशकर की।

अरे वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी एक बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है महबूब की मेहंदी, आवाज है मोहम्मद रफी की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरी सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरी सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने को प्रतिबद्ध है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में

प्राथमिकी दर्ज की गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अनंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और गीत सुहाने में जो पहला गीत आप सुनेंगे, आवाज है मुकेश और सुमन कल्याणपुर की, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें।

हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है। हर शाख को मौसम

में ढलना जरूरी है। जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, जो वक्त की धूप से आंखें चुराता रहा, उसे अपने ही साए में जलना जरूरी है। जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, जो कल की लकीरों को तकता ही बैठा हो, उसे आज की मिट्टी में चलना जरूरी है। सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे, सफर में अगर भीड़ ही रास्ता तय करे, तो खुद से अलग राह चुनना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। मैंने सीखा है टूट कर भी यही बात कि हर बार नहीं पर बदलना जरूरी है। हवाओं ने सिखाया कि झुकना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है, हर शाख को मौसम में ढलना जरूरी है। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम है जमाने को दिखाना है।

कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, मैं कोई इल्जाम नहीं ना कोई गिला बनी, बस एक आदत की तरह याद करोगे मुझे। मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरे अल्फाज तुम्हारे साथ ना चल पाए तो क्या, मेरी देखोगे मुझे। ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, ढलती सांझ में जब सवाल उठेंगे कहीं, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, एक अधूरी सी कहानी सुनाओगे मुझे, जो कह न सकी सामने वो लिखती रही, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, भीड़ में भी अलग सी पाओगे मुझे, कभी ठहर कर तो याद करोगे मुझे, वक्त के पन्नों में लिखा एक नाम कहोगे मुझे। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और गीत सुहाने में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मेरा साया, आवाज है आशा भोसले की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम और आवाज है लता मंगेशकर की।

मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था। मेरे हर शब्द में अपना ही पता ढूंढता था। मेरे सवालों से ही उत्तर गढ़ रहा था वो। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा। मैंने जो छोड़ा अधूरा उसी को पूरा समझा। मेरी कमी को भी कायदा कर रहा था वो। वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, वक्त ने जब भी हमें आमने सामने रखा, घड़ी की सुइयों से आगे बढ़ रहा था वो। मैं लिख रही थी, वो पढ़ रहा था। बड़ा अजीब था वो, जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। जो अपने हाथों की लकीरें बदल रहा था वो। वक्त आ चला है, एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद 2 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं क्रांति फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया, जिसमें उन्होंने भूकंप से जानमाल की क्षति पर गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए भारत द्वारा राहत कार्यों में सहायता की तत्परता व्यक्त की थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के दक्षिणी जिलों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। राज्य के उत्तर जिलों में भी बारिश की संभावना है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और भूस्खलन हो सकता है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। रात सुरमई में जो पहला गीत आप सुनेंगे आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है फकीरा। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिख दे मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। चल साथी कुछ लिखते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, अदला बदली करके हम तुम शब्दों के महल बनाते हैं, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना, मेरा रंग है नीला पीला, तुम लाल सुनहरी ले लेना, मैं गंगा जमुना तट पर नाचूं, तुम सातों छोर समंदर लेना, मैं तेरा गांभीर्य लिखूंगी, तू मेरी चंचलता लिखना, थोड़ी सी अल्हड़ता लिखना, हंसना रोना और मचलना, सब लिखना आहिस्ता आहिस्ता, देखो कुछ भी भूल न जाना, शब्दों की माला गूंद गूंद कर मेरा तेरा मेल सजाना, और मैं तेरी बातें लिखकर साथी पूरी कहानी कर दूंगी, तू मेरी बातें लिख साथी, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ, चल साथी कुछ लिखते हैं, चल साथी कुछ लिखते हैं, तू लिखते मेरी हर बातें, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ, मैं तेरी कहानी लिखती हूँ। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है मौसम, आवाज है भूपेंद्र की।

गुलाब में यादें देकर लौट गया, गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया। पीछे छोड़ आया मेरे आंगन में बिखरी हुई खामोशियों की पंखुड़ियां। उसने गुलाब थमाया, जैसे किसी ने समय की हथेली पर सुगंध रख दी हो, और कहा कुछ नहीं, बस नजरें झुका ली, जैसे विदा शब्दों से नहीं आंखों से होती हो। वो लौट गया फिर मिलने के वादे के साथ, वादे जो रेल की खिड़की से हवा में लहराते रुमाल से होते हैं, दिखते रहते हैं देर तक पर छूने में नहीं आते। आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर मैं खड़ी रही स्टेशन की उस रेखा पर, जहां से रास्ते अलग होते हैं और मन एक ही दिशा में अटका रह जाता है। उसका शहर अब मेरे भीतर बसता है, हर गली में उसके आवाज की परछाई और हर मोड़ पर उसके हंसने की ध्वनि। गुलाब की पंखुड़ियां मेरे किताबों के बीच सूख गई हैं, पर उनकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है, पर उसकी सुगंध अब भी हर रात मेरे तकिए में लौट आती है। गुलाब में यादें देकर लौट गया, अपने शहर की ओर मुड़ गया। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है मेरा साया।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है भाभी, आवाज है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वह प्रेम जो शोर नहीं करता, वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता, बस अचानक समय की छत फांद कर आ खड़ा होता है दरवाजे पर। हाथों में मेहनत की गर्माहट और आंखों में ठहरी हुई प्रार्थनाएं, कोई घोषणा नहीं, कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ एक उड़ान।

जिसमें बैठा था विश्वास कि जन्मदिन केवल तारीख नहीं होता, वह किसी आत्मा की स्वीकारोक्ति भी होती है। वो आया जैसे मंदिर में दीप जलाने को आता है, चुपचाप श्रद्धा से भरा, अपने भीतर की सारी रोशनी लेकर, और लौटा भी उसी मौन में, जैसे दुआ पूरी होने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है, जैसे आने के बाद घंटी बजाए बिना कोई चला जाता है। वह प्रेम जो शोर नहीं करता, जो अपने होने का दावा नहीं लिखता। आप सुन रहे हैं रात सुरमई, और अब जो गीत आप सुनेंगे फिल्म का नाम है हंसते जख्म, आवाज है मोहम्मद रफी और बलवीर की।

और अब वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो फिर मिलने के वादे के साथ और जिस गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं, फिल्म का नाम है अर्पण, आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: उधर बैठे क्या सोच रहे थे?
1: सोच रहा था, मैं गम के अंधेरे में डूबा हुआ था, तुम अचानक उजाला बनकर आ गए, मुझे जीने की नई उम्मीद, नया सहारा मिल गया।

0: इतने पास आकर कहीं तुम मुझसे दूर न हो जाओ।
1: अनिल, वो देखो सूरज की किरणें जब इन बर्फीली चोटियों पर गिरती हैं, तो बर्फ पिघलकर नदी का रूप धारण करती है। फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं?

फिर वो नदी पहाड़ों, जंगलों और मैदानों को चीरती हुई जाकर समंदर की गोद में समा जाती है। मैं भी उस नदी की तरह तुम्हारे प्यार के समंदर में समा जाऊंगी। अब तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी मैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की ये सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमीनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन 2 शक्तिशाली भूकंप में करीब 2,927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। इसके बाद बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने 137 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। उसने 16 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट पर 139 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 3:10 और 30 सेकंड। आप हैं अपने ही दोस्त रूपा धवन के साथ कार्यक्रम आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम हमराही। हमराही में आपके साथ चल रही हूं मैं आज आप ही की दोस्त आप ही की अपनी रूपा धवन। नमस्कार।

जी हाँ जनाब, हम तो मान ही गए हैं और आप भी मान ही गए होंगे। जी हाँ, जब हमराही साथ साथ चलते हैं तो एक दूसरे का कहना तो मानना ही पड़ता है और लाजमी भी जो होता है। रात का समा वाकई बहुत खूबसूरत होता है। दिन भर का शोर जब थम जाता है तब रात के इस समय में सुकून के पल और मन में कई बातों और कहानियां साथ साथ दिमाग में तैरने लगती है और फिर ऐसे में कोई ना कोई कहानी दिल जरूर कहता है। तो चलिए हम भी एक ऐसी ही प्यारी सी खूबसूरत सी ये कहानी सुन लें।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ यानी रूपा के साथ, कार्यक्रम है हमराही और समय हुआ है 3:29 रात के, आधी रात और आधा दिन और ये समय बेहद खूबसूरत बेहद प्यारा हमराही का सफर और साथ चल रहे हैं हम आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

दिल में ढेर सारी बातें नींद आंखों से कोसों दूर है, और ऐसे में जब साथ हूं मधुर और कर्णप्रिय गीत, तो ये रूहानी गीत सहज ही हमारे दिलों में उतर जाते हैं। दर्द फिल्म का अभी एक नगमा आपने सुना लता जी की आवाज में, और आइए अब सुनते हैं सूरज फिल्म से ये कर्णप्रिय गीत।

सूरज फिल्म का ये रूहानी गीत और स्वर थे इसमें मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर का। और अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है तीसरा कौन, स्वर लता जी और मुकेश साहब का।

साथियों, रात और चांद का रिश्ता सदियों पुराना है। जब भी ये दोनों साथ होते हैं, जज्बात अपने आप अल्फाजों में ढल जाते हैं। अगर प्रेम कहानी की बात करें

किशोर साहब और लता जी का ये दिलकश नगमा अभी आपने सुना देवता फिल्म से। जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, जी चाहता है तुमसे प्यारी सी बात हो, हंसी चांद तारे हो, लंबी सी बात हो, और दिल दिल बस सिर्फ और सिर्फ ये कहे।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और लीजिए जनाब, वक्त तो इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है ना कि कब 3 से 4 बजने को आए पता भी नहीं चला। रूहानी संगीत का कुछ ऐसा ही जादू होता है। फिलहाल हम और आप बात कर रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हैं अपनी दोस्त रूपा धवन के साथ हमराही कार्यक्रम में। तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे देखा तो पल में ही सदियां जीली, तुझे चाहा तो दिल ने धड़कना सीख लिया। इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, इबादत में तो लोग खुदा को ढूंढते हैं, मैंने तुझको पाकर ही सजदा

गिरना सीख लिया। ये गीत आज के हमराही की आखिरी पेशकश। सुनते हैं यही गीत एन इवनिंग इन पेरिस से मोहम्मद रफी साहब और आशा जी के स्वर में।

जी हाँ, लौटने का वक्त नहीं है अभी। जी हाँ, लौटेंगे दोबारा से, फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और लेकर आएंगे आपकी खिदमत में अरुणिमा कार्यक्रम। फिलहाल रूपा इजाजत चाहती है, तब तक के लिए विदा दीजिए और सुनेंगे आप थोड़ी ही देर में पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार।

0: पत्र जारी करेंगे। हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद इसे तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री की यह सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्हें वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकास से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में 7.2 और 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जान माल का नुकसान हुआ है। श्री रोड्रिगेज ने बताया कि ला गुआइरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त या नष्ट हुई हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। सुश्री रोड्रिगेज ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित रखने की घोषणा की। उन्होंने सबसे प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडरा रहे जोखिम में कमी आई है। IMF की संचार निदेशक जूली कोजैक ने वाशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा कि हाल के संघर्ष से वैश्विक अर्थव्यवस्था की मजबूती की जांच हुई, पर कमोडिटी बाजार और वित्तीय स्थितियां मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान हेराफेरी मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ पहली प्राथमिकी दर्ज की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT की सिफारिशों के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत के आधार पर श्रीराम जन्मभूमि पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। भारत आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। भारतीय समय अनुसार मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum UK-India Week in London yesterday, Mr. Goyal said, "Free trade agreement with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far." The minister reached the UK on a 3-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, which will enter into force from 15th of

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि

साथियों, जीवन में सकारात्मक सोच हमारा आत्मबल बढ़ाती है, जीवन को नई दिशा देती है। और हमें क्या करना है, हमें जीवन में इसी आत्मविश्वास और आत्मबल के साथ हर नए सफर को एक नए जोश के साथ आगे बढ़कर जीना है, खुशियों को दोनों हाथों से थामना है। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है सुबह के 4:11:39। आप हैं अरुणिमा में अपनी ही दोस्त रूपा धवन के साथ। तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, सुप्रभात। रात के गहन अंधियारे को चीरती हुई सूरज की किरणें धीरे धीरे पृथ्वी पर आ रही हैं और सभी को इस रोशनी में सराबोर कर रही हैं। तो क्यों ना इस जिंदगी से मुलाकात कर ली जाए।

साथियों, रात कितनी भी अंधेरी हो, सुबह की पहली किरण उस पर भारी पड़ती है। जिंदगी की राह को थामने के लिए मजबूत इरादा भी तो साथ होना चाहिए। जी हाँ, तैयार हैं आप मजबूत इरादे के लिए, क्योंकि आज की नई सुबह धीरे धीरे शुरू हो रही है और इंतजार कर रही है आपका, आपके मजबूत इरादे के साथ। चलिए सुनते हैं बुढ़ा मिल गया फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत किशोर साहब की आवाज में।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हुआ है 4:24 और 1 सेकंड। आप हैं रूपा के साथ। तो दोस्तों, कभी कभी हम जिंदगी की आपाधापी में ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो खामोशी से दुनिया को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं। जैसे राह चलते किसी बेजुबान को सहला देना या किसी उदास चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर देना। खैर, हमें भी इसी तरह से अपनी राहों पर चलते जाना है और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है।
1: I'm not a man from the past, but I'm functioning. I'm right now. Tomorrow is another day. A wave after wave of excitement comes to me, of new things within me, within myself. As I get up in the morning, at times, अगर कोई दुख भी हो या किसी चीज का मुझे सौरभ भी हो तो सेकंड में भूल जाता हूँ।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे।

स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अरुणिमा कार्यक्रम में। अरुणिमा है उम्मीद की पहली किरण जो हर रात के बाद नया सवेरा लाती है, हौसलों से जो दिल रोशन रखते हैं, जिंदगी भी उनके लिए गीतों को गुनगुनाती है। रूपा के साथ फिलहाल आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगा।

हर दिन के साथ साथ प्रकृति भी नए रंगों को बुनती है। इसका हर कण एक अलग किस्सा बयां करता है, एक ऐसा किस्सा जिसकी दास्तान हर बूटे पर लिखी होती है और आपकी जिंदगी को हर रंगों में संवारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी रहती है।

सूरज की पीली रोशनी के साथ प्रकृति का कण कण पत्ता पत्ता अपनी अपनी कहानी कहते हैं। रात का सारा खेल प्रकृति की बाहों में समा जाता है। वहीं कलकल करते झरने भी अपनी बातें बताते हैं।

राजा हो या रंक, सभी को अपने जीवन में जिंदगी के उतार चढ़ावों से गुजरना ही पड़ता है, मुश्किलों को साथ में लेकर चलना पड़ता है। राजा हरिश्चंद्र और तारामती जी की फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना। मोहम्मद रफी साहब के स्वर में जीवन की एक कड़वी सच्चाई को बयां करता ये गीत, बेहद ही खूबसूरत आवाज में बखूबी दर्शाया, दिखाया शब्दों द्वारा मोहम्मद रफी साहब ने। साथियों, लेकिन जिंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा अपना भी होता है जो आपके सुख दुख में आपकी छांव बनकर चलता है, आपका साया बनकर चलता है। कोई ना कोई तो किसी ना किसी के जीवन में जरूर होता है।

जिंदगी है तो हार जीत का खेल भी चलता ही रहता है। मुश्किलों का सामना करना मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं। जहां मुश्किलें हैं वहां मुस्कुराहटें भी हैं और जीत की खुशी भी है, उमंगें भी हैं।

खुशनुमा बहार के साथ हमारे मन में नई उमंगों को जगा देती है ये बहार। ठंडी हवा की झोंके मानो कानों में मुस्कुराकर कुछ कहकर आगे बढ़ जाते हैं, आने वाले पल का स्वागत करने का संदेश दे रहे हों जैसे।

अरुणिमा से विदा लेते हैं रूपा, फिर से भोर सुहानी में आपके साथ मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड और कुछ ही देर में सुनेंगे समाचार। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सेशल्स जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री की सेशल्स की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले वो वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हार्मिनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को समन्वय केंद्र की 10वीं बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण

0: ब्यूरो की बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा और उन्हें मजबूत करने के उपायों पर चर्चा होगी। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज मादक पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और पुनर्वास पर केंद्रित समन्वित उपायों से मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की भविष्य की योजना प्रदान करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच में ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिग्स ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। मलबे में अभी 200 लोग फंसे हुए हैं। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर दूर 7.5 की तीव्रता के इन दो शक्तिशाली भूकंप में करीब 2927 परिवार बेघर हो गए हैं। दूसरा भूकंप सन 1900 के बाद वेनेजुएला में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। राजधानी काराकास के उत्तर में तटीय क्षेत्र ला गुआयरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ है। श्री रॉड्रिगेज ने बताया कि ला गुआयरा में 250 इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं या नष्ट हो गई हैं। इस बीच वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रॉड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत द्वारा एकजुटता और सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मुश्किल घड़ी में ये भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना के अनुरूप उठाया गया कदम है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि मध्य पूर्व में युद्ध विराम और फिर से खोलने में हुई प्रगति से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट में कमी आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान और स्वीडन तथा ट्यूनिशिया और नीदरलैंड का मैच जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The PM added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. PM Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermione, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK

सुबह की लाली माँ हमें याद दिलाती है उस जीवन की शक्ति को जो संघर्ष और पीड़ा के क्षणों में भी मौजूद रहती है। मृत्यु और जन्म, दुख और प्रसन्नता, निराशा और आशा के साथ सहज ही संवाद करती है। और हम संवाद कर रहे हैं आपके साथ, जी हाँ, आप ही के अपने चैनल, जी हाँ, आकाशवाणी गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

रिकॉर्ड्स पर स्वागत है आप सभी के साथ। सूरज के रथ को सुनहरी किरणें धीरे धीरे सुजज्जित करते हुए आज के नए दिन का आरंभ कर रही हैं, तो हम भी आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। कार्यक्रम है भोर सुहानी, और भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ, आप ही के पास हूँ, आप ही की दोस्त, आप ही की अपनी रूपा धवन। तो आइए उस प्रभु का भी स्मरण कर लें आज सुबह की शुरुआत के साथ।

साथियों, हर सुबह एक नया सूरज ये बताने के लिए निकलता है कि उजाले बांटने से कम नहीं होते। जी हाँ, प्रकृति भी तो हमें बहुत कुछ देती है, पर क्या हम प्रकृति को उतना दे पाते हैं जितना प्रकृति हमें देती है? देखिए, इंसानी जीवन है तो देन लेन का कार्यक्रम तो होता ही रहेगा। जी हाँ, अगर हमने किसी से कुछ लेना है तो हमें कुछ देना भी पड़ेगा, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो क्यों ना कुछ ऐसे खुशी के लम्हों को बांटें जो बांटने से और भी दोगुने हो जाएं। अब मधुबन को देखिए ना, हमारे लिए कितनी खुशियां लेकर आता है। उसकी भीनी भीनी खुशबू, बगिया की ऐसी खुशबू जो हमारी अंतरात्मा तक को खुशबू से सराबोर कर देती है और जीवन में एक नया उत्साह और संचार करती है, एक नई ऊर्जा का संचार, ऐसी चेतना का संचार जो हमें जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। तो चलिए आज से ही प्रण करते हैं, जितना प्रकृति हमें देती है कम से कम उतना ना सही, अपना एक छोटा सा योगदान तो हम जरूर देंगे।

की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की

एक बार फिर से जुड़ चुके हैं आप आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल दिल्ली के एफएम पर। जी हाँ, 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और भोर सुहानी लेकर आपके साथ हूँ मैं, आप ही की दोस्त रूपा धवन। तो जनाब, जिंदगी का जो पर्चा है ना, जिंदगी की रंगीन किताब को रंगीन बनाने के लिए, रंगों से भरने के लिए, उजालों के साथ अदम्य साहस ही नहीं, कभी कभी छोटे छोटे प्रयास भी कारगर सिद्ध होते हैं। जब आप खुश होते हैं तब अपनी प्रकृति के साथ साथ अपनी प्रकृति का कण कण भी देखिए। जी हाँ, प्रकृति का कण कण भी आपकी खुशियों का हिस्सा बन जाता है। कैसे झिलमिल झिलमिल करते हुए तारे आपके साथ साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलते हैं,